सुप्रभात। मीडियम वेव 462.9 जी मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर

वंदन है इस पावन धरती को जहां वीरों ने हंसकर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। गूंज उठे हर दिशा में राष्ट्र प्रेम का मधुर स्वर। माँ भारती के चरणों में हमारा शत शत नमन।

नई सुबह का स्वागत श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यह दिन हमारे लिए शुभ और मंगलमय बने, हमारे मन में सकारात्मक विचारों का संचार हो, हर कार्य में सफलता और सद्बुद्धि प्राप्त हो, हम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलें, सबके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें, दुख और निराशा हमसे दूर रहे, जीवन में शांति, संतोष और प्रसन्नता बनी रहे।

हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, मानवता और करुणा का भाव जागृत रहे, हर दिन नई आशा और उत्साह लेकर आए। हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, विश्व में शांति और सद्भाव बना रहे।

तेरा कोई रूप नहीं, फिर भी तू सर्वत्र है, तू ही प्रकाश है, तू ही जीवन का आधार है। तेरी कृपा से यह संसार चलता है, हमारे मन को सत्य और सदमार्ग की ओर ले चल। अज्ञान के अंधकार को दूर कर, ज्ञान का दीपक जला। तेरी शरण में ही शांति और आनंद की प्राप्ति होती है।

हे अनंत असीम और अदृश्य परमात्मा, तू ही सृष्टि का आदि और अंत है। हमारे जीवन को सत्कर्मों से भर दे, मन में श्रद्धा और विश्वास का संचार कर, हर प्राणी में तेरा ही अंश दिखाई दे।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन, आलेख कुबेर मेहरा और वाचक स्वर आसिफ अली का।
1: प्रकृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। नदियाँ, पहाड़, पेड़, पौधे और जंगल, ये सब मिलकर इस पृथ्वी को जीवंत बनाते हैं। लेकिन आज एक ऐसा सच हमारे सामने खड़ा है जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं रहा। कभी हमारी धरती का बड़ा हिस्सा हरे भरे जंगलों से आच्छादित था। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि वे जीवन का विशाल संसार होते हैं। वहाँ पक्षियों का कलरव होता है, जानवरों का बसेरा होता है और अनगिनत वनस्पतियाँ जन्म लेती हैं। जंगल प्रकृति की वह गोद है जहाँ से जीवन को शुद्ध हवा, जल और संतुलन मिलता है। लेकिन समय के साथ साथ मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं और विकास की दौड़ ने जंगलों को धीरे धीरे सिमटने पर मजबूर कर दिया है। सड़कें बन रही हैं, शहर फैल रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं और इन सब के बीच जंगल लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। आज जब हम चारों ओर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि जिस स्थान पर कभी घने जंगल हुआ करते थे, वहां अब कंक्रीट की इमारतें खड़ी हैं। जहां कभी पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती थीं, वहां अब वाहनों का शोर गूंजता है। जंगलों का सिमटना केवल पेड़ों का कम होना नहीं है, बल्कि यह पूरी प्रकृति के संतुलन के लिए खतरे की घंटी है। जंगल हमारे लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समेटकर हमें स्वच्छ हवा देते हैं। जब जंगल कम होते हैं तो वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है और जलवायु का संतुलन बिगड़ने लगता है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। तापमान बढ़ रहा है, मौसम का चक्र बदल रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है। इन सब के पीछे जंगलों की कटाई भी एक बड़ा कारण है। जंगल धरती के लिए केवल हरियाली ही नहीं लाते, बल्कि वे जल स्रोतों को भी सुरक्षित रखते हैं। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता और नदियां स्वच्छ बनी रहती हैं। जब जंगल कटते हैं तो मिट्टी बहने लगती है और नदियां उथली हो जाती हैं। जंगलों के सिमटने का एक और गंभीर परिणाम है वन्य जीवों का संकट। जंगल ही उन असंख्य जीव जंतुओं का घर हैं, जिनके बिना प्रकृति का संतुलन अधूरा है। जब जंगल कटते हैं तो जानवरों का बसेरा छिन जाता है। वे भोजन और आश्रय की तलाश में भटकते हैं और कई बार मानव बस्तियों की ओर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष बढ़ने लगता है। यह संघर्ष ना तो मनुष्य के लिए अच्छा है और ना ही उन बेबस जीवों के लिए जिनका घर हमने छीन लिया है। जंगल हमारे सांस्कृतिक जीवन से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। भारतीय परंपरा में पेड़ पौधों को देवतुल्य माना गया है। पीपल, बरगद, नीम और तुलसी जैसे वृक्षों को पूजा जाता है। हमारे ऋषि मुनि भी जंगलों में ही तपस्या किया करते थे। जंगलों को बचाने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। जब तक समाज का हर व्यक्ति जंगलों के महत्व को नहीं समझेगा, तब तक केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। हमें अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वृक्षारोपण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम बनकर न रह जाए, बल्कि यह हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों में बचपन से ही प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का भाव विकसित करना आवश्यक है। सरकारें भी वन संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इन योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब आम जनता भी इसमें भागीदार बने। जंगल केवल सरकार की संपत्ति नहीं है, बल्कि वे हम सभी की साझा धरोहर है। यदि हम आज जंगलों को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। वे पूछेंगी कि जब जंगल सिमट रहे थे तब हमने क्या किया। इसलिए समय की पुकार है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। हर लगाया गया एक पेड़ भविष्य की एक आशा है। हर बचाया गया जंगल जीवन की एक नई कहानी है। जब धरती फिर से हरियाली से भर जाएगी, जब पक्षियों का कलरव फिर से जंगलों में गूंजेगा, जब नदियां स्वच्छ और निर्मल बहेंगी, तभी हमारा विकास सच्चे अर्थों में पूर्ण होगा। तो आइए

0: आज हम सब एक संकल्प लें कि हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, पेड़ों की रक्षा करेंगे और जंगलों को सिमटने नहीं देंगे, क्योंकि जंगल केवल धरती की हरियाली नहीं है, वे हमारे अस्तित्व की पहचान हैं।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख कुबेर मेहरा और वाचक स्वर आसिफ अली का। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी इंदौर से खेती की बातें, विषय पर्यावरण पर बातचीत और वाचक स्वर संध्या कोठारी का।
2: किसान भाइयों,
3: राम राम।
2: किसान भाइयों, पानी की बखत भी चालू होगी, पानी आवन लगी गई है। अंधे को खेती बाड़ी का काम तो हमारा पास रह जैसे, और हम एक ऐसा वातावरण का अंदर रवान जेका लोग पर्यावरण कहे। और पर्यावरण जो जेका जिना आवरण का अंदर हम छे ओका पर्यावरण कहे। ये तो आप सबने का मालूम हो गया, एक अंदर हमारा नदी, पहाड़, वृक्ष, मिट्टी, पानी, नदी न सब आवज। अभी सब के सुरक्षा करनो मानव धर्म छे। मानव अगर यो समझी जाए, मनुष्य, कि इना पर्यावरण का बिना हमारो जीवन नहीं है भाई, तो अगर हम इना जीवन का बचाउनो और जीवन का सुधारनो तो हमको पर्यावरण का सुधारनो बहुत जरूरी छे। पर्यावरण में हमारी जैसी छोटी मोटी नदी नहीं रहे, इनको स्वच्छ रखा, साथज में हमारा जो पेड़ पौधा छे उनको सुरक्षित रखा, साथज में यो संकल्प भी लेवा कि हर साल कम से कम हम 5 पेड़ नया जरूर लगावा। एकासी पेड़ लगाने से देखो हमका हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा ना जीव जंतु एम सब शामिल छे जिनके इना पर्यावरण की आवश्यकता छे। भाई होन, पृथ्वी पर अगर हमारो जीवन छे तो इनाज पर्यावरण में छे। अगर यो नहीं रहो तो हमारो अस्तित्व जो छे बहुत खतरा में आई जाएगा न। भाई होना आपको मालूम है कि हम कवान भी बात न भी करान कि अरे वो बीमार हुई गयो, वो का ऑक्सीजन लगावनी पड़ी। ऑक्सीजन क्यों लगावनी पड़ी? कि हमका श्वास नहीं आ रही, और श्वास हमको जब आवज हमारा पेड़ पौधा न सी। पौधा जो छे, पेड़ छे, वो ऑक्सीजन दे हमका, नदी ने हमका पानी दे। देखो पानी का बिना हम 1-2-4 घंटा रह सकान, लेकिन ऑक्सीजन का बिना हम मुश्किल से 10-12 मिनट भी नहीं रह सकता है जीवन। तो एक कारण हमको वृक्ष जरूर लगाउनो चाहिए। हम इना प्रकृति का इतना बड़ा ऋणी छे कि हम जो भी एक कारण करा वो देखो कम छे, क्योंकि हमारो जीवन न जेका पर निर्भर छे। तो भाई होण, पेड़ जरूर लगावा। और आपका तो देखो, आप सब तो यो काम बहुत ज अच्छी तरीका से कर रहा है, पर्यावरण को सुधार को काम हमारा जो छे अन्नदाता कृषक भाई करज सही। पर फिर भी इतरो हम जरूर कहूँगा कि कई बार क्या हो कि पुराना पेड़ हमारा खराब होता जाए, कटता जाए, नया पेड़ हम जरूर लगावा। पेड़ लगाने से हमको बहुत सारा फायदा छे। एक तो सबसे बड़ा फायदा हो कि मिट्टी को कटाव हमारी जमीन से बहुत कम हो जाए, अगर हमारा खेत का चारी तरफ पेड़ लगेला छे तो। दूसरी बात, वह मेड़ ऐसी हो जाए कि हम हमारा खेत में सुरक्षित महसूस कराएं कि कहीं को पड़ोस को व्यक्ति हमारा खेत तरफ बढ़ी नहीं सकतो। दूसरो, हम खेत में काम करान भाई हो, ऐसी तपती लाई में भी हमको काम करना पड़े, बरसात में भी काम करना पड़े, तो कम से कम 2 घड़ी सुकून सी उना पेड़ का नीचे अगर बैठी जावांगा तो यो मानो प्राण वायु हमको जीवन की इच्छा हो जाए या हमारो जीवन एकदम पछो वापिस आई जाए। हम खुद असो कहना लगाएं पेड़ का नीचे बैठी ना कि वाह कसो आनंद आयो। तो पेड़ हमारा बहुत काम की चीज है। आन भाई हो, अब हम तो खेती बाड़ी का काम करने वाला छे, कभी फल का पेड़ लगे देवा तो अरु फायदो छे हमको कि हम उना फल न क तोड़ी न बेची सकान। अच्छा फल हम हमारा घर का, हम खुद हमारा घर में उन न हम खाई सकान। साथज में हमारा जो जानवर रह हमारा साथ पशुपालन कराज, हम उनका भी अगर काम करता करता हमारो मन हो कि बेल 4 घंटा से काम कर रहा है तो उनको उस पेड़ का नीचे अगर थोड़ी देर बांध देवा और तो वो कसा सोचते हैं ना बैठी जाए भाई, उनका देख ही ना अपना मन आनंदित हो जाए कि देखो उनका भी सुकून मिलियो। तो एक कारण पेड़ जरूर लगावा न। पेड़ लगाने का बहुत सारा हमारा फायदा तो मैंने आपको बताया, पर कई नुकसान छे। तो पेड़ न का काटा नहीं, पेड़ कटिंग से क्या हो जाए कि मिट्टी जहरीली हो जाए, मिट्टी वही जाए और ओका साथ में प्रदूषण फैली, रोज शुद्ध हमका हवा नहीं मिली रही, ऐसा कई

0: काम छे पेड़ नहीं होने का। एका लेन इना सीजन में देखो बरसात चालू ही गई, तुम्हारा सभी भाई होन कम से कम 5-5 पेड़ जरूर लगाव। न आज मारा सभी किसान भाई बहन सी योज करनु छे। राम राम।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें, वाचक स्वर संध्या कोठारी का था, विषय था पर्यावरण पर बातचीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

पार्वती के मन में शिव जैसे बावले वर की कामना जगाने वाले नारद जी को जब हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना के विषाद का समाचार मिला, तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताकर हिमवान दंपति को सांत्वना दी। शोकाकुल हिमवान तथा मैना को ये ज्ञात नहीं था कि भ्रमवश सीता का वेश धारण करने के कारण शिव ने सती का त्याग किया था तथा सती ने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और हजारों वर्षों की तपस्या करके शिव को पुनः वर रूप में पाया है। ये कथा सुनकर मैना, हिमवान, सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, समस्त नगर निवासी प्रसन्न हुए और बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गए। प्रस्तुत है जेवनार विवाह मंडप में निर्मित वेदी, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं का आह्वान, उपस्थित नारी समुदाय के व्यंग्य विनोद का ये प्रसंग।

अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। 8:30 पर सुनिए विविधा। सुबह 9:00 लोक संगीत में कलाकार हैं मनशाराम कुनवी पटेल और साथी। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनिए आशा भोसले को। 9:30 शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे कलाराम नाथ का वायलिन वादन, राग है नट नारायण। 10:00 होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 11:58 पर इस घंटे की खास खबरें, 12:58 पर और 2:58 पर। हम आपको सुनवाएंगे संग्रहालय से। 1:00 होगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत का प्रोग्राम होगा और 1:45 पर सुनिए सुगम संगीत। 2:00 हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और 2:30 पर सुनिए आपकी फरमाइश। शाम 5:00 युवाणी में युवा साथी सुनिए आज के क्रम में हमारे शहर पन्ना के बारे में। 5:45 पर सुनिए फिल्म संगीत। 6:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और 6:30 ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: पर सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत समाचारों के ठीक बाद हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
4: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं नीचे सुनिए एक सूचना। इस गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है

0: 30 मिनट से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें गुरुवार को दिनांक 2 जुलाई 2026 समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी। सूचना समाप्त हुई।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

इस समय आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 462.96 मीटर पर आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल है और इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: Applications launch is going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू भी हुआ। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में पीएम केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मेमोग्राफी मशीनें तथा 308 एआई सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माताजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रूपये के विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जलगंगा संवर्धन अभियान की इस अल्पावधि में ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में लगभग 278 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र के लगभग 225 गांवों के 2.5 लाख से अधिक परिवारजनों को सुदृढ़, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सशक्त, समृद्ध एवं विकसित गुना के निर्माण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं।
3: जिस बमोरी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस बमोरी में आज 220 केवी का सबस्टेशन मुंड्रा हनुमान में स्थापित हो रहा है, 280 करोड़। मैं देश का ऊर्जा मंत्री रहा हूँ, उस जमाने में 200 केवी का सबस्टेशन मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलुरु यहाँ लगते थे। मोदी जी के जमाने में 220 केवी का सबस्टेशन मुंड्रा हनुमान में लगा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे जिसमें खेती से जुड़े मॉडल और आधुनिक कृषि के तरीकों, मृदा प्रबंधन, फसल सुरक्षा, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहल प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल क्षति, गांवों और बुनियादी ढांचों की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair

0: आर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए 12 जून से ये अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके तहत एक ग्राहक या एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली में नोटरी नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नया आवेदन मॉड्यूल लॉन्च किया। ये मॉड्यूल योग्य कानूनी पेशेवरों और अधिवक्ताओं को नोटरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि विधिक मामलों का विभाग नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के मुंबई स्थित कौंसुल जनरल नबील ताउआती ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में मुलाकात की। इस अवसर पर कौंसुलेट जनरल के साथ मुंबई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कौस्तुभ परिहार तथा कृषि सलाहकार प्रसाद पारते भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग तकनीकी नवाचार एवं नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार तथा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के मोतीसागर तालाब पर होमगार्ड जवानों का विशेष तैराकी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आगामी 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इंदौर जिले के छोटी बेटमा स्थित विशिष्ट आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में पीटीआई के रिक्त पदों के लिए 6 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आज डिंडौरी जिले के प्रवास पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे समनापुर और कुटेला क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। माखालाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दिया गया है। झाबुआ में युवा संगम का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में किया जाएगा। बैतूल में हॉकी प्रतिभा खोज चयन ट्रायल में जिले के युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। और कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्वाचन सदन स्थित ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम में शामिल, कहा स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

इस समय अपनी ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल।

सुनहरी पल के सभी श्रोताओं को मजिदा खान का नमस्कार। तारों को छेड़कर वो सजाते हैं महफिलें, कल्याण जी की धुनों से महकती हैं मंजिलें, अनजान सुरों को भी जो दे दे नई पहचान, ऐसे फनकार को हमारा है दिल से सलाम। जी हां श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के उस महान संगीतकार को जिनकी धुनों ने कई पीढ़ियों से दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी की, जिन्होंने अपने छोटे भाई आनंद जी के साथ मिलकर कल्याण जी आनंद जी के रूप में भारतीय फिल्म संगीत को अनगिनत सदाबहार गीत दिए। करीब 3 दशकों तक उनकी धुनें सिनेमा, रेडियो और श्रोताओं के दिलों में गूंजती रहीं। उनकी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास, लोक धुनों की सादगी और आधुनिक संगीत का सुंदर समन्वय दिखाई देता है।

हिंदी फिल्मों के इतिहास में संगीत का जिक्र आते ही कल्याण जी आनंद जी का जिक्र भी जरूर होता है। उन्होंने लगभग 250 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत और उनकी धुनों के जादू को शब्दों में पिरोना एक खूबसूरत एहसास है। उनकी रचनाएं दिल को छू लेने वाले सुरों का खजाना है। उन्हें 1968 में सरस्वती चंद्र के लिए पहले नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुनते हैं उसी फिल्म का ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहां?

0: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

साजे दिल को वो कुछ ऐसे सजाते हैं, कल्याण जी और अनंत जी से महफिलें सजाते हैं। इनकी धुनों में छुपा है कोई पुराना साज, सुनते ही जिसे जमाने के अहम भूल जाते हैं।

आज का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं माजिदा खान के साथ। श्रोताओं, कल्याण जी का जन्म 30 जून 1928 को हुआ। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा बन गया। संघर्ष, मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। बाद में भाई आनंद जी के साथ जुड़े और दोनों की जोड़ी ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। उनका संगीत हर वर्ग के श्रोताओं को पसंद आया। उन्होंने गीत, भजन, कव्वाली, गजल, देशभक्ति और रोमांटिक गीतों में भी अपनी पहचान बनाई।

श्रोताओं, कल्याण जी आनंद जी ने अनेक प्रसिद्ध गायकों महेंद्र कपूर, आशा भोसले, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश सभी के लिए ऐसी धुनों को सजाया जो आज भी अमर हैं। उनकी धुनों की सबसे बड़ी खूबी थी सरलता, मधुरता और भावनात्मक गहराई।

कभी ठहराव सा है इनके संगीत में, कभी मचलती हुई बहारों का असर है। कल्याण जी और अनंत जी की जोड़ी सदाबहार दोनों का दूसरा नाम और हुनर है। श्रोताओं, अच्छे संगीत की कोई उम्र नहीं होती। दशकों पहले बनी धुनें आज भी उतनी ही ताजगी का एहसास कराती हैं। यही एक सच्चे संगीतकार की पहचान है और कल्याण जी ने इसे अपने पूरे संगीत के सफर में जीवन में सिद्ध किया।

दोस्तों, उनकी रचनात्मकता का एक और पहलू ये था कि वे नए कलाकारों को भी अवसर देने में विश्वास रखते थे। उनके संगीत में भारतीय संस्कृति की आत्मा बसती थी। यही कारण है कि समय बदलने के बाद भी उनकी धुनों की लोकप्रियता कम नहीं हुई। अल्फाज तो बस गीत को जुबान देते हैं, कल्याण जी आनंद जी की धुनें उन्हें जान देती हैं। चांदनी रात हो या कोई तन्हा सफ़र, इनका संगीत हर धड़कन को एक नया मुकाम देता है।

श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा है। कल्याण जी ने अपनी धुनों से खुशी, प्रेम, दर्द और उम्मीद, हर भावना को सुरों में ढाला। फिल्म कोरा कागज के लिए इस जोड़ी को वेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और 1992 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था।

श्रोताओं, आज हम याद कर रहे थे उस संगीतकार को जिनकी धुनों ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नई पहचान दी। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। बरसों बीत गए पर वो सुर अभी भी जिंदा है। कल्याण जी, आनंद जी के संगीत का हर नगमा अभी भी जिंदा है। सदाबहार धुनों की ऐसी मिसाल कहाँ मिलेगी। हर धुन इनकी मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्ता है। और अब अनुमति दीजिए माजिदा खान को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। यह आकाशवाणी इंदौर है। 8 बजने को है अब समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य

0: घायल। अमेरिका और ईरान हुरमुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन

0: करोड़ का खर्च तो मात्र इन चार सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान।

0: गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy. Cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. Their withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangements. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
2: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. We have more from a correspondent.
4: Chief Minister Shubhendu Adhikari announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled State Cabinet meeting on Thursday. Following the models of the Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on the total of 9 subjects, including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he clarified that scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
5: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem. The ministry said the initiatives are intended to make Indian cinema more globally competitive while encouraging investment in cinema infrastructure, particularly in smaller towns and rural areas. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. It will suggest ways to strengthen the sector and recommend measures to make Indian films more competitive globally. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. This move will help build a strong, modern and globally competitive Indian film industry. With Soumya and Aman, this is Chirag Jha from News Desk.
2: Delhi government has approved an ambitious electric vehicle EV policy. As per the new policy, EV cars priced up to 30 lakh rupees have been exempted from registration fees and road taxes. The new policy also offers a 1 lakh rupee incentive for purchasing new EVs while scrapping old vehicles, and mandates that only electric two-wheelers can be registered starting April 2028. Addressing a press conference in New Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the government has devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
6: This is truly a historic day. Delhi EV policy, which we aim to implement starting July 1, 2026, following the LG approval, the policy will remain in effect until March 31, 2030. It focuses entirely on electric vehicles, especially zero-emission vehicles, with the ultimate goal of gradually transforming Delhi into a pollution-free city for the benefit of its residents. We have devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
2: The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters in the National Capital Territory of Delhi will begin today. Chief Electoral Officer of Delhi Ashok Kumar announced this while briefing the media in New Delhi yesterday. He said booth-level officers, BLOs, will visit every household from today till the 29th of July to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. Mr. Kumar said that claims and objections can be filed between 5th of August to 4th of September. final electoral roll will be

0: श्रोताओं, आजकल युवाओं की सोच है कि नौकरी की अपेक्षा अपने स्वयं के व्यवसाय से अधिक पैसा कमाया जा सकता है। जो मेहनत हम नौकरी में करते हैं उससे दूसरों को फायदा होता है। यदि उतनी ही मेहनत स्वयं के व्यवसाय में की जाए तो अधिक फायदा और धन कमाया जा सकता है। हम बैंक से आसानी से मुद्रा लोन ले सकते हैं, जिससे हम आसानी से स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मुद्रा लोन लेकर किस तरह हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं। इस विषय में आइए सुनते हैं मुद्रा लोन लेकर व्यवसाय आरंभ करने वाले सफल व्यवसायी कमल शर्मा से मिलिंद सूबेदार की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हम विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसे उद्यमी से चर्चा करेंगे

0: जिन्होंने मुद्रा लोन लेकर के और अपना खुद का व्यापार व्यवसाय आरंभ किया। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीमान कमल शर्मा जी से, और जानते हैं कि कमल शर्मा जी कितने पढ़े लिखे हैं, क्या-क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो कमल शर्मा जी, आपका आकाशवाणी इंदौर के स्टूडियो में स्वागत है। आप मुद्रा लोन लेके आपने अपना कामकाज शुरू किया, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है और आप इससे पहले क्या काम करते थे।
1: जी सर, थैंक यू। आकाशवाणी में मुझे
0: जी
1: बुलाया उसके लिए बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद।
0: जी
1: सर, मेरा ग्रेजुएशन है, बीकॉम फाइनल किया है मैंने,
0: जी
1: और इससे पहले मैं जॉब करता था एक प्राइवेट कंपनी में, पर
0: हाँ
1: मुझे उससे कुछ संतुष्ट नहीं हुई। मैंने सोचा कि नहीं, अपना खुद का कुछ सेल्फ
0: जी
1: बिजनेस
0: जी
1: करूं।
0: तो प्राइवेट कंपनी में आप किस तरह का काम करते थे,
1: सर, मेरा ऑपरेटर का था,
0: किस तरह का ऑपरेटर?
1: ऑटोमोबाइल CNC ऑपरेटर।
0: अच्छा।
1: जी, और वहाँ से फिर वर्किंग लोड भी ज़्यादा होता था, तो उसके
0: जी
1: कारण फिर मैंने उसको ड्रॉप किया
0: जी
1: और खुद का बिजनेस स्टार्ट
0: जी
1: किया।
0: ऐसा कहा जाता है खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, खुद की पूंजी जुटानी पड़ती है
1: जी
0: और खुद का अनुभव भी होना चाहिए, और उसमें धोखा होने के चांसेस बहुत रहते हैं, और
1: ज़्यादा
0: आदमी
1: रहता,
0: सड़क पे आने की डर
1: बिल्कुल
0: की जो
1: सर,
0: प्रवृत्ति रहती है, उस प्रवृत्ति की वजह से अपना खुद का बिजनेस नहीं शुरू कर
1: नहीं
0: पाते।
1: सर।
0: तो इस प्रवृत्ति को आपने कैसे पार पाया, ऐसे कौन से कारक तत्व तो बने जिससे आपकी हिम्मत बनी बिजनेस करने की?
1: स्टार्टिंग में मैंने जॉब को एकदम से छोड़ा नहीं
0: जी
1: था, जॉब भी किया और थोड़ा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया। उस शॉप को पहले तो पार्ट टाइम मैंने बिजनेस को पार्ट टाइम किया,
0: जी
1: फुल टाइम तो जॉब ही किया। जो जॉब से मेरी सैलरी आती थी उससे मैंने अपना बिजनेस धीरे धीरे धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाया। उसके बाद लगा मुझे कि हाँ अब चल सकता है, तो मैंने अपने जॉब को रिज़ाइन किया और उसके बाद पूरा मन से मैंने जॉब को ही किया कि नहीं, मुझे
0: जी
1: अभी अपना शॉप ही चलाना है।
0: जी जी जी
1: उसके बाद फिर मुझे थोड़ा पेमेंट की ज़रूरत लगी,
0: हाँ
1: पाँच
0: हाँ
1: 25,000 रुपये 50,000 रुपये से मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था। जो
0: जी
1: मैंने कमाई की थी
0: जी
1: पूरे 5 साल 6 साल के डिपॉजिट किया था उससे, और आगे चल के कंपटीशन ज़्यादा था, बड़ी बड़ी शॉप थी, दुकानें थी।
0: अब बिजनेस कौन सा था ये आपने बताया नहीं।
1: मेरा बिजनेस किराना शॉप।
0: अच्छा,
1: जी
0: किराना शॉप का था।
1: जी
0: किराने मतलब रोजमर्रे की जो
1: रोजमर्रे
0: वस्तुएं
1: की जो चीज़ें होती
0: आदमी को
1: हैं,
0: लगती हैं वो
1: बिल्कुल
0: सब चीज़ें आपने
1: वो सब
0: रखी है।
1: चीज़ें।
0: जी
1: अब मैंने स्टार्टिंग तो कर लिया, पर बाकी उसके बाद फिर समस्याएं बहुत आई, फर्नीचर की, माल की, स्टॉक का माल, कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए का स्टॉक। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने जॉब भी छोड़ दिया है, अब दुकान भी चलाना है, शॉप को अपने कैसे मेंटेन करना। बैंक में मैं जाता था डिपॉजिट करने के लिए अपना, तो वहाँ पर हमारे यहाँ नई नई बैंक खुली थी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसमें नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, मुद्रा योजना। मैंने साहब से भी चर्चा किया, उन्होंने बताया कि
0: साहब
1: आपको,
0: मतलब ब्रांच मैनेजर।
1: ब्रांच मैनेजर,
0: जी
1: जी अपने ब्रांच मैनेजर ने बताया कि आप इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाइए, उसके बाद रोजगार कार्यालय में एक आवेदन दीजिए, वहाँ
0: जी
1: से फिर हमें सूचना आएगी कि किन्हें लोन देना है या नहीं देना है।
0: ठीक।
1: मैंने वहाँ जाके अप्लाई
0: तो
1: किया,
0: आपका जिला कौन सा पड़ता
1: धार
0: है?
1: जिला,
0: हाँ, तो फिर आप
1: रोजगार, मैं रोजगार कार्यालय में गया, वहाँ आवेदन किया और उसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन किया। वहाँ आने के बाद 7 दिन बाद मुझे कॉल आया, रोजगार कार्यालय से भी कॉल आया और बैंक से भी आया कि आपका आवेदन स्वीकार हो गया है, आप आइए, ये आवेदन देना है आपको। मैं वहाँ गया, वहाँ से चर्चा हुई, फिर उन्होंने बताया कि आपको कोटेशन फाइल देना है। मैंने कोटेशन फाइल
0: तो
1: बनवाया,
0: आपने फिर ब्रांच मैनेजर को और रोजगार कार्यालय में बताया होगा कि क्या बिजनेस आप शुरू करना चाहते
1: जी
0: हैं, तो उन्होंने आपकी पूरी जो केस स्टडी है कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कितना पैसा चाहिए और उस
1: जी
0: पैसों से आप क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या निवेश करेंगे,
1: बिल्कुल
0: सारी चीज उनने भरवाई होगी। तो
1: भरवाया,
0: आपने एक एक कॉलम बड़े ध्यानपूर्वक भरा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये फॉर्म भरने में आपने किसी की मदद ली क्या?
1: हाँ, मैंने फॉर्म भरने में अपने एक्सपर्ट है, जो सीनियर मेरे फ्रेंड है, उन्होंने
0: अच्छा,
1: भी जो बिजनेस किया था तो लोन के लिए, तो उनका
0: उन्होंने
1: मैंने
0: उन्होंने भी मुद्रा लोन लिया
1: मुद्रा
0: था।
1: लोन लिया था।
0: अच्छा, तो एक अनुभवी से
1: जी
0: आपने मदद ली तो
1: बिल्कुल,
0: आपका भी पास हो गया,
1: मेरा भी पास हो गया।
0: बहुत
1: तो उसमें
0: बढ़िया।
1: मैंने फर्नीचर का 1 लाख रुपए का फर्नीचर, पहले पहले मेरे पास फर्नीचर भी नहीं था, 1 लाख का फर्नीचर के लिए आवेदन किया, कोटेशन बनवाया और उसको 3 लाख का मुझे लोन, टोटल लोन सेंक्शन 4 लाख का हुआ,
0: अच्छा।
1: जिसमें मेरी शॉप अभी हाल फिलहाल इतने व्यवस्थित तरीके से सेटल हो गई है कि मैं पर डे 15 से 20 हज़ार रुपये की सेलिंग करता हूँ, और आज
0: अच्छा,
1: भी यहाँ पर आया हूँ स्टूडियो में, तो उससे पहले मैं सेलिंग करके और सब व्यवस्थित करके,
0: बहुत बढ़िया।
1: जी
0: बहुत अच्छी।
1: और उसके पश्चात ही आया हूँ।
0: तो हम जानना चाहेंगे कि कमल शर्मा जी, आपकी जो ये दुकान है
1: जी
0: वो कहाँ पे है, किस जगह पे है?
1: लेबर चौकी में है सर,
0: लेबर चौकी
1: मेन, हाँ रतलाम रोड पर।
0: हाँ
1: और मेन रोड पर ही है मेरी
0: मतलब एक एक रोड धार की तरफ कटती है और एक रतलाम की तरफ,
1: रतलाम की तरफ
0: इंदौर से जाते समय
1: जी,
0: तो ठीक उस जगह पे चौराहे पे,
1: चौराहे पर है
0: आपकी दुकान है
1: जी।
0: तो ऐसी चौराहे के जो दुकान, जो मौके की दुकान रहती है, उस मौके की दुकान को पाना भी बड़ी टेढ़ी खीर होती है।
1: बिल्कुल।

0: उसके लिए आपने क्या किया?
1: उसके लिए सर स्टार्टिंग में ही हमने वहाँ पर शॉप लिया था, मैंने मकान बनाया वहीं पर, एक शॉप के लिए मैंने अप्लाई किया था। कोशिश चल रही थी कि मुझे बस, मेरा टारगेट यही है कि मुझे यहाँ शॉप अपनी ओपन करना है जी। बस के इंडस्ट्रियल एरिया है आसपास में, आज सेटल हो जाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ।
0: तो एक दिन में आपकी 15,000 से 20,000 की सेल हो जाती है
1: जी जी,
0: तो आपका शुद्ध मुनाफा फिर इसमें कितना हो पाता होगा? एक आइडिया
1: सर पर डे 6,000-7,000 रुपए के समथिंग, 8,000 रुपए के समथिंग हो सकता है,
0: उसमें आप
1: बचा लेते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें खर्चे भी होते
1: हैं। खर्चे भी होते हैं।
0: खर्चे कैसे कैसे होते हैं? बिजली के,
1: बिजली का है, उसके बाद फिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन से माल आता है इनके खर्चे
0: जी,
1: और फिर कुछ सेलिंग जो होती है वो उधारी में भी हो जाती है
0: जी जी,
1: और उसके बाद फिर टैक्स वगैरह जो लगता है, आईटीआर। मेरा इससे पहले शॉप, एक और शॉप लिया स्टार्ट किया था, उस समय मेरा कोई आईटीआर नहीं था। जब लोन मिला मुझे, माल भी अच्छा स्टॉकेज हुआ, तब मैं 3 साल से आईटीआर रिटर्न भी मेंटेन कर रहा हूँ।
0: इनकम टैक्स का आप रिटर्न भी भर रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई।
1: और ये सब संभव हो सका सर मुझे मुद्रा योजना के द्वारा जो लोन मिला, और उसके पश्चात योजना के माध्यम से ही मुझे अनुदान राशि भी दी गई बैंकों के द्वारा, बताया गया आपको 15% छूट भी दी जाएगी इसमें, आप समय पर लोन भरते हैं और समय के साथ आप।
0: तो कुल मिला के कितने रुपयों का लोन आपका स्वीकृत हुआ और कितना आपको मिला कैश आपके मतलब खाते में, कितना रुपया है?
1: 4 लाख का लोन सेंक्शन हुआ था मेरा।
0: अब मांगा कितना था?
1: मैंने 5 लाख मांगा था।
0: 5 लाख मांगा था, 4 लाख
1: मिल गया।
0: 4 लाख आपके खाते में आने में कितना समय लगा?
1: करीब 1 से 1.5 महीना।
0: 1 से 1.5 महीना लगे, 45 दिन के आसपास,
1: 45 दिन के अंदर हो गया।
0: तो जैसे ही आपके खाते में पैसा आया, फिर आपने उसको खर्च करना शुरू किया?
1: बिल्कुल।
0: और
1: पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया था।
0: हाँ,
1: व्यापारी जो बिजनेस हमने, मैंने कोटेशन बना के दिया था कि कहाँ से मुझे माल परचेस करना है,
0: जैसे फर्नीचर कहाँ से चाहिए।
1: हाँ जी,
0: फर्नीचर वालों को पेमेंट गया होगा,
1: पेमेंट दिया।
0: फिर आपने जिस होलसेल व्यापारी से माल लिया होगा उसके खाते में,
1: उसके खाते में,
0: आपके खाते में नहीं आया?
1: मेरे खाते में नहीं आया,
0: ताकि व्यक्ति उसकी हेर फेर ना,
1: बिल्कुल हेर फेर ना कर सके।
0: तो आपने ईमानदारी बरती, बिल्कुल ईमानदारी से आपको काम मिला।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: और कहाँ कहाँ डायरेक्ट गया, किन किन लोगों को पेमेंट गया?
1: तीन, मेरे करीब 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके पास गया।
0: अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर से आपने
1: माल लिया,
0: ये परचून का माल?
1: बिल्कुल।
0: ठीक ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ, इंदौर में ही थे?
1: इंदौर में भी है, पीतमपुर में भी है।
0: अच्छा,
1: और धार में भी है।
0: बहुत बढ़िया जी, तीन जगह से।
1: तीन जगह से।
0: उनके जैसे ही खाते में दिया तो उन्होंने ईमानदारी से आपको?
1: ईमानदारी बिल्कुल, बराबर ईमानदारी से, बिल्कुल
0: जी जी। इसमें बहुत सारे तनाव और बहुत सारी बाधाएं आई होंगी, वो कौन सी तनाव और बाधाएं आपने झेली वो भी बताइए।
1: बाधाएं ये सर आई कि माल का स्टॉक तो मैंने कर लिया, माल का स्टॉक करने के बाद अब ये सेल कैसे करना। इस सेल वैसे नहीं होगा कि आपने स्टॉक में रख लिया, शॉप में आके ग्राहक अपने पास आएंगे। मैंने स्टॉक करने के बाद में सब आसपास की जो कॉलोनियाँ थी वहाँ जा जाके अपनी शॉप का प्रचार भी किया और पंपलेट छपवाए। पंपलेट छपवाने के बाद में सब आसपास के जो गांव लगते हैं वहाँ भी जाके मैंने उनको माल का सप्लाई किया कि ये मेरी शॉप है, आप आइए और रिजनेबल रेट में आपको सामान दिया जाएगा जी।
0: तो इस तरह से जी, इसमें बहुत से ऐसे होते हैं, किस्से ऐसे आते हैं कि माल तो आपने बहुत भर के रख लिया लेकिन ग्राहक नहीं आए। ग्राहक में भी 90% ऐसे आए जो उधारी में ले गए और उन्होंने आपका पेमेंट नहीं किया, तो आपकी जो रोटेशन है वो बिगड़ गई। इस समस्या से आपने कैसे पार पाया?
1: हुआ है सर कुछ समय ये भी हुआ है कि उधारी गई और वापस रिटर्न आया नहीं, पर बस माल में मैंने अपने शॉप में मन लगा के किया, कब उधार देना ही नहीं है और जो उधार दिया है तो किसी की अपने को विटनेस लेना है कि हाँ आपको सामान चाहिए तो एक गवाह
0: चाहिए,
1: बिल्कुल
0: कि इनके सामने उधारी में माल,
1: माल दिया है और 1 से 2 महीने के अंदर हमको वापस रिटर्न चाहिए। बिल्कुल। तो उस समय तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, करीब 25,000-50,000 रुपए के नीचे आया मैं, पर अब वापस से रोटेशन में है गाड़ी और अच्छा चल रहा है बिजनेस और उधारी में भी है और करीब 50 से 60 अकाउंट है मेरे उधारी के और बाकी डेली अपना
0: छुटपुट सामान, कोई साबुन ले जा रहा, कोई टूथपेस्ट ले जा
1: रहा। जी जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा ये बताइए कि आपका जो मुद्रा लोन है उसमें अब आप कितनी समय में अपना लोन वापस कर देंगे बैंक को?
1: बैंक ने समय दिया है 5 से 6 साल का, मैं तो कोशिश करता हूँ कि 3 साल के अंदर ही इसको पूरा रिटर्न कंप्लीट कर दूंगा ताकि आगे और मुझे थोड़ा सा बढ़ाकर मैं लोन ले सकूं।
0: 3 साल में ही आप 4 लाख रुपए वापस की स्थिति में आ जाएंगे
1: जी,
0: और फिर नया कोई लेंगे तो ये मुद्रा लोन के अंदर कौन सा, ये शिशु लोन था कि कौन
1: सा? व्यापार लोन
0: जी।
1: अच्छा, व्यापार लोन था और उसमें मुझे अभी 4 लाख का तो लोन मिला, पर बाकी उसमें मुझे भरना है 3,60,000
0: 3,40,000
1: ही भरना है,
0: तो 60,000 की सब्सिडी
1: आई मुझे।
0: अच्छा, मतलब ये सीधी सरकार की ओर से आपको मदद हो गई
1: कि
0: 60,000 मदद, क्योंकि आपने हिम्मत की, आपने जोखिम उठाया
1: बिल्कुल
0: और

0: आप मेहनत भी करेंगे तो 60,000 आपको बैंक को वापस नहीं
1: नहीं
0: करने हैं,
1: करना है,
0: 3,40,000
1: तीन
0: आपको
1: लाख चालीस
0: वापस
1: हजार
0: करने
1: रुपये
0: हैं।
1: करना है
0: तो बहुत बहुत बधाई कमल शर्मा जी,
1: जी
0: और
1: सर,
0: हमें उम्मीद है कि हमारी भेंटवार्ता सुनकर कमल शर्मा जी से कि कैसे इन्होंने मुद्रा लोन लेके अपना खुद का व्यवसाय आरंभ किया, जबकि आप खुद नौकरी करते थे
1: जी
0: और नौकरी छोड़कर आपने अपना खुद का काम का शुरू किया। अभी कमल शर्मा आपकी कितनी उम्र होगी?
1: सर मेरी 37,
0: 37 साल की उम्र है।
1: जी
0: तो दूसरे जो हमारे युवा साथी हैं, दूसरे जो हमारे श्रोता हैं, वो भी इससे प्रेरणा लेंगे और अपनी हिम्मत और जोखिम से इस तरह से नया व्यापार शुरू करेंगे। श्रोता नमस्कार, आपको ये भेंटवार्ता कैसे लगी हमें पत्र जरूर लिखिए। कार्यक्रम विविधा, दौरा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, मालवा हाउस, इंदौर, पिन 452001, इस पते पर हमें पत्र लिखें। कमल शर्मा जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, थैंक यू।
2: अभी आपने सुनी कमल शर्मा से मिलिंद सूबेदार की बातचीत कि किस तरह उन्होंने मुद्रा लोन लेकर अपना व्यवसाय आरंभ किया और सफलता प्राप्त की। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मनुष्य के अनुभवों के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करती भरत कुमार उपाध्याय की कविताएं।
3: कविता का शीर्षक है अर्थांतर, मनुष्य के मनोभावों के अंतर्द्वंद को प्रकट करती यह कविता प्रस्तुत है। अपनी ही सृष्टि रचना से दिग्भ्रमित, अपने ही जाल में उलझते, मकड़ी के सदृश जाल बुनते आदमी, लेकिन अब यह छटपटाहट सी क्यों? जाल से बाहर निकलने के लिए संकल्प विकल्प सच हो सकते हैं जाल से मुक्ति के, किंतु चेहरे पर आते जाते इन भावों में फिर क्यों दिखती है यही छटपटाहट किंचित छद्म छद्म सी। कंदराओं और गुफाओं से निकलकर ज्ञान और विज्ञान की रोशनी में अपने सिद्ध हस्त हो चुके हाथों के हुनर से संवारते हुए धरती के हरेक हिस्से को समंदर की अतल तल गहराइयों से उद्भुत किनारों पर आकर चट्टानों से टकराती उसकी उर्मियों को तो गिन चुके कभी का, अब तो करते हुए गिनती सूरज चांद सितारों की किसी और पृथ्वी की तलाश में भी हो। अभी तरक्की और उन्नति के नित नए सोपान तय करते हुए तुमने ही तो निर्मित किया था यह तिलिस्म, तुमने ही तो बुना था यह जाल, तुमने ही तो गढ़ी थी यह नई सृष्टि अपने दुखों से निवृत्ति सुखों की कामनाओं के लिए। तो अब रहो बड़े मजे से रास रंग मदनोत्सव के अनिवर्चनीय आनंद के संग झिलमिलाते जगमगाते अपने इस तिलिस्म में उलझे रहो अपने ही जाल में। अब यह बार बार की घबराहट बेचैनी चित्त की चंचलता, क्या नहीं मिला तुम्हारी खुशियों को कोई ठोर ठिकाना रहते हुए अब तक इस तिलिस्म में? कहीं जी का ही तो जंजाल नहीं बन गया है जाल यही, या कि मन भर गया है फिर अपने जाल से? तिलिस्म में रहते हुए भी अज्ञात के प्रति असीम श्रद्धा भाव से भरे हुए अपनी आस्थाओं और विश्वास को देते हुए आयाम अपने महल मकान अट्टालिकाओं सरीखे ईंट गारे पत्थरों से बना डाले तुमने बेशुमार मठ मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, केवल निर्वाण आत्मशांति के अद्भुत और अनूठे मुक्ति पथ। अपने ही हाथों से तराशी हुई उन प्रस्तर प्रतिमाओं के सन्मुख कुसुमांजलि मधुपर करते हुए अर्पण हाथ जोड़कर अस्फुट स्वर में बुदबुदाते हुए करते हुए प्रार्थनाएं जाल से मुक्ति की, या जाल में सन्निहित रहकर मुक्ति की? लेकिन सदियों सदियों से मौन वे प्रस्तर प्रतिमाएं कब कहाँ बोलती है, कब कहाँ कोई उत्तर देती है? वे तो डूबी हुई है आकंठ कंठ तुम्हारे ही कर कमलों के श्रृंगार भाव में। वो देखो उनके श्री चरणों में रखे हुए हैं तुमसे भी पहले के दूर दूर से न जाने कहाँ कहाँ से चलकर आए युगों युगों से जमा हुए, बैठे हैं जस की तस प्रश्नों के बोने पर्वत उत्तर की तलाश में। अभी कुछ देर और ठहरते करते कुछ और प्रार्थनाएं सौंपते कुछ और प्रश्नों की सूची कि उसके पहले बढ़ती भीड़ के कोलाहल में सुनते हो आवाज यही, और रहोगे सन्मुख कितनी देर उपस्थित कितनी देर खड़े रहोगे, अब परे हटो जरा हमको भी करना है अपने प्री के दर्शन, और तुरत फुरत ही हाथ जोड़कर करते हुए नमन निकल जाते हो उन प्रस्तर

प्रतिमाओं के परिसर से बाहर और अनंतर फिर देखते हो बाहर जाकर किसी विशाल से जनसमूह को संबोधित करते अलौकिक सत्ता के अध्येता वे महानुभाव विद्वान श्री बेशुमार नरमुंडों की भीड़ देख देख कर गदगद होते। बाबा जी सुनते हो पूरे एक प्रहर बड़े ध्यान से उनकी बातें, फिर हाथ जोड़कर करते हुए निवेदन उनसे रखते हो अनसुलझे प्रश्न वही जाल से मुक्ति के। मिश्री से भी मीठे वचनों में सहज भाव से वे उत्तर देते, पहले तस दो वह सब मोह माया अर्थ उपार्जन, तोड़ दो सब रेशम मखमल जैसे रिश्तों के ताने बाने, फिर आना पास हमारे तब समझाएंगे कैसे होते हैं नीति के नियंता, क्या स्वरूप है सत असत का, कैसे होते हैं पथ मुक्ति के, कैसे होती है मुक्ति। और झुंझलाकर करते हुए फिर प्रश्न स्वयं से, तो क्या मुक्ति भी शर्तों सहित मिला करती है, और स्वयं के प्रश्नों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते, प्रश्नों की अनसुलझी पहली को सुलझाने, फिर आगे बढ़ जाते हो जंगल जंगल पर्वत पर्वत नदियां नदियां करते हुए उपाय अनगिनत मुक्ति के, किसी पयस्विनी में अवगाहन कर पापों का प्रक्षालन करते, किसी घने विपिन में किसी विटप की छाया में कुछ दिवस बैठकर मुक्ति की प्रार्थना करते, या मूक अभिनय करते मुक्ति का, किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर कुछ दिन कुछ महीने कुछ साल बिताकर पुण्य भाव को जागृत करते, गत पाप पुण्य का लेखा जोखा साथ लिए लौट कर आ जाते हो एक दिन पुनः अपने उसी तिलस्म में जिसे छोड़कर गए थे तुम प्रश्नों की अनसुलझी पहली को सुलझाने। समय चक्र चलता रहता है, श्वासों का श्लथ होना तन जर्जर होता रहता है, और आ जाता है अंत तो गतवा वह दिन भी जब अंतिम इच्छा के अनुरूप मणि कर्णिका घाट पर धू धू कर जल रही चिता में तड़ तड़ की आवाज अस्थियों की तन धुआं धुआं होता है। कुछ क्षण पहले छाया था जो मौन अब वह हुआ तिरोहित, वैराग्य भी कुछ देर ठहर कर विदा हुआ, रुदन सिसकियों की ओट लेकर हो गया था अदृश्य कहीं, सिसकियों ने दिलासों के भरोसे हिचकियों के संग देह से विदेह हो चुके उस माटी के तन को याद किया, और घाट पर भी अर्थी के संग आए हुए लोगों की अब आने लगी थी आवाजें, होने लगी थी चर्चा है प्रारंभ, लो छूट गए सब रिश्ते नाते, टूट गया सब ताना बाना, चलो जाल से मिल गई मुक्ति, खत्म हो गया अब झंझट सारा। किंतु इस चर्चा से असंतुष्ट किसी और बटोही के मन में उठता है फिर प्रश्न यही, तो क्या देह मुक्ति ही मुक्ति का पर्याय बनी है। सुनकर ही यह प्रश्न जलती हुई चिता से उठकर प्रश्न वही जाल से मुक्ति का चल देता है उसी बटोही के संग फिर उत्तर की तलाश में। बहुत कठिन है बंधु देह के दंभ से मुक्त देह में देहातीत होने की अनुभूति, कहीं नहीं है कोई एक सुनिश्चित पथ मुक्ति के, वो पहले से ही अज्ञात के हाथों, न जाने कौन सी सृष्टि में रचे बसे तू, न जाने कौन से महाजाल के मोहपाश में उलझे उलझे से हम, तिस पर रज डाली तुमने भी एक नई सृष्टि, निर्मित कर दिया एक जगमगाता सा तिलिस्म, बुन डाला एक जाल नया नया सा, और जब घबराए स्वयं आपसे तो चल पड़े कदम मुक्ति की प्रार्थनाएं करने, अज्ञात के हाथों रचे उस महाजाल से, उसके अपने हाथों रची हुई उस सृष्टि से, तो है फिर भी मुक्ति संभव, लेकिन जिस जाल को बुना है तुमने, जिस नई सृष्टि को रचा है तुमने, जिस झिलमिलाते तिलिस्म को निर्मित कर बैठे हो तुम, उसमें तो मुक्ति दूर दूर तक कहीं नहीं। बस लोह श्रृंखलाओं में जकड़े हम और जकड़ते एक दूजे को, न जाने कौन सी दिशा तय करते हुए अर्थहीन से स्वयं के विनिष्ट होने की कगार से बस चार कदम ही तो दूर खड़े हैं, हर क्षण हर पल देते हुए चुनौती
कभी स्वयं को,

0: कभी प्रकृति के हर रूप स्वरूप को, कभी चांद पर जा पहुंचे, कभी सूरज के उस झीने वसन को तार तार करते, जिससे छनकर आती थी वो जीवनदायिनी रश्मियाँ, आज मृत्यु का रूप लिए इस धरा पर उतर रही है। वह पहले से ही हमारी अंतहीन इच्छाओं की पूर्ति में संलग्न धरा जरा जीर्णता को प्राप्त हो चुकी, अपने कांधों पर लादे बोझ हमारा, क्या अपने अक्ष पर ठीक बराबर घूम रही है? घातों प्रतिघातों से प्रकंपित पृथ्वी अहर्निश वह कांप रही है, क्या तुम्हें पता है? वह भी तुमसे शायद मुक्ति की प्रार्थना कर रही है। मुक्ति नहीं है खुद को पाना या होना विरत सभी से, मुक्ति है तो सभी, मुक्ति में तो सभी समाहित, जो रह गए थे वाणी से वंचित, जड़ हो या हो चेतन, उस अंतहीन अनंत में अपने अस्तित्व को सिद्ध करने से पहले उतरो अपनी देह के अंतर्निहित व्योम में। मुक्ति तो मिल जाती है सहज भाव से उस जोगन को, न जाने कौन से पल में उसके पग में नुपुर बंधे, न जाने कौन से भाव में उसका तन मन नाच उठा, न जाने कौन से क्षण में उसकी पायल के घुंघरू छन से बिखर गए। वह तो बुनता रहा जाल सदा ही पेट की खातिर, लेकिन कब कहाँ अटका भटका अपने ही जाल में, लो सुनकर ही चर्चा स्वयं की, फिर लगा ठहाका जोर से उसका, लगता है आज ठगा है फिर किसी ने उसे हाट में, इति शुभम नमस्कार।
1: अभी आपने सुनी भरत कुमार उपाध्याय की ये कविताएं। श्रोताओं, आजकल की दौड़भाग भरी जीवन शैली में स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना बहुत कठिन है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। इसके लिए प्राचीन काल से योग और योगासन सबसे अच्छा उपाय बताया जाता है। परंतु श्रोताओं, योगासन से शरीर स्वस्थ रह सकता है, मन को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है। योग का अर्थ है ध्यान व एकाग्रता से मन को शांत व नियंत्रित करना, इसी से मन स्वस्थ होगा। ऐसी ही योग और योगासन के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं योग प्रभा भारती सेवा संस्था ट्रस्ट के स्वामी शिव कृपानंद।
2: चैतन्य की भाषा एक ऐसी है जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना साकार कर सकती है, और योग ऐसा माध्यम है जिस योग के माध्यम से वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है। लेकिन आज हमने योग को छोटा करके रख दिया है। अष्टांग योग के 8 पार्ट है, उसमें का एक अंग, एक भाग केवल योगासन है, और योगासन को ही पिछले 5 साल से हम देखिए ना, जैसे 21 जून आता है योगा दिवस मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हमने योग दिवस को मनाया ना, तो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि योग का समग्र रूप भी विश्व के सामने हम ही रहे। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है पिछले 5 सालों से। आप देखो, जैसे 21 जून आएगा, टीवी के ऊपर योगासन, रेडियो पे योगासन, न्यूज़पेपर पे योगासन, यानी योगासन से आगे 5 साल में कुछ गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। एक्चुअली योग का क्षेत्र वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार कर सके इतना विशाल है, उसको योगासन तक सीमित मत रखो। इतने बुढ़ापे में भी मैं विश्वभर में इसलिए घूम रहा हूँ, घूम घूम के लोगों को बता रहा हूँ कि योगासन योग नहीं है, योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है, उसको योगासन तक सीमित मत करो, उसको छोटा मत करो। दूसरा, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके इतना बड़ा क्षेत्र योग का है, उसको सिर्फ योगासन तक सिमट करके रख रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एक अनुभूति के माध्यम से उससे जुड़ सकते हैं, और योग का क्षेत्र इतना विशाल है, एक स्थान पर बैठ के विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी एक क्षण में आप प्राप्त कर सकते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है, उसको योगासन तक सीमित करके रख दें। दूसरा, मेरा योगासन से विरोध नहीं है, लेकिन थोड़ा योगासन यानी योग नहीं है ये भी सही है। योगासन सहायक है, अगर आप योग करने बैठोगे तो सहायक है, लेकिन योगासन योग नहीं है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऐसा अगर 50 साल तक चलता रहा तो 50 साल बाद में आने वाली जनरेशन है वो सोचेगी योगासन यानी योग, तो वो गलत फहमी में जाएगी, वो कौन बताएगा उनको कि योगासन यानी योग नहीं। आप देखो ना, ये जो मैं विचार रख रहा हूँ, ऐसे विचार कोई भी चैनल पे, कोई भी न्यूज़पेपर में किसी ने भी नहीं रखे, क्योंकि सब लोग योगासन यानी योग समझते हैं। योग अष्टांग योग का योग एक ही क्षेत्र है, लेकिन उसके अंदर का एक अंग केवल योगासन है, सब कुछ योगासन नहीं है। दूसरा, हमको जब हमने योग को इंट्रोड्यूस किया ना, तो हमारा जवाबदारी, हमारा कर्तव्य कि समग्र योग भी विश्व के सामने रखे। दूसरा, ये ध्यान की पद्धति नहीं है, जैसे अन्य ध्यान की पद्धतियां ना, वैसे समर्पण ध्यान योग संस्कार है, ये पद्धति नहीं है। जैसे हुआ ना, कुछ गुरुओं के साथ में मैंने शिविर लिया, शिविर के पश्चात उन्होंने कहा स्वामी जी सांस के ऊपर चित्त रख के ध्यान करते हैं, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। उसके बाद में त्राटक की पद्धति से ध्यान करते हैं, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। तीसरा आप क्या बोलते हैं ना, भस्त्रिका प्राणायाम करके ध्यान करते हैं, उस पद्धति से ध्यान नहीं कराया। आपने तो कोई पद्धति से ध्यान नहीं कराया। तो फिर हम बाहर जाएंगे, लोग पूछेंगे कौन से पद्धति से ध्यान सिखाए, तो क्या बताएंगे। और दूसरा ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, हमको अनुभूति हुई है, हमको अनुभव हुआ है, लेकिन वो अनुभूति हम दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दूसरे को बता नहीं सकते। तो उनको मैंने समझाया, पहली बात तो ये ध्यान का पद्धति नहीं है। पद्धति का अर्थ एक व्यक्ति को सिखा सकता है, एक व्यक्ति व्यक्ति सीख सकता है। ये संस्कार है, वो गुरु से संस्कार मुझे प्राप्त होगा, आपको मेरे से प्राप्त होगा, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो उनको मैंने बताया, वो समझाने का तरीका ये कि साइंस के लैब में यूट्यूब रहते कि नहीं, आप 50 ml पानी इसमें डालो तो 25 ml पानी इसमें चला जाता है। बिल्कुल वैसा ही गुरु के आत्मा के साथ शिष्य की आत्मा जब समरस होती है, और उसके बाद में वो इच्छा करती है कि जो गुरु का ज्ञान है, जो गुरु का नॉलेज है, वो मुझे प्राप्त हो, तो उसे वो सहज रूप में प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से ये योग है। जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है ना, उसके आसपास एक आभामंडल बन जाता है, एक सुरक्षा कवच बन जाता है, और वो सुरक्षा कवच आपको भीतर से और बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए आज इसकी युवा पीढ़ी को बहुत आवश्यकता है। आप देखिए जितनी आत्महत्याएं हो रही है सब युवा लोग कर रहे हैं, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सब युवा लोग कर रहे हैं। तो अगर वो ध्यान करेंगे, अगर वो मेडिटेशन करेंगे, तो उनको अंदर से, उनको बाहर से सुरक्षा प्राप्त होगी। अंदर से सुरक्षा से मेरा आशय, वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या छोड़ो, उनको आत्महत्या का विचार भी कभी नहीं आएगा। दूसरा, बाहर से सुरक्षा का अर्थ उनकी कभी भी कोई हत्या नहीं कर सकता, उनका कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी भी वो दुर्घटना में मारे नहीं जा सकते। और दूसरा, ये मैं नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा ये ध्यान का पद्धति है, ध्यान करो, और ध्यान करके आप आपके आसपास आभामंडल निर्माण करो, आप आपके आसपास वो राह निर्माण करो, वही आपको प्रोटेक्शन देगा। जो 2020 है उसके बाद में डिप्रेशन की बीमारी खूब बड़े स्तर के ऊपर आने वाली है, और ये मेरे गुरुओं ने 25 साल पहले पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने समाज में भेजा था कि उसके पहले तैयारी करो। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को बैलेंस करो, क्योंकि देखो इतने प्रदूषण के ऊपर मंच होते हैं, इतने बैठकें होती है, इतने विचार विमर्श होते हैं, लेकिन कभी किसी ने वैचारिक प्रदूषण पर विचार किया है? कभी नहीं किया। पानी के प्रदूषण में बात करेंगे, हवा के प्रदूषण में बात करेंगे, लेकिन कभी भी वैचारिक प्रदूषण में बात नहीं किया, जबकि वैचारिक प्रदूषण दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषण है। और वो प्रदूषण की बीमारी पूरे शहर शहर फैल रही है, और शहर में तो बहुत बुरी तरह फैल रही है, और उसके कारण वैचारिक प्रदूषण का प्रभाव सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे धीरे मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, इतनी संवेदनशीलता मनुष्य में नहीं है कि वो वैचारिक प्रदूषण को पहचान सके, जान सके। तो वैचारिक प्रदूषण दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषण है।
1: अभी आपने सुनी योग के बारे में स्वामी शिव कृपानंद से ये जानकारी। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए प्रीति उपासनी को। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मिलिंद सुभेदार।

0: अभी आप सुन रहे थे विविधा, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। आज कलाकार हैं मनसाराम कुंभी पटेल और साथी।
1: कृष्ण भगवान।

सुत हूँ, मेरा किसी से अनुराग नहीं, और देवी से वर पाया है अटल, मम आस की रूजने बा।

वेदाग जमी कहीं सुहाग नहीं, और धन्य धन्य कुंती पुत्र तुझे जहां लगी मृतक को।

चरण का, प्रभु से उससे कुछ मांग नहीं, और बाएं कर पे दिया दाग प्रभु ने, जाऊ रे पक्षी गण का।

आप सुन रही थी मनसाराम कुनवी पटेल और साथियों के स्वर में ये निमाड़ी लोकगीत।

ले जा हसा पति का शीश, बात सही मानेंगे तब बोले श्री जगदी। तो सदिरुधन कर कहे पति से और हसो सभा दरमियान, मैं जानती हूँ दुष्ट लखन ने मा।

और मदद आपकी करने को मेरे पिता को ले थी बुला। तो शीश हटा सुन वचन सती के और गगन रहा गुंजाय, और तेरे पिता ने मारा मुझको।

आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज कलाकार थे मनसाराम कुनबी पटेल और साथी। लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं आशा भोसले।

आप सुने थे मसरूर अनवर का गीत आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत नज़र हुसैन का था। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कला रामनाथ का वायलिन वादन राग शुद्ध बैरागी। तबले पर संगत कर रहे हैं विजय घाटे।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे कला रामनाथ का वायलिन वादन राग था श्रद्धा बैरागी। तबले पर संगत कर रहे थे विजय घाटे। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: अगला कार्यक्रम होगा ये आकाशवाणी है। लीजिए प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम में हुए बदलाव का असर बालाघाट जिले में भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के कारण लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन तेज बारिश का अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बालाघाट जिले में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जिले में बीते 1 जून से 24 जून तक कुल 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। अब बात करते हैं विश्व सिकल सेल दिवस की। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बालाघाट में मुस्कान ओपीडी के अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जांच कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें कुल 1899 लोगों की जांच की गई। इस वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस की थीम जीवन रक्षा के अंतर को समाप्त करना, सिकल सेल देखभाल में समानता सुनिश्चित करना रही। कार्यक्रम के दौरान 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की सिकल सेल की जांच की गई और गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों, बच्चों, सिकल सेल पॉजिटिव मरीजों तथा आमजनों को रोग के प्रति जागरूक किया गया। बीते 21 जून को बालाघाट के मुलना स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सांसद भारती पारधी की अध्यक्षता में सामूहिक योग में जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर मृणाल मीना, अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ज्ञान भारतम मिशन के तहत बालाघाट जिले में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। अब बात करते हैं किसानों के

कल्याण से जुड़ी खबर की। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,36,130 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जिला स्तरीय रैंकिंग में बालाघाट जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2026 माह में बालाघाट जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगातार दो माह तक प्रदेश के शीर्ष तीन जिलों में स्थान बनाकर बालाघाट ने किसान कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है। अब बात करते हैं खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र की। विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने चित्रकला के माध्यम से योग, स्वास्थ्य और ओलंपिक मूल्यों का संदेश दिया। इस अवसर पर 35 खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सतीश शर्मा ने कहा कि कड़े परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही भविष्य के ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार होंगे। अब बात करते हैं जिले में प्रशासनिक गतिविधियों की। भोपाल से मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बीते दिनों प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में बालाघाट जिले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां दर्ज कर प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थान बनाया। इसी प्रकार टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण में भी बालाघाट ने 100% उपलब्धि के साथ प्रदेश में पहला स्थान साझा किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पंजीयन में बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। बच्चों की अपार आईडी बनाने में भी बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अब बात साइबर जागरूकता की। बालाघाट जिले में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज ललित शाक्यवार, उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की उपस्थिति में बीते दिनों साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आयोजित सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ललित शाक्यवार ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। युवाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण को लेकर एक अच्छी खबर है। पुलिस सेवा में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस बैंड भर्ती की घोषणा की गई है। इस क्रम में जिला पुलिस बालाघाट द्वारा अमर शहीद आशीष शर्मा निशुल्क पुलिस बैंड प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। वर्तमान में इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 250 से अधिक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रशिक्षण केवल बालाघाट तक सीमित नहीं है, बल्कि बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के युवा भी यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस बैंड भर्ती एवं रोजगार की दिशा में अपने सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर हैं। और अंत में बात दो बूंद जिंदगी की। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान चलाया जा रहा है, जहां 3,584 टीकाकरण कर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी पूरी तत्परता के साथ सेवाएं दे रहे हैं। बालाघाट जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे बालाघाट जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर। और ये वक्त है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करती हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त माजिदा खान। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले हम अपने फ़ोन नंबर्स आपको बता दें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो ज़रूर कॉल लगाइए मुझे और अपनी पसंद के गीत सुनिए और बहुत सारी बातें कीजिए। आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: चलिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो, बोले चूड़ियां बोले कंगना, आवाज नहीं आ रही मैडम।
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: आवाज़ नहीं आ रही।
0: हाँ जी, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं राजूलाल मेहर, गांव भिलवाड़ा, जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
0: बहुत ही कम आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है।
1: हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी, आपकी पसंद बता दीजिए।
1: तेरी मेहरबानियों का
0: तेरी मेहरबानियाँ
1: टाइटल
0: का
1: सॉन्ग।
0: टाइटल सॉन्ग?
1: जी
0: जी, ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो,
1: नमस्कार माता जी। हेलो,
0: नमस्ते नमस्ते।
1: मैं आपका विवेक व्यास बोल रहा हूँ, श्रोता डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ से। और आज देखिए कल्याण जी

0: जी के कल्याण जी की पुण्यतिथि है
1: जी,
0: तो उनकी याद में मुझे कून पसीना फिल्म का गीत बनना है। आशा भोसले की आवाज है और गाने के बोल है राजा दिल मांगे जवनी उछाल के। ये गीत एक्चुअली क्या है माजीदा जी, बहुत कम सुनाई देता है, तो मैंने सोचा आज ये गीत सुन लेते हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, ये गीत बहुत ही कम सुना जाता है और ऐसे नायाब गीत आप पसंद करते हैं। कई बार मैंने देखा है पिछले जब भी आपका फोन लगा है कुछ नायाब गीतों की चॉइस आपकी रहती है। हम आपको
0: क्या होता है माजिदा जी, कुछ गाने सुनाई देते नहीं है रेडियो पर, और बड़ी खुशी की बात है कि मेरी आपसे बात हो गई, क्योंकि पिछले कुछ काल में रेडियो पे आपकी आवाज आ रही थी पर श्रोताओं को सुनाई नहीं दे रही थी।
1: जी जी जी बिल्कुल, कुछ उनके फोन की शायद प्रॉब्लम थी, उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही थी या कम आ रही थी, ऐसा हुआ। हालांकि हमने उनके पसंद का गीत सुनवाया जो उन्होंने फरमाइश की थी, और आपकी पसंद का भी गीत हम सुनवा रहे हैं आपको फिल्म खून पसीना से।
0: जी धन्यवाद,
1: जी धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। लीजिए सुनिए गीत।
2: राजा दे

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: हम भागचंद्र साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासोदा से।
0: जी, राजेंद्र नगर गंज वासोदा से आप बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल दीदी। और कैसी हैं दीदी आप?
0: हाँ, हम बहुत अच्छे हैं। और आज आपकी क्या पसंद है?
1: हमें सुनवा देना वो तुम बिन फिल्म का गाना, सुनना है कौन सा?
0: सिर्फ तुम का?
1: नहीं, तुम बिन, तुम बिन।
0: अच्छा,
1: तुम बिन फिल्म का।
0: कौन सा? कोई भी गीत, सभी गीत इसके अच्छे हैं।
1: उसमें सारे गीत अच्छे हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: गीत तो वहां में सभी फिल्म में सभी गीत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: और मौसम कैसा है इंदौर में दीदी अभी?
0: अभी अच्छा मौसम है, ठंडक थोड़ी थोड़ी सी हुई है, थोड़ी बारिश होने के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिली है।
1: पानी गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है।
0: अभी सभी जगह शुरुआत हुई है बस मानसून की, तो
1: अभी कुछ हम पानी पूरी टेंडर का ठेला लगा दिया, आपको मालूम होगा।
0: जी जी बिल्कुल। अभी आप
1: आइए गंजवासोदा, आइए, स्वागत करते हैं आपका।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे। और अभी आप अपनी पसंद का गीत सुनिए फिल्म तुम बिन से।
1: दीदी
0: धन्यवाद।
1: ठीक है दीदी, नमस्ते
0: नमस्ते।

0: हेलो,
1: चप्पल तो बहुत सुंदर है मगर पैरों में नहीं आती। माजिदा जी, आप तो बहुत सुंदर है मगर मिसरपुर में आते।
0: क्या बात है, आप कौन बात कर रहे हैं भाई?
1: निसरपुर जिला धार से संदीप प्रजापत बोल रहा दीदी।
0: निसरपुर?
1: हाँ दीदी, निसरपुर से। कैसे हो दीदी?
0: बढ़िया हैं हम, और आप लोग भी बढ़िया रहें। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना रहती है सभी श्रोताओं के लिए। और बताएं, आज आपकी क्या पसंद है, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है कामचोर
0: जी,
1: और गाने के बोल है तुझे संग प्रीत लगाई सजना, तूने मुझे छोरी से अपना बनाया।
0: ठीक है, लीजिए सुनिए फिल्म कामचोर का गीत जो आपने पसंद किया है संदीप जी। जी जी जी जी बिल्कुल, आप सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर, और आपकी पसंद को पूरा करवाते रहिए, फोन करते रहिए। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, एमएच हॉटलाइन में स्वागत है आपका। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं विनोद मोरवाल रामगंज बाजार जयपुर सिटी से बोल रहा हूँ।
0: विनोद जी बात कर रहे हैं?
1: हाँ सर। हाँ मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जयपुर सिटी से, राजस्थान जयपुर सिटी से।
0: अरे वाह, गुलाबी नगरी से बात कर रहे हैं।
1: हाँ मैम, और आज पहली बार कॉल लगाया मैम मेरा, और आज पहली बार ट्राई किया था मैंने।
0: अरे वाह, देखिए आपका नसीब, पहली बार ट्राई किया और आपका फोन भी लग गया।
1: आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा मैम।
0: धन्यवाद धन्यवाद। आप जयपुर से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ मैम।
0: अच्छा, मोबाइल पर सुनते हैं?
1: हाँ मैम, मोबाइल ऐप पर सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आपका आज फोन आपने पहली बार ट्राई किया और लग गया, और आगे भी प्रयास करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।
1: हाँ मैम, बस एक दिक्कत है मैम, जब आपको कॉल लगाते हैं तो आपका प्रोग्राम नहीं सुन पाते थे।
0: हाँ ये तो बात है, आप लगातार कॉल लगाने में लगे रहते हैं तो प्रोग्राम कंटिन्यूस में नहीं सुन पाते। बस जिस दिन फोन लगाएं उस दिन सुने, है ना? कुछ अंतराल के बाद से फोन लगाएं।
1: हाँ मैम
0: बिल्कुल। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप जयपुर से बात कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम वहाँ से बैठ कर सुन रहे हैं।
1: हमें, मैं आपसे बताओ, से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबको मौका देना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की सोच सब श्रोताओं की हो जाए तो सभी श्रोताओं को बराबर अवसर मिलता रहेगा।
1: हमें बिल्कुल, हमें मैं गाना सुनना चाहता हूँ, हम पांच का
0: जी।
1: गाने के बोले क्या जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चंदनी।
0: बिल्कुल, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में गीत है ना।
1: मैम जयपुर में तो बहुत गर्मी हो रही है, अभी 5-6 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई थी।
0: हाँ,
1: और अब उमस भरी गर्मी हो रही है जयपुर में।
0: अभी कुछ कुछ शुरुआत ही हुई है बस मानसून की।
1: इंदौर का मौसम कैसा है?
0: इंदौर में तो थोड़ी सी बारिश हो रही है, कभी धूप भी निकल रही है, कभी बारिश हो रही है। वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा अभी बस शुरुआत हुई है मानसून की, थोड़ी सी ठंडक मिली है तपिश से गर्मी की, और बस ऐसे ही मौसम अभी चल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी वाला। और जयपुर तो बहुत फेमस सिटी है, बहुत लोग वहाँ देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं।
1: आपका ये प्रोग्राम आता है लाइफ वाला, ये बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद आपको।
1: जो श्रोता से बात होती है ना,
0: जी जी जी,
1: क्वालिटी भी अच्छी आती है मैम।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हमारी श्रोताओं से डायरेक्ट बात हो रही होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: मैम गाना सुना दो, श्रोताओं भी इंतजार कर रहे होंगे कॉलिंग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत फिल्म हम पांच से।
1: थैंक यू मैम,
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी, माजदा जी नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: नहीं पहचाना, मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, अभी कुछ समय ही आपका फोन लगा था जहाँ तक मुझे याद है,
1: है ना? तो कल रानू का लगा था पहला, आज भी आज लगा है रानू का।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ते रहें, इसलिए थोड़े थोड़े अंतराल में फ़ोन लगाएं, ये हमारी रिक्वेस्ट आपसे रहती है। बहरहाल आप बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी 1992 की फिल्म है हनीमून, उसका गाना है।
0: अच्छा,
1: तू नीनों की रानी में प्यार का सपना।
0: हाँ जी
1: जी,
0: मैं आपको करती हूँ सर, और बताएं जी। आप
1: जी बढ़िया है, हाल चाल सब अच्छे हैं, आप लोगों की दुआएं।
0: और आपकी पसंद होगी इसके अलावा कोई और पसंद?
1: जी फिर फिल्म कुर्बानी का सुना दीजिए।
0: कुर्बानी का कौन सा?
1: हम तुम्हें चाहते हैं इतना,
0: ऐसे मतलब इस तरह का गीत है वो
1: जी,
0: काफी फेमस और बहुत ही खूबसूरत सा गीत है
1: जी।
0: और कंचन मनहर उरान की आवाज में ये गीत है
1: जी।
0: बहुत ज्यादा ये गीत सुना चाहता है
1: जी, इससे ज्यादा प्यार की हद नहीं होती, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का ही विवरण इस गीत में है। अरविंद जी, मिल गया है आपका गीत और हम आपको सुना रहे हैं फिल्म कुर्बानी का गीत जो आपने पसंद किया है। लीजिए सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्ते। मैं कुछ बात कर रहा हूँ कृष्णा
0: जी
1: जिला मंत्री
0: जी
1: जी।
0: फिर से आप अपना नाम बताएंगे।
1: मेरा नाम पीयूष पाल है, कृष्णा
0: जी
1: जिला मंत्री से बात कर रहा हूँ मैं
0: हाँ जी, कौन सा
1: जी
0: केस सुनना चाहते हैं?
1: जी मैं वो सेवन तेरी कसम का तेरा चेहरा नजर आए जी।
0: तेरा चेहरा, सनम तेरी कसम, बिल्कुल हम आपको
1: अच्छा
0: सुनाएंगे ये गीत। क्या आसपास आपके रेडियो सेट को थोड़ा सा धीमा करेंगे?
1: रेडियो तो बंद है मैम।
0: आप आसपास सबकी काफ़ी डिस्टरबेंस वाली आवाज़ें आ रही थी।
1: हवा चल रही मैम, इसलिए होटल पर है ना, इसलिए जी
0: अच्छा,
1: जी
0: तो वहाँ आप वर्क करते हैं?
1: हेलो
0: हाँ जी, वहाँ आप वर्क करते हैं?
1: जी मैम।
0: और वहाँ रेडियो सुनते हैं?
1: रेडियो सुनता हूँ मैम, एफएम सुनता हूँ रेडियो।
0: ठीक है, आपने जो गीत पसंद किया है तेरा चेहरा सनम, मैं आपको सुनवाती हूँ गीत जो आपने पसंद किया है।
1: ठीक है मैम, ओके, थैंक यू।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: एमएच हॉटलाइन,
0: एमएच हॉटलाइन, बिल्कुल।
1: आदरणीय और सम्माननीय माजिदा खान जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आपको भी नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते।
1: धर्मपुरी जिलाधार मध्य प्रदेश मोहम्मद असीम से बोल रहा हूँ माजिदा जी।
0: बिल्कुल, हमारे नियमित श्रोता बात कर रहे हैं आप। और आप लोगों के कार्ड में जो नाम होते हैं वो तो हमें बिल्कुल याद हो जाते हैं।
1: जी, मुंबई वाले अनाउंस भी कमल जी, दुबे जी,
0: जी
1: तो राजेंद्र जी ने सब उनको रटा गए थे, उनको निमी मिश्रा, रेणु बंसल, इनको सबको नाम रटा गए थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे इतने नियमित श्रोता हैं और लगातार आप लोगों के पत्र हमें मिलते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे श्रोता बहुत
1: और
0: अच्छी तरह से हमसे जुड़ गए हैं।
1: जी, इन श्रोता और अनाउंसर की जो बीच की मोहब्बत है उसमें तो नाम याद होना ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: जी, गीत बताने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा माजी
0: जी।
1: जी
0: जी बिल्कुल बोले।
1: ये जो आपके प्रोग्राम में ये पूरे हफ्ते आते हैं सिर्फ गुरुवार छोड़ के,
0: जी,
1: और दो दो दिन वीर भारती भी आता है, मंगलवार और शनिवार।
0: हाँ हाँ हाँ
1: और उनमें सारे अनाउंसर को एक महीने का टाइम बताता, कोई दो महीने का, कोई तीन महीने का बताता।
0: जी
1: ना अनाउंसर अमल करते हैं ना श्रोता अमल करते हैं, रोज फोन लगा रहे बहुत सारे श्रोता, अनाउंसर उनसे बात भी कर लेते हैं, ये होल्ड पे फोन काट दिया करें, लाइन पे लेके फोन काट दिया करें, तो उसके बाद ये फोन लगाना बंद। और बहुत सारे श्रोता बहुत उम्र दराज है, उसके बाद भी नहीं सुनते और लगाते हैं फोन।
0: अब देखिए, ये तो श्रोताओं की अवेयरनेस होना चाहिए, हम प्रेशराइज करके कोई काम करें इससे तो अच्छा है कि अगर हम अपनी मर्जी से नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम किसी श्रोता को निराश नहीं करते हैं। अब किसी ने फोन लगाया है, बहुत मुश्किलों के बाद फोन लगता है, तो हम अटेंड कर लेते हैं, है ना, श्रोताओं को शिकायत ना रहे। पर ये उनकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बहुत ध्यान रख करके दूसरे श्रोताओं को भी अवसर दें।
1: जी, और एक बात और बोलूंगा
0: जी,
1: कि अगर गीत गीत पूरे बजे
0: जी,
1: तो श्रोता कम शामिल होंगे, जो बार बार लगा रहे हैं उनके साथ हो सकता है फोन फिर कम लगे।
0: नहीं, कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ नए श्रोता ही रह जाए। हम कम गीत इसलिए शुरुआत है कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को हम शामिल कर सके।
1: फोन लगा रहे वही शामिल हो जाते हैं
0: जी, इसलिए हम 1.5 से 2 मिनट का गीत सुनवाकर उनको दूसरे श्रोताओं को शामिल होने का अवसर देते हैं।
1: मैंने 10 दिन बाद लगा और ये बात करने के लिए फोन लगाया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर यह है कि दोनों तरफ से जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
1: अभी एक श्रोता है, कहूंगा 8 दिन से सतत फोन लगा।
0: बिल्कुल लगा रहे होंगे और सही कह रहे हैं आप। वही मैं कह रही हूँ कि अगर हर श्रोता अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो हमें भी काम करने में सुविधा हो जाएगी और अन्य श्रोताओं को भी अवसर मिल पाएगा,
1: मौका मिलेगा। जी
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बताएं।
1: फिल्म में गीत है,
0: हाँ जी,
1: रफी साहब और सुमन जी की आवाज में,
0: जी,
1: जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए।
0: हाँ जी, बहुत ही अच्छा गीत है और हम आपको जरूर सुनवाएंगे जो आपने पसंद किया है, और आप जरूर फोन लगाते रहिए और इसी तरह से सुनते रहिए, और हमारे जितने भी प्रोग्राम है उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहिए।
1: जी जी,
0: स्वागत है।
1: फहीम जी करते हैं प्रतिक्रिया, लेकिन उसको पूरी तरह शामिल नहीं की जाती।
0: अच्छा जी
1: जी,
0: अच्छा आप लिख आपका पत्र में कह रहे हैं आप।
1: जी जी, बहुत खूबसूरत समीक्षा लिखते हैं
0: जी,
1: लेकिन उसको भी कार्ड छाड़ दिया जाता, बहुत मेहनत से लिखते हैं सही से।
0: जी जी जी, नहीं देखिए, हो सकता है पर आगे से आपको इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेंगी, और हो सकता है कि आपने पत्र लिखने में या पत्र पढ़ने में कुछ परेशानी आ रही हो, कोई भी वजह हो सकती है।
1: नहीं, जो खूबसूरत समीक्षा है तो उसको तो पढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, समीक्षाएं वैसे पूरी पढ़ी जाती हैं, जो भी हमारे अनाउंसर साथी होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि आपकी पूरी बात को हम रखें। और उन चलिए, अभी मैं आपको सुनवाती हूँ फिल्म अनजाने का ही गीत।
1: बहुत बहुत शुक्रिया माजी।
0: बिल्कुल, धन्यवाद आपको फोन करने के लिए।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्ते।
1: मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी मनमोजी बोल रहा हूँ। मैम, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। माजिदा मैम चल रही है, उससे बात हो रही है क्या मेरी?
0: जी जी जी बिल्कुल, माजिदा खान बोल रही हूँ और आप हमारे बिल्कुल नियमित श्रोता बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके पत्रों में राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआएं, आपका प्रेम और इसलिए ये विविध भारतीय चैनल हमने चाहा और आकाशवाणी से
0: जी
1: ये सारी की सारी हमारे श्रेय उद्घोषक हमारे संतोष जोशी जी और उदित तिवारी जी, मधु जी।

0: और इन्होंने कहा बेलपात्र परिचिति दे रहे
1: जी,
0: तो उनका संवाद से मुझे वो प्रेरणा मिली
1: जी,
0: मुझे
1: जी।
0: बहुत तालीम जो है कि शब्द आकाशवाणी का शब्द ही आस बनता है
1: जी।
0: तो क्या है कि उस चीज का कैसा माजरा होगा उस वक्त का, और आप भी अच्छा प्रोग्राम, अब तो इस नई पद्धति और नई तकनीकी से बहुत श्रोताओं को बहुत फायदा हो रहा है
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छा भी सुनाई देता है। और बहुत सारी ये है कि कई बार हमारे पास रेडियो नहीं भी हो तो हम सुन पाते हैं मोबाइल के माध्यम से कहीं भी रह करके।
0: साधन है ये
1: जी जी जी,
0: सबसे अच्छा साधन है ये मनोरंजन रेडियो
1: जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: चाहे वो किसी भी शोबे में रहते हो, कहीं भी व्यापार के मामले में, सफर के मामले में, कहीं भी कोने में जा सुना जा सकता है,
1: सुना जा सकता है,
0: बिल्कुल सुकून मिलता है।
1: और हमारा काम बाधित नहीं होता, सबसे बड़ी बात। अगर हम टीवी बैठकर देखते हैं तो हमें बैठना होता है, और रेडियो के साथ साथ हमारा काम निरंतर चलता रहता है,
0: काम भी चलता रहता है। जैसे आप मेरे ऑफिस में बैठता हूँ तो वो कार्यक्रम चलता रहता है, और सबसे 8-10 लोग, कल एक डॉक्टर साहब आए थे हमारे पास, हड्डी रोग विशेषज्ञ महेंद्र सोलंकी
1: जी,
0: जो अपने कार्यक्रम में आते हैं, उन्होंने बोला कि आपका कार्यक्रम मैं भी सुनता, तो मैंने उनको विविध भारती सुनने के लिए बोला
1: जी,
0: तो वो बहुत बड़े प्रभावित हुए। तो
1: अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात जी।
0: हाँ, तो बहुत अच्छा लगा, उनको परिवार वगैरह से आए थे, कार का काम मैं बैठता हूँ मैं
1: जी जी जी,
0: तो वहाँ पर वो लगे, सब लोग श्रोता आते हैं तो FM चलाते हैं, तो मैं FM की जगह उनको विविध भारती की
1: जी। बहुत अच्छी बात है, आपके माध्यम से हमारे और भी श्रोता आकाशवाणी से इंदौर से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मंसूरी जी।
0: मुझे आज हमारा खानदान का गाना सुनना है, मोहम्मद सबीर कुमार की आवाज है, दिलवर जानी वाला
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनाते हैं फिल्म हमारा खानदान का गीत दिलवर जानी जी, लीजिए सुनिए। धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं
1: जी? मैं जवाहर से बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा हुसैन बोहरा
0: जी।
1: जी मैम, मुझे फिल्म भूल भुलैया का गाना सुनना है, लबों को लबों पे सजाओ
0: जी।
1: जी मैम, तो मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ।
0: क्या आप नई फिल्म की बात करें?
1: जी मैम,
0: नई फिल्म की बात करें?
1: जी मैम, नई फिल्म मतलब पहले अच्छी थी भूल भुलैया फिल्म, उसका गाना लबों को लबों पे सजाओ।
0: हाँ जी, हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: विजय भाटिया बात करता हूँ।
0: अच्छा भाटिया जी, अच्छा हमारे दूसरे श्रोता लाइन पर थे। चलिए भाटिया जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: गीत गाता चल।
0: हाँ, गाने के बोल।
2: तेरी बंसी पुकार रहा था नाम।
0: शाम तेरी बंसी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं भाटिया जी?
2: LIG इंदौर।
0: LIG इंदौर से। क्या नाम बताया आपने पूरा?
2: विजय भाटिया।
0: विजय भाटिया,
2: आपसे बात हो चुकी है पहले।
0: अच्छा, हाँ मुझे आपका नाम ठीक तरह से याद नहीं था। अच्छी बात है, आपका दोबारा फोन लगाए मतलब।
2: जी
0: जी जी जी
2: जी।
0: और क्या करते हैं भाटिया जी?
2: मैं रिटायर्ड हूँ।
0: गाने सुनते हैं
2: जी।
0: चलिए अपने पसंद का गीत सुनिए और करिए मनोरंजन गीतों के माध्यम से
2: जी।

0: इसी गीत के साथ MH हॉटलाइन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अनुमति दीजिए माजिद खान को। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 11 बजे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। एक गरीब आदमी उसके दुकान के सामने सुबह के समय रोज आता। जैसे ही दुकान में आवाजाही बढ़ती, वो भी रेस्टोरेंट में बैठकर भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन खाता और चुपचाप भीड़ से निकल जाता। दुकान के नौकर चौकर ने देखा और इसकी शिकायत अपने मालिक से की। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने मुस्कुराकर कहा, इस बात को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत शुक्रगुजार ऊपर वाले का कि उस गरीब व्यक्ति के भरपेट खाने से मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। तो ये थे एक अच्छे कर्म और साथ ही ईमानदारी भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जब हम अच्छे काम करते हैं और ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, इस बात पर हम जानेंगे आपके विचार। इसके लिए हमारे फोन नंबर हैं 2660902। और जो श्रोता साथी बाहर से हमसे बात करना चाह रहे हैं, भोपाल से बाहर से, वो उनको एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा 0755। तो इंतजार है हमें आपके विचारों का। हाँ जी, नमस्कार।
2: नमस्ते नमस्ते, आकाशवाणी
1: जी, आकाशवाणी भोपाल से हम बोल रहे हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे।
2: आप कौन दीदी?
1: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ। स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे में, है ना? पहले आप अपना नाम बताएं।
2: रमेश पेंटर, सतना से।
1: जी, तो रमेश जी कैसे हैं आप?
2: ठीक है जी।
1: जी, हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे कि जैसे हमारे जीवन में जब हम कोई काम अच्छे से करते हैं, मन लगा कर करते हैं, ईमानदारी से उस काम को करते हैं, है ना, तो उसका क्या होता है, मतलब उसके फायदे क्या होते हैं?
2: देखिए, ईमानदारी से तो देखिए

0: सभी चीज का फायदा है उसमें
1: जी,
0: ईमानदारी में तो सभी चीज का फायदा है।
1: हाँ जी बताएं, इससे आपके काम कैसे होते हैं, समय पर होते हैं, सफल होते हैं, बताएं।
0: हम ही लोग लगे रहते काम में दिन भर।
1: जी जी जी, इसके लिए आप सुबह से उठते होंगे, तैयारी करते होंगे, समय पर पहुंचते होंगे।
0: जी दीदी
1: बताएं किस तरह आप अपने काम को करते हैं।
0: अब हम लोग तो काम में लगे रहते तो लगे ही रहते हैं, हम लोग को तो काम दीवारों में लिखने जाना पड़ता है विज्ञापन।
1: अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो इसके लिए भी आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, सुबह उठते होंगे जल्दी, उठकर जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर जल्दी समय पर पहुंचते होंगे अपने काम पर।
0: घर तो भाई शाम को जब तक दिन निकला रहता है काम करना पड़ता है, दीवारों में लिखना पड़ता है वॉल पेंटिंग।
1: जी जी वॉल पेंटिंग। हाँ तो मतलब यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हम पूरी ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है ना। पूरी ईमानदारी से अगर हम किसी काम को करें तो उसका फल हमें कैसा मिलेगा।
0: उसका फल अच्छा ही मिलता है
1: जी,
0: जब ईमानदारी से करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा।
1: जी यही मैं जानना चाह रही थी। तो देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बताएं
1: जी, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बिरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी, तो कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम। कहते हैं ना, वाणी से ही बीज झरे, वाणी से ही रसधार, और मीठा वाणी बोलिए जीवन का है सार।
0: बहुत अच्छी बात, हमेशा मीठे वाणी ही बोलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल मैम। और
0: हाँ
1: आकाशवाणी जो मध्य प्रदेश होता है, बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन करता है, और इसमें जो निकलने वाले कार्यक्रम होते हैं, जिसमें गीत सागर, नमस्कार भोपाल, और कार्यक्रम बात आपकी गीत, हमारे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, युवाणी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ हमें रोजगार के अवसर मिलते हैं, ये भी सब कुछ बतलाए जाते हैं मैडम जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें ये तो ये जानकर लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, है ना?
1: जी
0: हमें
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: मुझे
0: अच्छा
1: भी
0: लगा। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, कि जैसे किसी काम को हम करते हैं जीवन में, तो
1: जी
0: आपकी पढ़ाई लिखाई भी हो सकती है, आपका दुकान, आपके व्यवसाय, नौकरी, कुछ भी हो सकता, अगर उसको हम ईमानदारी के साथ करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में?
1: जी काम को यदि यदि शांतिपूर्वक रूप से किया जाए तो काम बिल्कुल बेहतर बन जाता है। काम यदि अच्छे तरीके से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तो काम बिल्कुल दुगने उत्साह के साथ पूरा हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, जब उसका मूल्य उसे प्राप्त होता है, तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसी प्रकार से यदि हम अपने कामों को आनंद के रूप में यदि लें, तो काम बोझिल नहीं नजर आता है, बल्कि वह सम्मान भाव से अच्छा ही बनने का प्रयास होता है। तो काम को अच्छी ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए, और जीवन में अच्छा सोच रखेंगे तो सभी काम अच्छे से अच्छे हो पाएंगे।
0: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर, है ना? आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी नमस्ते
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी, योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: जी, तो स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: बताइए क्या हाल चाल है वहाँ का, मतलब मौसम क्या हाल चाल
1: बढ़िया
0: है?
1: है मौसम, बारिश का तो अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं।
0: अच्छा, मतलब पानी
1: जी
0: रुक रुक कर
1: नहीं,
0: गिर रहा है?
1: जी, नहीं बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
0: नहीं हुई है? अच्छा
1: जी
0: अच्छा अच्छा चलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपके यहाँ अच्छी से बारिश हो ताकि ठंडक पहुँचे, है ना? तो बताएं कि कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में हम आपके हम सब बात साझा करना चाह रहे थे कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं जीवन में, है ना, निश्चित रूप से अपने जीवन से जुड़े कुछ काम, तो वो अगर हम ईमानदारी से करें तो उसका क्या फल मिलता है?
1: फल यही मिलता है, सफलता जरूर मिलती है, भले देर सबेर मिलती है, मतलब सही ढंग से प्रयास जब हम करते हैं, समय जरूर लगता है, लेकिन उस चीज की कीमत हमें बिल्कुल मिलती है।
0: वही मैं कह
1: हाँ
0: रही हूं
1: जी,
0: कि कोई,
1: मतलब
0: हाँ
1: कोई
0: जी
1: दूसरा रास्ता नहीं है ईमानदारी और सच्चाई के अलावा उस जगह पहुंचने के लिए।
0: बिल्कुल, कुछ लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, झूठ बोलकर काम करते हैं, तो
1: जी
0: वो सारी चीजें कारगर सिद्ध नहीं होती।
1: जी और हो भी जाए तो वो एक समय तक रहता है,
0: बस छोटे से
1: लेकिन
0: समय
1: जो
0: के लिए।
1: चीज हम
0: हाँ
1: मेहनत से और लगातार प्रयास से करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती है।
0: बिल्कुल, और वही मौलिक रूप में हमारे साथ होती
1: जी
0: है ना? आपने फोन किया, बहुत अच्छे विचार हम पे बांटे, इसके लिए आपका
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी नमस्ते।

0: जी नमस्ते।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, सादर नमस्कार।
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं बहुत पुराना श्रोता, 70 के दशक का श्रोता हूँ,
0: जी
1: राजेश नेमा, सिंहपुर बड़ा से।
0: जी तो आपका,
1: और आप
0: जी हम
1: हमारे
0: जानते हैं
1: पत्र
0: बिल्कुल।
1: शामिल नहीं कर रहे आपकी फरमाइश में।
0: अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल जानती हूँ आपको। आप हमारे बहुत पुराने श्रोता
1: जी
0: साथी हैं, है ना। और
1: नियमित पत्र भेज रहे हैं, कृपया शामिल
0: बिल्कुल
1: कीजिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
1: जी जी
0: और हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे पुराने श्रोता साथियों से हमारी बात
1: जी
0: होती है ना।
1: मैं तो काफी पुराना श्रोता
0: जी
1: हूँ और उस समय का श्रोता हूँ जब। जी
0: बिल्कुल। तो अब हम आपसे कुछ विचार जानना चाहेंगे, बात
1: जी
0: आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में,
1: जी
0: कि अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप
1: जी
0: अपने जीवन से जो जुड़े रिश्ते हैं, है ना, बहुत
1: जी
0: सारे रिश्ते
1: जी
0: हैं, हम माता पिता हैं, भाई बहन हैं, है ना,
1: हाँ हाँ बिल्कुल
0: तो
1: जी
0: मित्र हैं, तो इसमें अगर हम ईमानदार हैं, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभा रहे हैं, अपने सारे काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उसका क्या फल मिलता है हमें,
1: जी
0: बताएं।
1: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। रिश्ते आज के समय में वैसे भी भाग दौड़ बहुत है, तो
0: जी
1: निश्चित रूप से रिश्ते तो निभाना ही चाहिए, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो रिश्ते ही काम आते हैं।
0: जी हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्हें हम सम्मान दें, प्यार दें और उनके अनुभव से सीखें, क्या लगता है
1: बिल्कुल,
0: आपको।
1: बहुत आवश्यक है। वो तो बुजुर्ग एक बहुत बड़ी पाठशाला होते हैं,
0: जी
1: उनका सानिध्य नितांत आवश्यक है।
0: और हम बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, नहीं
1: बिल्कुल, बहुत,
0: है
1: वो
0: ना।
1: तो
0: आजकल
1: जरूरी
0: ऐसा हो
1: चीज है।
0: गया है कि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं रहता है, मोबाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें समय देते हैं, लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातों को सुने, उनके अनुभवों को सुने, तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, क्या लगता है आपको,
1: जी,
0: है ना।
1: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि जब इंसान मशीन हो गया है तो रिश्ते कोई भी हो संभाल के रखना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: और सबसे जो बुजुर्ग हैं उनसे तो निश्चित रूप से सानिध्यता होनी ही चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक वो जीवन का पूरा निचोड़ होते हैं और सच्ची सीख भी देते हैं।
0: बिल्कुल। और परिवार के साथ अगर हम एक समय में मिल बैठ कर खाना खाएं, है ना, तो वो भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: अच्छा है।
1: वो जी बिल्कुल, वो एक परिवार के साथ रहना और मिलकर बैठ के बातें करना और सानिध्य बनाए रखना, ये आज के समय की मांग है।
0: और इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सुलझ जाती हैं।
1: हाँ बिल्कुल जी
0: हाँ,
1: बिल्कुल,
0: और
1: जीवन का
0: हम
1: निचोड़ मिलता है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए
0: इसका भी समाधान
1: उसकी एक
0: मिलता है।
1: विस्तृत जानकारी भी मिलती है।
0: बिल्कुल। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके पत्र आप हमें भेजते रहिए, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, मैं तो
0: बिल्कुल
1: बहुत आकाशवाणी भोपाल का तो मैं 70 के दशक का श्रोता हूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और
0: तो
1: उस समय भी सुनता था और आज भी सुन रहा हूँ,
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम लाजवाब है।
0: जी धन्यवाद। और आज आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत करते हैं आपका। नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते मैम,
0: हाँ नाम
1: मैं रानी कलिया छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी
1: क्या विषय रखा सर मैम आपने आज?
0: अपनी जगह का नाम एक बार हमें फिर से बता
1: जी
0: दें।
1: रानी कलिया छतरपुर मध्य प्रदेश
0: जी
1: छतरपुर से।
0: हाँ हाँ आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम
1: थैंक यू
0: बात
1: थैंक यू
0: आपकी
1: मैम थैंक यू जी।
0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आज हमने विषय रखा है कि आप कोई भी काम करते हो जीवन में, अगर आप उसे ईमानदारी से करते हैं, है ना, अपने जीवन से जुड़े सारे अच्छे काम, अगर हम पढ़ाई करते हैं, व्यवसाय है, नौकरी है, हमारा परिवार, इन सभी चीज़ों में अगर हम ईमानदार हैं तो उससे हमें क्या लाभ है?
1: ईमानदारी से तो अच्छा कोई है नहीं मैम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी
0: जी
1: ना, तो उसका तो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा रहेगा। यदि आप अपने कर्तव्यों में, अपने व्यवस्थाओं में अगर ईमानदार हैं,
0: जी
1: संबंधों में ईमानदार हैं आप,
0: जी
1: तो हमेशा आप सक्सेस रहेंगे, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल। हाँ
1: थोड़ी देर के लिए टाइमिंग दिक्कतें आती हैं, ये आ
0: जी
1: सकती हैं आज के परिवेश के हिसाब से,
0: जी
1: लेकिन अंततः विजय आपके ईमान की ही होगी, आपकी ईमानदारी की ही होगी,
0: जी जी जी
1: है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें कोई संदेह नहीं है, तो इसलिए ईमानदार होना तो एक बहुत मतलब अच्छी चीज
0: हाँ
1: है ना
0: जी
1: जी, है
0: बिल्कुल।
1: ना। और बाकी तो इधर तो मतलब आज के जैसे वातावरण बदल रहा है,
0: जी।
1: उसी हिसाब से लोग इधर उधर सब मतलब होते रहते हैं काम, कभी इससे कुछ कह दिए, कभी उससे कुछ कह दिया, लेकिन अंततः जो है वो ईमानदारी ही आपको सक्सेस
0: हाँ
1: की राह पे लेके जाती
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल। चाहे वो आपके काम हो, है ना, कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप उसमें लगन है, आप में ईमानदारी है आप में, तो
1: जी।
0: आप जरूर सफल होंगे, है ना।
1: नहीं डेफिनेटली वो है ही है
0: जी
1: भाई, वो
0: बिल्कुल
1: सक्सेस का तो एक तो कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई मतलब उसका वो नहीं है कि उसमें कोई
0: जी
1: मिलावट करके आप काम कर रहे हैं, वो नहीं
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना।
0: जी बिल्कुल
1: ईमानदारी के संबंध डायरेक्ट आत्मा से
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है ना,
0: देखिए
1: तो आत्मा
0: हाँ
1: में मिलावट नहीं चलती मैम,
0: बिल्कुल, है ना।
1: दुनियादारी मिलावट चल जाएगी लेकिन
0: हाँ
1: आत्मा और परमात्मा मिलावट नहीं चलेगी, आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा तभी आप
0: बिल्कुल
1: सक्सेस हो
0: बिल्कुल
1: पाएंगे, सही
0: बिल्कुल, तभी आपका
1: मानिए
0: जीवन
1: आप।
0: सहज सुंदर होगा, है ना।
1: जी
0: आपने
1: जी बिल्कुल
0: फोन
1: मैम,
0: किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: ओके थैंक यू मैम।
2: सजन रे झूठ मत।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।
0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। जी
0: जी तो स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में। और आज
1: धन्यवाद
0: हमने
1: दीदी आपको।
0: जी आज हमने विषय रखा है कि जीवन में आप अपने काम के प्रति अगर ईमानदार हैं तो उससे क्या फायदे हैं आपको।
1: दीदी जीवन में अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं
0: जी
1: तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है और असफलता का नाम नहीं रहता है।
0: बिल्कुल। और अगर आप लगन से करते हैं है ना, साथ ही
1: और
0: साथ
1: उसमें उसमें आपको तरक्की होना ही होना है।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ ये ईमानदारी अगर आप जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ रखते हैं तो उससे फायदा होता है आपको,
1: बिल्कुल दीदी,
0: है ना। परिवार में
1: सबका विश्वास बना रहता है
0: बिल्कुल, जैसे
1: और
0: आपके
1: अच्छा
0: बड़े
1: लगता
0: बुजुर्ग
1: है।
0: हैं,
1: जी
0: घर पर बड़े बुजुर्ग हैं है ना, उनका आप
1: जी
0: सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं।

0: तो इससे आपको फायदा मिलता
1: जी,
0: है
1: जो
0: ना।
1: हमारे बड़े हैं तो वो अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा,
0: बिल्कुल
1: और हम अपना ज्ञान बच्चों को शेयर करेंगे उनको भी ज्ञान हो जाएगा।
0: बिल्कुल। और काम, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर आपका व्यवसाय है, अगर आप इन कामों में झूठ बोलते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो इससे आपको सफलता अगर मिलती है, वो सफलता बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती। क्या सोचते हैं
1: बिल्कुल
0: आप?
1: दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं जी। देखिए,
0: अगर हम मेहनत
1: मैं
0: हैं।
1: दुकानदार हूँ
0: जी
1: तो मेरा बिजनेस है,
0: जी जी
1: तो अगर बिजनेस के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा, ग्राहकों के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा, तो
0: बिल्कुल
1: कोई एक बार किसी को धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छी बात कही आप। ग्राहकों के प्रति अगर ईमानदार हैं, उन्हें अच्छा सामान दे रहे हैं, तो वो आपकी दुकान में आएंगे ही।
1: जी बिल्कुल दीदी,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: आपका कारोबार बढ़ेगा, है ना
1: जी।
0: जी। आपने फोन किया और बहुत ही अच्छे विचार हम तक बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, धन्यवाद आपको भी।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ कार्यक्रम बात आपकी गीत
1: वंदे
0: हमारे।
1: मातरम। किशन
0: जी नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: घी वाला।
0: जी तो कहाँ से
1: हेलो,
0: बात कर रहे हैं आप, आपकी जगह का नाम बताएं।
1: दमोह।
0: जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये
1: जी
0: कार्यक्रम में आपका फोन लगा है और हम बात कर रहे हैं आज ईमानदारी के गुण की, कि अगर आप ईमानदार हैं तो उससे आपके
1: जी
0: जीवन में आपको क्या फायदा है।
1: बहुत अच्छा विषय है,
0: जी
1: मेरा ही विषय है ये। जी
0: जी जी जी
1: सुनिए,
0: हाँ
1: मेरा ऑटोमोबाइल का काम है। तो
0: जी जी जी
1: यदि हम दुकान चलाते हुए, अपना व्यापार करते हुए ईमानदारी से, मतलब जिस चीज का जो रेट है वही बताते चले जाते हैं सबको, तो वो फिर हमें याद नहीं करना पड़ता। एक दो बार बस देखा कि इस गेयर की कीमत 920 है, तो सबको 920।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी
1: आप
0: बात।
1: सुन रही
0: हाँ
1: हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही हूँ। अगर आप ईमानदार हैं तो निश्चित रूप
1: जी
0: से आपका कारोबार बढ़ेगा,
1: दूसरी चीज,
0: है ना।
1: आप हमारे यहाँ वर्कशॉप है,
0: जी जी
1: सर्विस सेंटर है मारुति,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उसमें जो भी पार्ट लगता है,
0: जी जी
1: जो भी, चाहे वो 2 रुपए का बोल्ट है या स्क्रू है, और चाहे वो 5,000 रुपए का कोई पार्ट है, तो ईमानदारी से उतना ही लिखा जाता है उसमें। हेरा फेरी या आज की भाषा में कट पट कुछ नहीं किया जाता।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और
1: वो फिर हमेशा के लिए, कोई भी हमारा बिल देखता है तो हमारे बिल ऑनलाइन जाते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: जरा भी उसमें संशय नहीं रहता है। कोई
0: बिल्कुल
1: अगर 6 महीने बाद भी बिल देखे कि आपकी मारुति, हमारी मारुति में ये काम हुआ था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: बराबर हुआ था, ये
0: बिल्कुल
1: पार्ट
0: बिल्कुल,
1: लगा था।
0: ये बहुत विश्वास की बात है और आपका एक
1: जी
0: भरोसा रहेगा अपने ग्राहकों के
1: जी
0: लिए। तो
1: तो उससे बहुत फायदा होता है,
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: लाभ होता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखिए
1: ईमानदारी।
0: हाँ फोन
1: तो
0: किया
1: ये मेरा
0: और
1: व्यक्तिगत अनुभव है।
0: बिल्कुल बहुत
1: अब
0: अच्छा
1: आप
0: अनुभव,
1: बताइए, कुछ
0: बहुत
1: आप
0: अच्छा
1: भी
0: अनुभव।
1: बताइए।
0: हाँ तो बस हम इस कार्यक्रम में तो आपके विचार जानना चाह रहे हैं, आपके अनमोल विचार जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपने
1: कुछ
0: फोन
1: हमें
0: किया।
1: भी आपसे सीखने को मिल जाता ना,
0: जी जी
1: कुछ
0: जी
1: आप भी बता दीजिए, आप कौन
0: नहीं
1: बोल
0: नहीं
1: रही हैं?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ और आपसे जो विचार हमने सुनने को मिले वो बहुत अच्छे लगे, है ना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम कह सकते हैं।
1: आपको भी
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: जी नमस्ते।
2: जी नमस्कार बहन जी,
1: आपका नाम बताएं।
2: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजना, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
1: जी तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, है ना?
2: जी,
1: और आज हम बात कर रहे हैं ईमानदारी के गुण की, कि हम अपने जीवन में अगर किसी भी काम से जुड़े हुए हों, अपने जीवन से जुड़े अच्छे काम, आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, पढ़ाई, तो इन सब चीजों में ईमानदारी के क्या मायने हैं?
2: ईमानदारी के मायने है कि जैसे अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो अपन को मतलब पीछे नहीं हटना पड़ेगा, सफलता ही सफलता मिलती जाएगी आगे के लिए।
1: जी बिल्कुल,
2: और ईमानदारी से भी काम करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और कोई काम है तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेफजूल का पैसा ही लेना चाहिए किसी का। जो काम करे वो ईमानदारी से करे।
1: बिल्कुल, अगर ईमानदार हैं हम तो निश्चित रूप से मतलब एक भरोसा कायम होगा हमारा
2: जी, जी,
1: लोगों के प्रति, है ना, और लोग हम पे विश्वास करेंगे, है ना
2: जी, बिल्कुल,
1: और हम
2: बिल्कुल।
1: निश्चित रूप से सफल होंगे
2: जी।
1: तो
2: आज आप शायद मुश्किल लगता है।
1: नहीं, मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
2: अच्छा, है ना, आपसे पहली बार बात हो रही।
1: जी जी जी, और आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। इस कार्यक्रम में आज मैं थी आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: पर अमरवीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंचायतों, शासकीय विभागों, निजी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों और समूहों सहित जागरूक नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भोपाल के गांधी भवन में आज शाम 6 बजे भारत में भाषाओं की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आ गले लग जा, इस फिल्म का गाना आवाज़ है किशोर कुमार सुषमा श्रेष्ठा की, साहिर लुधियानवी के बोल है और संगीत है आर डी बर्मन का। और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। और साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, सरोज, आरती, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ ने इस गाने को पसंद किया है। तो चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म आ गले लग जा का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये पत्र हम तक आया है राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन का, और साथ ही साथ उपाध्याय नगर से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, और साथ ही साथ नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत। आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लोफर का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी की बोल है, और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब सुनिए फिल्म राम लखन का गाना, मनहर अनुराधा और साथियों की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है बड़वाहा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी शिमाली और ये फरमाइश है पटेल नगर पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू ने इस गीत को पसंद किया है।

सौतन फिल्म का गाना सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। गाने को लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है उषा खन्ना का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। साथ ही अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, राव और शाहिद ने इस गाने को पसंद किया है। और अकोला से रमेश और वैशाली ने इस गीत को पसंद किया है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं तुम बिन। इस फिल्म का गाना आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और साथियों की। फैज अनवर ने गाने को लिखा है और संगीत है निखिल विनय का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और सिंगारपुर से सालिक पुजारी। साथ ही साथ इंदौर से ये फरमाइश हम तक आई है लाल फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया की।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
8: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
7: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
8: अरे काहे का मजा।
7: क्यों, क्या हुआ?
8: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
7: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
8: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
7: ये हुई ना बात।
9: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी में अब तक आपने सुना, हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय श्रवा को विजय हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए दूर चली गई और समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। उससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर महल से अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के निवेदन पर राजकुमार ने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया। भुवन मोहिनी एक बार फिर दोनों को समीप करके स्वयं दूर चली गई और 5 वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद ये सोचकर वापस आई कि अब सब ठीक हो गया होगा, सम्राट उसे भूल चुके होंगे और अब वो स्थिर होकर शांतिपूर्वक अपना शेष जीवन बिताएगी। सम्राट ने उसे एक अलग महल दे दिया जहाँ भुवन मोहिनी बीमार रहने लगी। असलियत का पता लगाने जब विजय श्रवा चंद्रहासिनी के महल गया तो उसे पता चला कि चंद्रहासिनी अपनी ममेरी बहन विमला के हाथों भुवन मोहिनी को जहर दिला रही है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी में।
1: नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
2: वो उधर छुप रही है स्वामी।
1: ठहर चांद।

0: निकालनी, निकाल वो विष की शीशी, कहाँ छुपा रखी है, निकाल कुल्टा।
1: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
0: अरे नेक, इससे दोनों हार भी छीन लो, चल
2: निकाल। दोनों हार कहाँ है?
1: ये है सम्राट।
0: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।
1: सम्राट,
0: इस प्रासाद में रहने वाले सभी दास दासियां देख लो, अपनी साम्राज्ञी की काली कर दूं तो। इसने अपनी बहन को बुलाया था भुवन मोहिनी की हत्या के लिए। ये कृतज्ञ स्त्री भुवन मोहिनी के त्याग और बलिदान के बदले उसे विष दिला रही थी। महाराज आदित्य सेन की पुत्री का वास्तविक स्वरूप देख लिया, देख लो अच्छी तरह से, देख लो सब और जान लो इसके चरित्र को अच्छी तरह से। भुवन मोहिनी ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया इसके लिए। प्रतिकार में ये क्या दे रही थी भुवन मोहिनी को? ये विष की शीशी, जिसके स्पर्श मात्र से किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। इन हत्यारियों के सुंदर चेहरों के धोखे में आकर तुम लोग भी इनके कहने पर आ गए। ये विमला नाम की स्त्री को चिकित्सिका नहीं, ये डायन है, डायन। सैनिक स्त्रियों, ले जाओ इन दोनों को, इसी महल में अलग अलग कोठरों में बंद कर दो। और सुनो ध्यान से, किसी ने भी लालच में आकर इन दोनों में से किसी की भी कोई सहायता की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों को कोई वस्तु ना दी जाए। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों से किसी को बात ना करने दिया जाए, भले ही वो राज परिवार का ही क्यों ना हो। यदि मुझे इसकी जानकारी मिली कि किसी भी प्रकार की शिथिलता की गई तो उसे मैं राजद्रोह मानूंगा, राजद्रोह। ये आदेश राज परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भी है।
1: सम्राट,

0: राजमाता, राजमाता।
1: क्या हुआ संरक्षिका, क्या हुआ? तुम सब लोग इतनी डरी हुई क्यों हो?
0: राजमाता, आज हम सब ने सम्राट का वो रूप देखा जो भगवान न करे कभी किसी को दोबारा देखना पड़े।
1: क्या हुआ?
0: सम्राट, साम्राज्ञी और उनकी अतिथि बहन विमला को अंतर कक्ष से मारते पीटते बाहर ले आए और बंदी गृह में बंद करा दिया।
1: क्या कहा? किस अपराध में?
0: भुवन मोहिनी की हत्या के प्रयास के अपराध में।
1: क्या?
0: हाँ,
1: साम्राज्ञी ऐसा नहीं कर सकती। चलो मैं देखती हूँ।
0: परंतु?
1: क्या परंतु, मैं स्वयं देखती हूँ, तू घबरा मत। संरक्षिका, गांधारी स्त्रियों से कहो बंदी गृह का द्वार खोले।
0: क्षमा राजमाता, क्षमा। सम्राट का आदेश है, इन अपराधिनियों से कोई नहीं मिल सकता, चाहे वो राज परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो।
1: क्या?
0: हाँ।

0: सावधान, भारत सम्राट विजय शर्मा अंतापुर में आ रहे हैं।
1: अरण्यक, सबको कहो

0: कि बंदी गृह के सामने मेरे आदेश को सुनने के लिए उपस्थित हूं।
1: जो आज्ञा।
2: अंतःपुर के सभी राज कर्मचारी सम्राट का आदेश सुनने के लिए बंदी गृह के समक्ष उपस्थित हों। शीघ्रता करो।
3: सम्राट, सम्राट हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट हमें, सम्राट क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट, सम्राट, सम्राट।
0: कितनी बार चंद्रहासिनी, कितनी बार क्षमा करूं? यदि भुवन मोहिनी की हत्या तुम कर चुकी होती तब भी क्या तुम क्षमा मांगती?
4: प्रणाम सम्राट,
5: प्रणाम सम्राट,
4: प्रणाम सम्राट।
0: इनमें से महिला मजदूर कौन है?
4: हम लोग हैं सम्राट,
5: हम लोग हैं।
3: अंतिम बार सम्राट, आपको अपने बच्चे की सौगंध, हमें क्षमा कर दीजिए सम्राट, हमें क्षमा कर दीजिए।
0: मैं विवश हूं चंद्रहासिनी तुम्हारे छल कपट से, इसलिए अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। सुन लो सब लोग, एक बार पुनः मैं इन दोनों के अपराधों को दोहराता हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ममेरी बहन विमला को बुलाकर भुवन मोहिनी के प्राण लेने की चेष्टा की थी, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी अस्वस्थता के समय स्वयं उसके जीवन की रक्षा कर रहा था। कई बार क्षमादान दे चुकने के बाद भी साम्राज्ञी ने मेरे और मेरे आदेशों की हर संभव उपेक्षा की। महिला श्रमिकों को मेरा आदेश है कि प्राण हत्या के प्रयास के आरोप में चंद्रहासिनी और उसकी बहन विमला की कोठरियों को बंद कर दिया जाए। वो दोनों बहनें दीवारों के भीतर चुनवा दी जाएं आज ही।
3: नहीं।

0: क्या किया तुमने? चंद्रहासुनी को मृत्यु दंड का परिणाम अनिष्टकारी होगा पुत्र, अनिष्टकारी। संभवतः महाराज, आदित्य सेन अपनी एकमात्र संतान के जीवन विनाश की कहानी धैर्य पूर्वक न सुन सके और चंद्रहासिनी और विमला का निधन किसी सर्वनाश को न आमंत्रित कर बैठे पुत्र।
1: राजकीय आदेशों के प्रति किसी को कोई असहमति नहीं होनी चाहिए मां। गंभीरतम अपराधों का दंड भी गंभीर और भयानक होता है। चंद्रहासिनी राजकुमारी बनकर भी अपने जीवन में महानता को स्थान न दे सकी। भारत राष्ट्र की साम्राज्ञी ऐसे नीच षड्यंत्रों का आश्रय ले, इसका प्रभाव सारी जनता पर कितना भयानक पड़ता, कभी सोचा है आपने? मुझे दुनिया क्या कहती? यदि मैंने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया होता तो संभवतः कल वो मुझसे ही प्रतिकार लेने को तत्पर हो जाती। निरंतर मेरी उपेक्षा करके बारंबार क्षमा और अभयदान का अनुचित लाभ उठाया है उसने। ऐसी अनैतिक घटनाओं का जनजीवन पर सर्वदा भयानक प्रभाव पड़ता, इसलिए जैसा अपराध साम्राज्ञी ने किया वैसा ही दंड उसे भोगना भी पड़ेगा।
0: मैं क्या करूं जिससे मेरी पुत्र वधु का जीवन बच जाए? चाहती तो ये हूं कि बंदी गृह का द्वार तोड़वा दूं, परंतु सम्राट ने वहां सैनिक पहरा बिठा दिया है। क्या होगा मेरे 5 वर्ष के पौत्र का, जो मातृविहीन होकर अति दीन मलिन

ऐसा दीख पड़ने लगा। अब मुझे ही उसे अपने संरक्षण में रखना होगा। अब मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं कि अपने वृद्ध पति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं।

0: अब मैं जीना नहीं चाहती। ये सारा कलंक मुझ पर ही आरोपित किया जाएगा ना। दुनिया तो यही कहेगी कि सम्राट ने एक नर्तकी का पक्ष लेकर स्वयं अपनी साम्राज्ञी को मृत्यु दंड प्रदान किया है। अब मैं जीकर क्या करूंगी। ये कलंक ढोने से उचित तो ये है कि अब मैं रुग्ण शैया से उठूं ही ना।
1: नहीं देवी भुवन मोहिनी, ऐसा मत सोचिए, अन्यथा सम्राट तो और भी दुखी हो जाएंगे। वो अपने निर्णय से अभी ही बहुत दुखी हैं। एक मास हो गए वो संपूर्ण कार्यों से जैसे संन्यास ले चुके हों, एकांतवास में ही हैं।
0: जिस राजकुमारी के सुख के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अंत में उसी का अस्तित्व ना पाऊं तो मेरा समर्पण तो व्यर्थ ही हो गया।

0: अब सम्राट का क्या होगा? अरण्यक, जी चाहता है कि एक बार सम्राट को जाकर मैं स्वयं समझाने का प्रयत्न करूं।
1: कोई लाभ नहीं होगा देवी, सम्राट किसी से भी नहीं मिलना चाहते। इतना अवश्य कह सकता हूं कि मैं आपकी मनोभावनाओं को उन तक अवश्य पहुंचाऊंगा।
2: असक्त रणभिष्वंगः पुत्र दार गृह दिशु, मैं स्त्री पुत्र और गृहादिक के निर्मम सामीप्य से अपनी अंतरात्मा को मुक्त कर चुका हूं। बस अरण्यक, भुवन मोहिनी की धुंधली स्मृति मात्र से मुक्त नहीं हो पाया। कैसी है वो?
1: पूरे प्रकरण से वो बहुत ही आहत है मित्र, वो आपसे मिलना चाहती है।
2: नहीं अरण्यक, जब मैंने निर्मम न्याय के चरणों में साम्राज्ञी का बलिदान कर दिया, तब भुवन मोहिनी के प्रति आसक्ति को भी छोड़ना होगा, क्योंकि भुवन मोहिनी के स्त्री सौंदर्य के उपभोग करने की लिप्सा ने ही तो इस बलिदान की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जिस पर चढ़कर चंद्रहासिनी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यदि विवाहिता पत्नी को पति के संपूर्ण प्रेम की आकांक्षा थी तो वो पाप नहीं था, मैं जानता हूं, किंतु संपूर्ण स्नेह दान न मिलने पर उसके हृदय में द्वेष और प्रतिहिंसा की भावना जागृत हुई और निरपराध भुवन मोहिनी का सर्वनाश करने के कुचक्र ने उसे मृत्युदंड दिलाया। इसमें मेरा क्या दोष? चंद्रहासिनी ने तो स्वयं ही मेरी पत्नी बनने का आग्रह किया था, ये जानते हुए कि मैं भुवन मोहिनी के प्रति अपने को पूर्णतः समर्पित कर चुका था। भुवन मोहिनी उदारता पूर्वक उसका स्वागत करती रही और उसके मांगने पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके बाद भी चंद्रहासिनी को कृतघ्न बनकर भुवन मोहिनी को विषपान कराने के षड्यंत्र में नहीं तल्लीन होना चाहिए था। इस निर्णय का मुझे कोई पश्चाताप नहीं, चंद्रहासिनी ने जैसा किया वैसा ही परिणाम पाया।

0: ये मैं क्या देख रही हूँ? प्रस्तर हृदय वाला भारत का सम्राट अपनी करुणा से स्वयं विगलित है। आपके नेत्रों में करुणा की ये अश्रुधारा क्यों?
1: मैं सम्राट होकर भी आज दीनहीन बन गया हूं भुवन। अब इस अभिशापित जीवन का अंत हो, बस यही कामना है। मैंने अपना सर्वनाश कर डाला। मैं यदि सम्राट ना होता तो शायद इतनी क्रूरता मेरे जीवन में ना आती। आज मैंने अपने इकलौते पुत्र को मातृत्व के सुख से वंचित कर दिया, माता पिता को अपनी सेवकनी पुत्र वधु से वंचित कर दिया। मुझे क्या मिला? हत्या का पाप? आज चंद्रहासिनी मेरी अंतर्दृष्टि के अत से इति तक समाई हुई है। मानो नेत्रों में आंसू भरे दया की भीख मांग रही हो।

0: और मेरे सामने भीषण रक्त सागर उद्वेलित होता दिखाई पड़ता है।
1: रक्त सागर,
0: महाराज आदित्य सेन की प्रतिच्छाया मानो भीषण प्रतिकार के लिए उद्विग्न है। वो अपने प्राणों से प्रिय एकमात्र संतान के सर्वनाश का प्रतिकार लेना चाहते। बड़े बड़े सामंतों की नंगी तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं और वो चंद्रहासनी के मृत्यु का पाप प्रक्षालन करने के लिए चंडी की जिह्वा बनकर मेरी सेना और स्वयं मेरे शरीर का रक्त दान मांग रही है। मेरी न्याय प्रियता का भयानक परिणाम प्रतिशोध की रक्त वैतरणी है भुवन मोहिनी, जिसमें मेरे सहित साम्राज्य की सेना को भी निमग्न होना होगा।
1: देव, क्या महाराज आदित्य सेन भारत सम्राट से युद्ध चाहते हैं?
0: हां भुवन मोहिनी, मुझे सूचना प्राप्त हो चुकी है कि वो बड़ी तत्परता के साथ भयानक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उनकी सेना की जितनी चिंता नहीं है, उससे अधिक भय है कि बारंबार पराजित होण जाती हमारे आपसी वैमनस्य का लाभ उठाकर भारत भूमि पर अधिकार करने का प्रयास करेगी, जिसका संभव परिणाम राष्ट्र की स्वतंत्रता का अपहरण होगा और भारतीय राष्ट्र शताब्दियों सहस्त्राब्दियों तक पराजय और दासत्व के कलंक का टीका लगाकर विदेशी आक्रामक शक्तियों के चंगुल में फंस जाएगा।
1: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
0: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
1: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
0: टाला जा सकता है।
1: कैसे?
0: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर अमर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा है कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्वभर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है।

0: प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैरवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, महफिल में आ जाती है जान आपके आ जाने से। स्वागत बंदन अभिनंदन प्यारी सखियों का कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं आपकी सखी शालिनी सोनी, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं प्यारी सखियों? माना कि व्यस्त होंगी, पर आइए बैठ जाइए कुछ सुकून के पलों के साथ और भूल जाइए सारी मुश्किलें परेशानियां तकलीफें। आज की महिला सभा में हम खुलकर बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ नया सीखेंगे और जिंदगी के सफर को और हसीन बनाएंगे। चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र सेवा के शानदार 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस स्वर्णिम यात्रा में सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ देश ने अभूतपूर्व प्रगति, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और कई योजनाओं की ऐतिहासिक पहल ने करोड़ों नागरिकों का जीवन बदल दिया है। सखियो, मोदी जी के मजबूत इरादों ने हर क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। आज का आत्मनिर्भर भारत उनके अद्वितीय समर्पण और निर्णायक नेतृत्व की जीती जागती मिसाल है। और सखियों, आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ये दिन लोकतंत्र को मजबूत करने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकारों को जवाबदेह बनाने में संसदों की भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2018 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत की गई थी। 30 जून की ये तारीख अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU की स्थापना का भी प्रतीक है। सखियों, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की संसदों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, समावेशी और आधुनिक चुनौतियों जैसे प्रौद्योगिकी और लैंगिक समानता के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सखियों, हमें भी लोकतंत्र को समझना होगा, लोकतंत्र की जानकारी रखनी होगी। संसद क्या है, विधानसभा क्या है, सांसद या विधायक का क्या काम होता है, कानून कैसे बनते हैं, ये जानना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। साथ ही साथ सवाल पूछें, जवाबदेही तय करें, कानून का पालन करें। संसद कानून बनाती है, पालन करना हमारा धर्म होता है। बहस में हिस्सा तो लें, मगर मर्यादा बनाए रखें। राजनीति से दूर नहीं रहें, बल्कि जिम्मेदारी से भागीदारी करें। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। सखियो, जानो, वोट करो, सवाल पूछो, कानून मानो, भागीदारी करो, यही 5 शब्द नागरिकता का धर्म भी है। संसद मंदिर है लोकतंत्र का सखियो, उसकी मर्यादा, उसकी ताकत बनाए रखना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इतनी सारी जानकारी के बाद सखियो, अब बारी है मनोरंजन की। लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है एक प्यारा सा गीत।

एक बार पुनः स्वागत है प्यारी सखियों का कार्यक्रम में। सखियों, मोदी जी ने कहा है ना, नारी शक्ति ही देश की शक्ति है और इसी सोच को बढ़ावा दे रही है पीएम मुद्रा योजना। जी हाँ, पीएम मुद्रा योजना। आज हम बात कर रहे हैं पीएम मुद्रा योजना की और इस योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मतलब छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने वाली योजना। आपके मन में क्या है सखियो? सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं या अचार पापड़ का बिजनेस करना चाहती हैं? टिफिन सर्विसेज, डेयरी, बकरी पालन या ऑनलाइन रिसेलिंग, जो भी सपना आपका हो सखियो, वो पूरा करेगी मुद्रा योजना। और सबसे बड़ी बात तो ये है बहनों, वो भी बिना गारंटी और बिना सिक्योरिटी के। सिर्फ आपका जज्बा और एक छोटा सा बिजनेस प्लान होना चाहिए आपके पास। लोन भी आपकी जरूरत के हिसाब से तीन हिस्सों में बांटा गया है सखियों। शिशु लोन यानी कि आप 50,000 तक का लोन ले सकती हैं जब आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, जैसे सिलाई मशीन खरीदनी है। किशोर लोन जिसमें आप 50,000 से लेके 5,000 तक का लोन ले सकती हैं, जैसे आपको अपनी मशीनों को बढ़ाना है, 2 से 3 नई मशीनें लाना है। तरुण लोन में आप 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोन ले सकती हैं, जब आप अपना कोई नया शोरूम खोलना चाहती हैं। ब्याज भी बहुत कम है सखियो और चुकाने के लिए 5 साल तक का समय मिल जाता है। घर बैठे पैसे तो नहीं आएंगे बहनों, सरकार आपका हाथ जरूर पकड़ेगी। चूल्हा चौका संभालने वाली नारी जब कलम पकड़ लेती है और हिसाब संभालने लगती है ना सखियो, तो घर भी चलता है और देश भी बनता है। तो सखियो, देर किस बात की, अपने नजदीकी बैंक, जनधन केंद्र या CSC सेंटर जाइए। आधार कार्ड, फोटोकॉपी और बिजनेस का आइडिया लेकर जाइए, फॉर्म भरिए और करा लीजिए अपना लोन। याद रखिए सखियो, सपना आपका, हौसला आपका और साथ सरकार का। तो फिर देर किस बात की, उठो बढ़ो और बन जाओ आत्मनिर्भर भारत की असली शिल्पकार। और सचमुच सखियो, जब सबका साथ मिलता है ना, निश्चित ही कुछ नया करने का जज्बा आ ही जाता है। आज के क्रम मेरी उड़ान में हमारे साथ

0: बारे में।
1: जी नमस्कार मैम, बेसिकली मैं पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं इस इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोफेशन को पिछले 8 से 10 सालों से कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के घरों का इंटीरियर किया है, डेकोरेशन में हेल्प की है और उनके हमने जो घर के जो हमारे फर्नीचर होते हैं उनको बनाने में हमने हेल्प की है। तो ये काम मैं पिछले 8 से 10 सालों से कर रही हूँ और हमारा एक है इंस्टीट्यूट, वो हम मैं रन कर रही हूँ जो कि डिजाइन सॉल्यूशन के नाम से है, जहाँ पर हम बच्चों को इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज सिखाते हैं ताकि बच्चे अपने हुनर को देखें और उसको लेके वो अपने करियर में आगे बढ़े। मैं अभी इस प्रोफेशन में काम कर रही हूँ।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बच्चे इस और आगे बढ़े। अभी हम देख ही रहे हैं कि त्योहार का समय चल रहा है और सभी अपने घर को रिन्यू कराने में, रिनोवेशन में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत व्यस्त होंगी। और मैं बस ये जानना चाहूंगी और इसके बाद कि आपने अपने जो इस काम की शुरुआत है वो कैसे की, आपको कैसे रुझान आया इस दिशा की ओर?
1: देखिए मैम, पहले तो मेरा जो सब्जेक्ट था, मतलब स्कूल टाइम में मेरा था PCM, साइंस बैकग्राउंड से थी मैं, मेरा इंटीरियर से कोई रिलेशन नहीं था। मतलब धीरे धीरे मैंने स्टडी करना स्टार्ट करा तो मेरा इंटरेस्ट बहुत आया, मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं यार इंटीरियर में भी ये चीजें होती हैं, इसको इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। मतलब मेरे घर में भी जैसे हम लोग फेस्टिव में जब घर रिनोवेट करते थे तो मैं मेरे फादर की और मदर की बहुत हेल्प करती थी, तो पूरा रिनोवेशन मतलब 50% घर का काम मैं करती थी वहां पर, इंटीरियर ही करना है। फिर मैंने सोचा कि हम इंटीरियर में कोर्स करें, मैं मार्केट गई, मुझे पता लगा कि इंटीरियर में कोर्सेज होते हैं तो उसके लिए एक डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत पड़ती है अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं आगे। तो मैंने फिर इसमें जो स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है डिप्लोमा, वो मैंने 3 साल का जो कोर्स होता है वो मैंने लिया और मैंने उसमें बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं ये इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ। तो मैंने इसीलिए ये सब्जेक्ट चूज करा कि मुझे आगे इसमें काम भी करना था और मैं चाह रही हूँ कि काफी सारे मतलब पूरे इंडिया में या हमारा जो MP इंदौर के जो बच्चे वो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े और हम उनको अच्छे डिजाइनर बनाए, इंडस्ट्री में जाके अच्छे से क्लाइंट्स का काम करे और वो अपने एक स्किल उनके पास रहेगी तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे इंडस्ट्री में। तो हमारा मेन मोटो यही और इसीलिए मैंने इंटीरियर किया कि मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था।
0: वाकई बहुत मेहनत का काम है और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी जो पढ़ाई है, जो आपकी लाइन है, उससे हटके आपने अपने रुचि के हिसाब से अपना करियर चुना। और वाकई जहां हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हमारी रुचि होती है, वो काम बहुत ही बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। जी, और एक बात और जानना चाहूंगी कि कितना लगभग समय दे पाती हैं आप घर और काम के बीच में, कैसे सामंजस्य कर पाती हैं?
1: मतलब पहले मुझे शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था काम अपना इंटीरियर का तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी कि जैसे घर भी मैनेज करना होता है, देन मेरी साथ में पढ़ाई भी चल रही थी, मेरा PhD चल रहा था और मैंने साथ में इंटीरियर करा, कॉलेज भी जाती थी, फिर मैं इंटीरियर की क्लासेस भी लेती थी, फिर मेरा प्रैक्टिस सेशन होता था, मतलब हमारी 5 घंटे की क्लास होती थी इंटीरियर की, वो भी हम करते थे, फिर उसके बाद 3 घंटे घर पे प्रैक्टिस करते थे, फिर घर में और भी काम रहते हैं वो हम करते थे। तो मतलब कि बहुत हेक्टिक हो जाता था, रात को 3 बजे 4 बजे हम सोते थे, कभी कभी तो पूरी पूरी रात हम नहीं सो पाते थे, पूरी पूरी रात आपके काम करा है हमने
0: जी।
1: तो बहुत मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे चीजें जब ऐसा स्टेबल हुई तो अब मैनेज हो जाता है।
0: तो हम अपनी सखियों से ये कह सकते हैं कि इसके लिए आपको बहुत अलग से कोई समय ऐसा नहीं है कि आपको ये देना पड़ेगा, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर गृहस्थी के साथ भी इस करियर ऑप्शन को चुन सकती हैं।
1: हाँ, और मैंने बताया ना जैसे आजकल काफी सारी महिलाएं ऐसी रहती हैं कि जो ज्यादा एजुकेट नहीं हो पाती किसी रीजन से, नई स्टडी नहीं कर पा रहे, तो जैसे आपका अगर 10वीं पास है तो भी ये प्रोफेशन में आप एंटर हो सकते हैं और 2 से 3 साल का जो कोर्स होता है वो आप करके आप मतलब अपने आप को एज अ डिजाइनर आप रिप्रेजेंट इंडस्ट्री में कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी
1: और आगे मैम इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है।
0: आप हमें, हमारी सखियों को कुछ ऐसे कोर्स बताएं जो वो कर सकती हूँ।
1: मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे के इस माध्यम से जुड़ने को मिला, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य मैम यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे प्रेरित करें कि वो कुछ आगे अपना स्किल इम्प्रूव करके आगे काम करे, वो अपने पैरों पे खड़े हो, राइट। तो हमारा उद्देश्य यही है। और मैं

0: सखियों से यही कहना चाहूंगी कि देखिए इसके लिए आपको कोई ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर 10वीं किया है तो भी आप इंटीरियर में या फैशन में आ सकते हैं। इसके कोर्सेज वैसे तो 1 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, 3 साल के भी होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अब जैसे कोई महिला है जिसकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हैं और जो टाइम नहीं दे पाती ज्यादा, तो वो 1 साल का भी कोर्स कर सकती है। और सबसे अच्छी बात मैम ये मतलब इसमें आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे की क्लासेस देना है। मतलब जैसे आप अपना घर भी मैनेज कर सकते हैं और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने भी जॉब के साथ में ही किया है तो अच्छे से मैनेज हो जाता है।
1: वाह बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारी सखियां घर बैठे ही इस करियर विकल्प को चुन सकती हैं और एक छोटी सी शुरुआत घर से ही कर सकती हैं। तृप्ति जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें इतनी सारी जानकारियां दी, वाकई प्रेरणा मिली होगी इन बातचीत सुन के। तृप्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया।

सखियो, अभी हम सुन रहे थे क्रम मेरी उड़ान तृप्ति कुमायूं के साथ, और अब बात कुछ सजने सवरने की हो जाए। सखियो देखिए ना सखियो, बारिश में अक्सर हमारा मेकअप जल्दी ही चिपचिपा और बेकार दिखने लगता है, तो इससे कैसे बचा जाए आइए जानते हैं आज के क्रम रूपलावण्य में। आज हम बात करेंगे कि बारिश में या मानसून में भी हम अपने मेकअप को कैसे एकदम फ्रेश रख सकते हैं। सखियो मेकअप से पहले चेहरे पर बर्फ लगाए जिससे फेस पर मेकअप ज्यादा देर तक टिका रहेगा। अब बारी है प्राइमर की, तो आप मॉइस्चराइज प्राइमर चुने और इससे मेकअप उमस में भी फ्रेश लगेगा। लाइट वेट फाउंडेशन चुने, चिपचिपे और हैवी फाउंडेशन पूरी तरह से अवॉइड करें। अब बेस सेट करने के लिए आप उसके ऊपर पाउडर चुन सकते हैं, लेकिन याद रखें सखियों कि ये भी ह्यूमिडिटी प्रूफ होना चाहिए। अब बारी आती है आई मेकअप की, तो आई मेकअप में इस मौसम में बार बार पसीना भी आता है, इसलिए वाटर प्रूफ आई मेकअप चुने। ब्राइट कलर्स के लिपस्टिक प्रयोग करें जो लॉन्ग लास्टिंग और स्मच प्रूफ हो। साथ ही साथ मानसून में चिक टिंट का उपयोग करें, ये लाइट वेट ब्राइट होने चाहिए जो लंबे समय तक टिके रहें। आखिर में मेकअप के ऊपर फिक्सर जरूर स्प्रे करें, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं करना है। बस इतने छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे सखियो तो आपका मेकअप लंबे समय तक फ्रेश लगेगा और आप दिखेंगे खूबसूरत।

बारिश का दौर चालू है सखियो, और हम सभी तरह तरह के मौसमी जायकों का मजा ले रहे हैं। और हाँ, एक काम हम महिलाएं इस मौसम में जरूर करने लगती हैं, वो होता है अचार बनाने का। जी हाँ, अचार बनाने का। इसलिए आज के फूड जोन में हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट अचार मसाले की रेसिपी की, जिसे आप घर पर ही तैयार कर सकती हैं। आज हम आपको लगभग 200 ग्राम मसाला बनाने की विधि बताने वाले हैं। तो नोट करिए, सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए सरसों 4 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, सौंफ 3 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 4 से 5 बड़े चम्मच, स्वाद अनुसार काला नमक और 1 बड़ा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच आप इसमें हींग ले सकते हैं। सबसे पहले सखियों, सरसों, मेथी, जीरा, सौंफ और अजवाइन को हल्का सा भून लें। मसाले जले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। इसके बाद मसालों को दरदरा पीस लें, बहुत बारीक पाउडर भी ना बनाएं। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक और हींग डालकर अच्छी तरह से मिला लें। लीजिए, तैयार हो गया आपका इंस्टेंट अचार मसाला। अब इस मसाले को एयर टाइट जार में भरकर आप 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं सखियो। आप जब भी चाहें आम, नींबू, गाजर, मिर्च, किसी का भी झटपट से अचार बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस इन्हें बारीक काट लीजिए और मिला दीजिए इस मसाले में, और ऊपर से डाल दीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच गर्म सरसों का तेल। लीजिए, तैयार हो गया आपका इंस्टेंट अचार मसाले के साथ झटपट अचार भी। चटपटे अचार के बाद अब बारी है बहनों एक प्यारे से गीत की।

और सखियो, अब बात हो जाए कुछ काम की। जी हाँ, काम की बातों में आज बात करेंगे हम बचत की। सखियो, बचत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ पैसे की तस्वीर

0: आ जाती है। पर सच बात ये नहीं है बचत सिर्फ पैसे की ही हो। बचत एक ऐसी सोच है, एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। सखियो, बचत कई तरह की हो सकती है और हर तरह की बचत हमें किसी न किसी रूप में अमीर बनाती ही है। जैसे पैसों की बात करें तो कहते हैं ना सखियो कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम रोज 20 से 50 रुपए जैसी छोटी छोटी बचत भी करते हैं ना सखियो, तो ये हमारी इमरजेंसी में काम आती है। पहले बचत फिर खर्च, ये मंत्र अगर हम अपना लेते हैं ना सखियो, तो बचत तो होना तय है। इसके लिए सखियों, आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या SIP में पैसे रख सकती हैं। अब बात जरूरी बचत यानी समय की बचत की। समय की बचत कहते हैं ना जीवन की बचत। दुनिया का सबसे कीमती धन पैसा नहीं बल्कि समय है। जो गया वो वापस नहीं आता। घंटों फोन स्क्रॉल करना, बेकार की गपशप, बिना प्लान के काम करना, ये सारा समय की बर्बादी है। इसके लिए एक डायरी बनाएं, फिक्स टाइम टेबल बनाएं, पहले काम फिर आराम इस मंत्र को अपनाएं, फिर देखिए सारे काम आपके खुद ब खुद समय पर हो जाएंगे। इसी तरह संसाधन की बचत। जी हाँ, धरती पर पानी, बिजली, पेड़, ये सब मुफ्त में नहीं है। नल खुला छोड़ देना, लाइट जली छोड़ देना, कागज बर्बाद करना, ये आदतें हमें नहीं बल्कि पूरे देश को गरीब बनाती हैं। इसलिए कोशिश करें और छोटी छोटी बचत करें जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। और इसी तरह अगर गुस्से में हम कभी कभी किसी को दो शब्द ज्यादा बोल देते हैं ना, तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लें, इससे क्या होगा? हमारे रिश्तों की बचत। जी हाँ, किसी से अगर हम माफी मांग लेते हैं या किसी को हम माफ कर देते हैं, तो इससे हमारे रिश्ते बच जाते हैं। एक और बचत है जो है असली दौलत, वो है सेहत की बचत। आज अगर हम 30 मिनट वॉक कर लेते हैं तो कल डॉक्टर के चक्कर लगाने से बच जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा तला भुना कम खा लेते हैं ना सखियों, तो कल दवाइयों के खर्च से बच जाएंगे। इसलिए सेहत बची तो सब बचा। याद रखिए सखियों, पैसा बचे तो सुख बचे, समय बचे तो तरक्की बचे, रिश्ते बचे तो चैन बचे, सेहत बचे तो सब बचे। तो शुरुआत आज से ही होगी ना सखियो, लेकिन समय तो नहीं बच रहा है अब आपसे बात करने के लिए। तो सखियो, अब चलने का समय हो रहा है। आपको बता दें, आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
1: मालवा की शान
0: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनते हैं पूर्णिमा नतानी द्वारा गाए गीत और भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा नातानी द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। चलिए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दम लगा के हईशा से।

अनु मलिक का संगीत वरुण ग्रोवर के लिखे बोल कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दम लगा के हईशा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मन मर्जियाँ से, आवाज़ है।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं, तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारत वर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद कल वे अनंतपुरम जाएंगी, जहां आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री गौतम टिटवाल और सांसद रोड बलनागर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ पूजन और पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का आज समापन हो रहा है, जिसमें अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जिला स्तरीय समारोहों में सांसद गण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डेलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीड़ी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को कक्षा के अनुसार 1,000 रूपये से लेकर 25,000 रूपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब शिष्यवृत्ति की दरें हर साल मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होंगी और जुलाई में छात्रावास आश्रम शुरू होने से पहले लागू होंगी। नई दरों के अनुसार छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले बालक विद्यार्थियों को 1720 रूपये प्रतिमाह और बालिका विद्यार्थियों को 1710 रूपये प्रतिमाह शिष्य प्रति दी जाएगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर के निर्देशन में रोजगार मेले का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में होगा। कटनी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल ईवीएम वेयरहाउस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। सेफ क्लिक अभियान के तहत आगरमालवा जिले के कल 6वें दिन जिला पुलिस द्वारा बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में व्यापक साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शिवपुरी जिले में सहकारिता और जागरूकता तथा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कल जिला सहकारी संघ कार्यालय में आयोजित हुआ और खंडवा वन मंडल की गुंडी रेंज के ग्राम आमा खुचरी में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 105 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आईएलबीएस जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
3: आईएलबीएस ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
4: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
5: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ERNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं और कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से

0: वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने एफएटीएफ की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने एफएटीएफ के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एफएटीएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर, और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का, जिसमें आपके भेजे हुए पत्रों को हम शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के मीठे मीठे गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ, जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में, और यह है फिल्म नागिन से। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

हेमंत कुमार का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नागिन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है विजय पथ और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। इसके अलावा सपना संगीता रोड इंदौर से हमें लिखा है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

विजयपथ से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुन रहे थे आप, जिसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने और जिसके बोल लिखे थे जमीर कासमी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रजनीगंधा से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं MM राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनका पूरा परिवार। और इसके अलावा एक और पत्र हमारे पास आया है जिला नांदेड़ से, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंतले और आरती जोंतले का। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

सलिल चौधरी का संगीत, योगेश के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रजनीगंधा से। और ये है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। अगला गीत आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनाएंगे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म परिचय से, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसके अलावा पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने भी हमें फरमाइशी पत्र लिखकर इस गीत की फरमाइश की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप श्रोताओं के लिए ये अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म परिचय से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में फिल्म निगाहें से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है बजरंगी रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास जिला सागर से। लक्ष्मण रखवार, विनीता रखवार, वैशाली, वैष्णवी, अनरत रखवार, हल्ले लल्लू और साथी ऋषि रखवार और बंडा की ओर से। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है, वो है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की ओर से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की ओर से। तो लीजिए अगला गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म निगाहें से। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी तरह अपने पत्रों का सिलसिला जारी रखिए और हमें भेजते रहें अपने पत्र अपनी फरमाइशों के साथ। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल बंगूभाई पटेल ने की। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीड़ी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है और प्रदेश में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण देते हैं।

शाम 5:02 पर सुनिएगा युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के 6वें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी आज शाम 5:33 पर। शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

नमस्कार श्रोताओ, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा का आगाज कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युव

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और जैसे कि आप जानते हैं, आज दिन है मंगलवार का और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक स्पेशल शहर जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज है आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त काजल
1: और अनुभूति। तो साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ढेर सारी जानकारी आज के दिन के बारे में आपको देने वाले हैं। लेकिन काजल, उससे पहले हम बता देते हैं हमारे श्रोताओं को कि आज के प्रश्न

0: क्या है?
1: बिल्कुल बता देते हैं। तो श्रोताओं जल्दी से प्रश्न सुन लीजिए और वो भी ध्यान से। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्ट्रॉइड्स का सबसे बड़ा समूह किस ग्रह यानी कि किस प्लैनेट के पास स्थित है?
0: और हमारा दूसरा प्रश्न है कि संसद किस व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप खोज कर रखिए और कार्यक्रम के अंत में हम आपको इसके उत्तर बताएंगे, तो हमारे साथ अपने उत्तर मिलाइएगा।
1: और उससे पहले आपके जो हम आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं उससे पहले एक सुंदर सा गीत सुन लीजिए।

0: दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अंतरिक्ष के बारे में कल्पना करते हुए लोग क्या सोचते होंगे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर दूर घूम रहे एस्टेरॉइड्स पर कभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार शोध करते हैं? आखिर इन चट्टानी पिंडों में ऐसा क्या है कि इन पर इतनी बारीकी से नजर रखी जाती है?
1: और ज़रा सोचिए और कल्पना कीजिए, अगर अंतरिक्ष से कोई विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा हो तो क्या होगा? क्या हम पहले से इसका पता लगा सकते हैं? क्या विज्ञान हमें इसके लिए तैयार कर सकता है?
0: यही कुछ सवाल हैं जो हमें आज के बेहद ही रोचक विषय की ओर ले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज हम मना रहे हैं, यानी आज 30 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें अंतरिक्ष विज्ञान और हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के प्रति जागरूक करता है।
1: बिल्कुल, इस दिन का उद्देश्य है क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्ट्रॉइड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ये समझाना कि और ये समझना भी कि वैज्ञानिक इनका अध्ययन, इनकी स्टडी क्यों करते हैं और पृथ्वी को संभावित खतरों से सुरक्षित रखने के लिए किस तरह ये लगातार प्रयास करते रहते हैं।
0: लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये एस्टेरॉयड होते क्या हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये अंतरिक्ष में घूमने वाले चट्टानी या कह सकते हैं कि द्वाकविक पिंड हैं। ज़्यादातर ये जो एस्टेरॉयड्स हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित रहते हैं, जो एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं।
1: और 30 जून की तारीख भी यूं ही नहीं चुनी गई है। इस दिन वर्ष 1908 में रूस के साइबेरिया क्षेत्र के तुसुंगा इलाके में एक विशाल अंतरिक्ष पिंडी का विस्फोट, उसके विस्फोट से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का जंगल जो है वो तबाह हो गया था। इसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी एस्ट्रॉइड संबंधी घटना मानी जाती है।
0: और इसीलिए दोस्तों वैज्ञानिक भी लगातार ऐसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी कि पृथ्वी के निकट आने वाली अंतरिक्षीय वस्तुओं पर नजर रखते हैं और उन पर शोध निरंतर करते रहते हैं।
1: और दिलचस्प बात यह है कि एस्ट्रॉइड सिर्फ संभावित खतरा ही नहीं बल्कि ये हमारे सौरमंडल के इतिहास की अनमोल धरोहर भी हैं। इन्हीं के अध्ययन से वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश करते हैं कि अरबों वर्ष पहले ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था।
0: तो दोस्तों विज्ञान हमें सिर्फ सवाल पूछना ही नहीं सिखाता बल्कि उनके जवाब खोजने का रास्ता भी दिखाता है। जिज्ञासा ही हर नई खोज की पहली सीढ़ी है।
1: इसी संदेश के साथ आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस पर यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे पर आइए विज्ञान के प्रति अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाएं और अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएं।

0: दोस्तों, इसी के साथ आज एक और भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और उसका नाम है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पर कभी आपने ये सोचा है कि हम सभी अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी आवाज़ आखिर देश की नीतियों तक कैसे पहुंचती है? कौन तय करता है कि किन मुद्दों पर कानून बनेंगे, किस विषय पर चर्चा होगी और जनता की बात सरकार तक कैसे पहुंचेगी?
1: इन सभी सवालों का जवाब छिपा है हमारी संसद में, और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष आज यानी कि 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस।
0: इसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियनिज्म भी कहते हैं। इस दिवस का उद्देश्य है दुनिया भर की संसद को उस महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना जो लोगों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कल्याण का प्रतिनिधित्व करती है। सांसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है।
1: आपको जानकर दिलचस्पी होगी दोस्तों, लेकिन इस वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 30 जून को यानी कि आज की डेट को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस घोषित किया था।
0: और इस तारीख का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। 30 जून 1889 को अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन की स्थापना हुई थी। ये दुनिया भर की संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच संवाद, सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।
1: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की संसद ने भी संविधान की भावना, लोकतांत्रिक परंपराओं और जनप्रतिनिधित्व की गौरवशाली विरासत को सदैव सशक्त किया है दोस्तों। और इसीलिए संसद सिर्फ बहस और चर्चा का स्थान नहीं है, यही वो मंच है जहां देश के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। यहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और विकास जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं।
0: एक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह संसद ही लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहे और हर नागरिक की आवाज़ को उचित महत्व मिले।
1: और आज की पीढ़ी भी यानी कि युवाओं के लिए भी ये दिन एक खास संदेश लेकर आता है, वो ये कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है। जागरूक नागरिक बनना, देश की नीतियों को समझना और रचनात्मक भागीदारी निभाना भी उतना ही जरूरी है।

तो आइए दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर लोकतंत्र की इस अमूल्य विरासत का सम्मान करें और एक जागरूक, जिम्मेदार तथा सक्रिय नागरिक बनने का संकल्प लें।

0: क्या बात है, एक तो बारिश और ऊपर से इतना सुंदर सा गीत। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और साथियों, अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट की, जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे, और उस सेगमेंट का नाम है हमारा शहर।
1: बिल्कुल, तो आज हमारे शहर में हम जिस जगह का सफर करने वाले हैं दोस्तों, वहाँ की बात निराली है। अगर हम कहें कि आज हम आपको एक ऐसी जगह का सफर कराने जा रहे हैं जहाँ कदम कदम पर चमक है, तो आप क्या गैस कर सकते हैं?
0: चमक, अरे अनुभूति, जब बात चमक की हो और वो भी मध्य प्रदेश में, तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, पन्ना, यानी कि भारत की हीरों की नगरी।
1: बिल्कुल सही काजल। तो पन्ना यानी वो जिला, जो शहर जिसने विंध्याचल की पहाड़ियों और केन नदी की गोद में खुद को ऐसे संवारा है कि आज इसकी चमक पूरी दुनिया में है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने। और पन्ना सिर्फ हीरों के लिए ही नहीं जाना जाता, इसका इतिहास इतना गौरवशाली है कि जब बुंदेलखंड में महाप्रताप जी राजा, महाराजा छत्रसाल ने 1675 में इससे अपनी राजधानी बनाया, तब से पन्ना का वैभव और भी ज़्यादा बढ़ गया था।
1: पन्ना की एक और बात बड़ी निराली है दोस्तों, कि यहाँ की वास्तुकला यानी यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वो हिंदू और मुस्लिम शैली का एक ऐसा अनोखा संगम है जिसमें आपको देखकर ऐसा लगेगा, उन मंदिरों को देखकर ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही जगह पर आ गए हैं।
0: जहाँ ऐसे और जिन जगहों पर ऐसी चीज़ें हों, जैसे यहाँ का महामती प्राणनाथ जी मंदिर, जो प्राणामी संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ है, और हाँ यहाँ का बलदेव जी मंदिर, जो बिल्कुल लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल जैसी रोमन वास्तुकला से प्रेरित है।
1: बिल्कुल। वैसे काजल, हम जब इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि ये जो नाम है ये अपने आप में ही इतने बड़े हैं और कह सकते हैं कि इतने विशेष हैं कि हम भी उन्हें ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। तो अगर हम वहाँ
0: बिल्कुल
1: जाएंगे, उस जगह जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो अनुभव भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी नया होगा।
0: जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी हम उन शब्दों को बोल भी नहीं पा रहे हैं ठीक से।
1: वैसे अगर नेचर लवर्स की बात करें तो उनके लिए भी पन्ना नेशनल पार्क, जो टाइगर रिजर्व है जहाँ केन नदी बहती है और जहाँ आपको बाघ, तेंदुए और चीतल घूमते हुए दिख जाएंगे, वो भी एक बहुत ही सुंदर सी जगह है जो आप अनुभव कर सकते हैं। और एडवेंचर के लिए वहाँ पांडव फॉल्स भी हैं जहाँ आप जा सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इसी जगह बिताया था।
0: क्या बात है, ये बात जानकर तो इस जगह की जो शोभा है और गौरव है वो और ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। यानी कि इतिहास, अध्यात्म, रोमांच और चमक, सब कुछ एक ही पैकेज में, जिसका नाम है पन्ना।
1: तो पन्ना अपने हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना खूबसूरत, शांत और निर्मल है। सदाबहार पेड़ों, पहाड़ों, जंगलों से अटे घास के मैदानों से घिरा है। और ऐसी जगह आप सभी को ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप इस जगह गए हैं तो हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही,
1: और अब वक्त है आपको आज के प्रश्नों के उत्तर बताने का।
0: हमारा पहला प्रश्न था कि एस्ट्रॉइड्स के सबसे बड़े समूह का, जो एस्ट्रॉइड्स का सबसे बड़ा समूह है, वो किस ग्रह के पास होता है, और उसका उत्तर है बृहस्पति।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि संसद किस व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है, जिसका उत्तर है लोकतंत्र।
0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब दीजिए इजाजत काजल
1: और अनुभूति को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के छठवें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट।
1: संस्कृत ज्ञान, भारतीय परंपरा और वैदिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आज उज्जैन की पावन धरती एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण की साक्षी बनी। कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल सभागृह में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने की, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार सहित देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, संत और विद्वान इस अवसर के सहभागी बने। दीक्षांत समारोह में जहां विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया, वहीं पीएचडी, स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधियां प्रदान की गई। प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण एवं रजत पदकों से सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत भाषा और वैदिक मूल्यों के संरक्षण तथा संवर्धन का संदेश इस समारोह ने पूरे शिक्षा जगत को दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: व्याकरण शास्त्र के प्रणेता, शब्द ब्रह्म के उपासक महर्षि पाणिनि के पावन नाम प्रस्थापित विश्वविद्यालय का दीक्षांत केवल उपाधि वितरण का प्रयास प्रसंग नहीं है, अपितु संस्कृत की सनातन ज्ञान परंपरा के नई पीढ़ी के सौंपने का पवित्र अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के साक्षी पालकों एवं आचार्य और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जावान विद्यार्थियों को हृदय से बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिस प्रकार महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 3,959 सूत्रों में पूरी भाषा को नियमबद्ध किया, उसी प्रकार आप सभी स्नातकों भावी जीवन में अपने ज्ञान, अनुशासन और चरित्र के राष्ट्र और समाज के संस्थापित आपको करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और गर्व करने का एक ऐतिहासिक अवसर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संस्कृत को केवल पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा नहीं माना, बल्कि इसे विज्ञान, दर्शन, गणित, कला और आधुनिक तकनीक के वाहक के रूप में मान्यता दी है। यह नीति त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से संस्कृति को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक मुख्य धारा में लाने का एक सशक्त रोड मैप प्रस्तुत करती है। अब समय आ गया है कि संस्कृत को संग्रहालयों की प्राचीन लिपियों से बाहर निकलकर आधुनिक अनुसंधान के जीवंत भाषा बनाए। विश्वविद्यालय से अपेक्षा है कि भारतीय ज्ञान की प्रणाली का दुनिया में प्रचार के लिए संस्कृत के ज्ञान विरासत को आधुनिक भाषा में प्रचार करें।

0: अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी सारे हिंदुस्तान को फाइव मिनिस्टर ऐलान किया है हमारे को 2047 में विकसित भारत जो बनाना है, तो ऐसे पुराने जो हमारे संस्कार है, पुराने जो प्रकृति की जो हम पूजा करने वाले हैं, ऐसा समाज हम तैयार करेंगे तो सही दिशा में हम विश्व गुरु बनेंगे। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, ऐसे अपेक्षा के साथ भारत माता की जय।
1: कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने सभी दीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देने के साथ कहा,
0: आज जिस विश्वविद्यालय की स्थापना जिस उद्देश्य से जिस भाव के साथ मैं समझता हूँ की गई थी, इस दीक्षांत समारोह से उसके उद्देश्यों को पूर्ति हुई हम सबको दिखती है। आज जिन भी बंधु भगनी को उपाधि मिली है, मेडल मिले हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन जैसा कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं है, शिक्षा का एक पड़ाव है, लेकिन आगे जो चुनौतियां हैं उनको सबको स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमको अपने देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के उस ज्ञान को, जिस ज्ञान के आधार पर हम दुनिया में कभी विश्वगुरु कहलाते थे, फिर से विश्वगुरु बनने का संकल्प यदि हम सब में है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। और विश्वगुरु बनने के वाहक के रूप में आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब बनने वाले हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने विशेष रूप से सभी विषयों के साथ जोड़ करके पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में लागू कर दिया है। उस अनुसार पुस्तकें बन चुकी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा यानी भारत के शास्त्रों के बारे में ही केवल पढ़ाने का विषय होगा, ऐसा नहीं है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, ये सारे है जिनमें कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और इसलिए उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाज के सामने रखना। लेकिन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में भी क्या भारतीय वैज्ञानिकों का भारतीय समाज में जो परंपरा है, क्या वो वैज्ञानिक सम्मत है या नहीं है, इस प्रकार का दृष्टिकोण समाज के सामने आज आने लगा है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जब गर्व करने का विषय कभी हमारे सामने आता है तो मैं कई जगह उदाहरण देता हूं। मैथमेटिक्स में तो दुनिया में सबसे अग्रणी हम ही रहे, और भारत के दर्शन में, सभ्यता में जो भूगोल शब्द का वर्णन होता है, भू यानी पृथ्वी और गोल यानी पृथ्वी गोल है, ये हमारे देश के शब्द है। और इसलिए भारत के विद्यार्थियों के मन में गणित के प्रति जो अथाह विश्वास और का भाव होना चाहिए, वो निश्चित रूप से हमको विश्व विजेता की ओर आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराएगा। ऐसे कई सारे विषय भारतीय समाज में विज्ञान की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, परंपरा है, पर क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में एक भाव पैदा कर दिया कि आपके पूर्वज तो अंधविश्वासी थे, आपके पूर्वज तो रूढ़िवादी थे, और उस कारण से हमने हमारे अच्छे चीजों को भी, वैज्ञानिक चीजों को भी, विज्ञान के आधार पर समाज में स्थापित की चीजों को भी छोड़ने का क्रम बना लिया, या छोड़ा नहीं तो चुपचाप करने का क्रम बना लिया। मैं एक उदाहरण के साथ आप, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत के समाज में, हमारी सभ्यता में प्रकृति के साथ जो विशेष प्रेम है, स्नेह है, और उसके प्रति हम जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और दुनिया में जो आज झगड़ा चल रहा है, लोग ईरान अमेरिका जैसे झगड़ा चल रहा है, काहे के लिए झगड़ रहे, ऊर्जा के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए, ये भी तेल भी जमीन से जो निकलता है, ये भी कभी ने कभी सूर्य की ऊर्जा से ही कन्वर्ट हुआ है, और जो कोयला है वो भी जमीन में है, कभी ने कभी सूर्य की ऊर्जा से कन्वर्ट हुआ है। और इसलिए हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, उन्होंने उस वैज्ञानिक पक्ष को हमारे समाज में, मान्यता में, निरंतर परंपरा में उसको आगे बढ़ाया है। और इसलिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे सामने, देश के सामने भी है, मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जब 2047 यानी आजादी के 100 साल पूरे होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, समाज में कई सारे लोग जिसको विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, वो विकसित गुरु भारत, विश्व गुरु भारत जब बनेगा, तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे सूर्य की ताकत पर, हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान के ताकत पर भारत दुनिया में ऊर्जा का केंद्र बनेगा। और केवल हमारे देश की ऊर्जा की पूर्ति करने वाला देश नहीं होगा, हम दुनिया के भी कई देशों की ऊर्जा की पूर्ति कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों के ज्ञान को हमने अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर दिया है। दूसरा बड़ा पक्ष होने वाला है कि 2047 का भारत दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत बनेगा, क्योंकि इस देश के किसान अपनी भारत माता से, अपनी वसुंधरा से जो अनाज उत्पादित करेंगे वो केवल भारत के लिए नहीं होगा, वो दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान भारत होगा, क्योंकि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को स्वीकार किया है। जयतु भारतम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
1: कार्यक्रम में माननीय कुलगुरु प्रोफेसर शिव शंकर व्यास ने अतिथियों के स्वागत में कहा,
2: मित्रों, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय की एक इस यात्रा में इस विश्वविद्यालय को विगत पर्याय में नैक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसी सत्र में अभी 8 जून को अभी इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 12B का परीक्षण इस विश्वविद्यालय का संपन्न हो गया है। हमारे इस विश्वविद्यालय के 12B होने के बाद जो हमारी संभावनाएं बढ़ी हैं वो ये है कि हमें ODL संचालित करना है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा हो सके। और जो बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 14 विद्याएं और 64 कलाएं, इनका स्वरूप आना चाहिए समाज के सामने, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय इन दिशाओं में बहुत सार्थक प्रयास करेगा और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। पुनः एक बार माननीय कुलाधिपति जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, दोनों सांसद सदस्यों का, माननीय सारस्वत अतिथि वरखेड़ी जी का और मानद उपाधि पाने वाले पांडे जी का, तथा मंच पर विराजमान समस्त कार्य परिषद सदस्यों का, संकाय अध्यक्षों का, विद्या परिषद सदस्यों का, साधारण परिषद सदस्यों का, समागत समस्त अतिथियों का भूयो भूया स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम इत्युक्त्वा विरमामि, धन्यवादः।
1: कार्यक्रम के माननीय सरस्वत अतिथि प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने कहा,
3: माननीय कुलपति महोदय तथा सभी साधारण सभा और विशिष्ट सभा और प्रशासन मंडल के सभी सदस्यों को मैं अभिनंदन करता हूँ। इसलिए मैं छात्रों से निवेदन करता हूँ, आज दीक्षांत हो गया, हमारा पूर्ण उपाधि प्राप्त होगी, लेकिन पूर्ण उपाधि का वास्तविक अर्थ समाज देगा, क्योंकि आज केवल हमने प्रमाण पत्र दिया है। यहाँ के माननीय कुलाधिपति ने अपने अधिकार से विश्वविद्यालय की ओर से आप सबको एक उपाधि प्रमाण पत्र दिया है। हम सबको जानकारी है उपाधि पत्र के प्रथम पृष्ठ में उपाधि का नाम होता है, हमारा ग्रेडिंग होता है, लेकिन उपाधि के पृष्ठ में खाली पत्र होता है, रिक्त पत्रे समाज लिखति, प्रमाण पत्रे कुलपति हस्तांकनं करोति, परंतु रिक्त प्रमाण पत्रे रिक्त स्थाने समाज रिक्त स्थानम पूरयिष्यति, उस रिक्त स्थान में ये इस उपाधि के लिए अर्ह है, ये उपाधि के लिए प्राप्त है, उपाधि के लिए पात्र है, और उपाधि प्राप्त होने के बाद यह वास्तविक रूप से समाज के लिए उपकारी है, ऐसे समाज जब निर्णय करेगा तभी सब प्रमाण पत्र का पूर्णता प्राप्त होगी। आप सबसे उपाधिधारक स्नातक धारकों को मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, इस दीक्षांत समारोह के बाद पश्चात निरंतर शिक्षा का आरंभ हो जाए और वास्तविक रूप से समाज से आप प्रमाण पत्र स्वीकार करिए। हमारा धर्म होगा केवल हम शिक्षा से विभूषित नहीं है, यदि हमारे मन में केवल सनातन धर्म के लिए निष्ठा नहीं है, अध्यात्म भक्ति नहीं है, संस्कृति का हमारे गंध नहीं है, और शास्त्र और कवित्व प्रतिभा के साथ यदि समस्त विद्याओं के प्रति हमारे धारणा नहीं है, तो हम वास्तविक रूप से उपाधिधारी नहीं है। इसलिए आज इस उपाधि के साथ अध्यात्मनिष्ठा, सनातन धर्मनिष्ठा, कवित्व शास्त्र प्रतिभा, संस्कृति और समस्त विद्या का प्रतीक के रूप में हमारी पूजा होती है, इसलिए इन सारे विद्याओं का धारक के रूप में हमारा दायित्व भी है। मेरा दायित्व है, मेरे भारत का धारक हूं मैं, तो भारत का धारणा शक्ति मुझ में है, इसलिए इस भावना के साथ हम सबको कार्य करना है। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा केवल शास्त्र स्मृति से काम नहीं चलेगी, शास्त्र रक्षा भी होनी चाहिए और शास्त्र कृषि भी होनी चाहिए, शास्त्र का अनुभूति भी होनी चाहिए और शास्त्र दृष्टि के साथ अभिनव शास्त्र सृष्टि भी होनी चाहिए। सभी को, छात्रों को यही आदर्श के साथ आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों से मैं वचन समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, प्रणाम।
1: दीक्षांत समारोह में स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज को महामहोपाध्याय डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी शोधार्थियों से कहा,
4: भगवान महाकाल की कृपा है, भगवान विश्वनाथ की कृपा है कि हम लोगों ने एक युग देखा जब 370 धारा हट गई, हम लोगों ने यह देखा भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, हमने ये देखा कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम

0: भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनः उद्घोष हमारी शिक्षा पद्धति में आरंभ हुआ। यह मंच आपको कह रहा है, निमित्त मात्र बन जाओ, उठ करके खड़े हो जाओ, भविष्य काल हमारा है, हम उसको करके दिखाएंगे। कितना भी चुनौती भरा समय होगा तो भी क्या, यह उथल पुथल उत्ताल लहर, यह उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी, भारत माता की।
1: ज्ञान संस्कार और परंपरा के संगम बने इस दीक्षांत समारोह ने विद्यार्थियों को नई उड़ान और नई जिम्मेदारियों का संदेश दिया है। उपाधियों और सम्मान के साथ आज इन विद्यार्थियों ने समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प भी लिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस विशेष प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के छठवें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुति थी और इसका प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू को भी आपने सुना फिल्म धड़कन में, शब्द रचना समीर की, संगीत नदीम श्रवण का। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को अभी आपने सुना फिल्म क्या यही प्यार है में। संगीत साजिद वाजिद का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्कंडेय जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की।

0: साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, इस सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
0: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
0: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
0: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
0: जी,
1: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
0: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
0: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
0: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
0: जी।
1: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
2: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
2: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
2: सबको गले लगाना,
3: सबको गले लगाना,
2: दीपक से सीखो जितना,
3: दीपक से सीखो जितना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: सच्ची सेवा करना,
3: सच्ची सेवा करना,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
3: जीवन पथ में बढ़ना,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
3: और धुएं से सीखो हरदम,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खो देंगे तालाब बड़ा सा।
3: खो देंगे। हम सब मिलकर एक गर्मी में प्यासे न मरेंगे, न होंगे
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खो देंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
5: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए, यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद लें ताल, काम करें खत्म।
4: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो।
3: खो देंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
6: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ
7: गाओ। कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
8: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
9: मेरा भी कुछ यही हाल है।
6: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम

0: सुनाए, नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना काम।
1: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: दम लगा के कू,
4: आयशा
0: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा पड़ा आराम, चलू उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
4: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
0: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
4: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का का का।
5: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: やばい。パピー花ピエトじゃばい。
1: カンカンカン。あれ？इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ भौ भौ। अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: गाँव गाँव गाँव, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही

0: इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
1: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है।
3: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
4: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
4: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
3: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
3: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
4: हाँ मैं भी हैरान हूँ, कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपीहे के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: मर गया?
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।
2: परेश,

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले मैच की सीधा प्रसारण की कमेंट्री सुनवाते हैं, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी है। आईसीसी वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू द बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
3: फर्स्ट बॉल 20।
4: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. I'm Sakshi Mandwal, and what may we say? The last 28 days have finally brought us to the first semi-final game that is all set to happen between West Indies and Australia of the ongoing ICC Women's T20 World Cup, all set to be held at the Oval today. In the next 1 minute, we shall be also witnessing the toss, which is all set to happen. But over here, I'm joined by my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit. नमस्कार।
5: गुड इवनिंग साक्षी। और यहाँ पर पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हैं आशा रावत, नमस्कार, फॉर्मर इंडिया बैटर।
6: नमस्कार।
5: राकेश राव हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। गुड इवनिंग राकेश।
7: वेरी गुड इवनिंग।
5: और साथ ही बीसीसीआई कोच हमारे साथ हैं रविंदर सिंह जी। नमस्ते। आशा, टॉस होने वाला है 30 सेकंड में, क्या लगता है हेली मैथ्यूज और सोफी मेलोनियो जब टॉस अगर कोई जीतता है तो क्या चॉइस करेंगी?
6: वो बैटिंग के लिए पहले जाएंगे क्योंकि ये जो पिच है ना, और एक जो प्रेशर होता है वो भी सेमीफाइनल का प्रेशर, तो कोई भी वो प्रेशर को वो नेचुरल होता ही है, सबको आता है, तो जो भी जाएगा पहले बैटिंग के लिए ही जाएगा।
5: राकेश,
7: कम्प्लीटली सेम चीज़ है क्योंकि थोड़ा बहुत हरा जरूर है लेकिन इट्स फुल ऑफ रन्स।
5: रविंदर जी,
8: आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं क्योंकि जो सेकंड बैटिंग में 10 बार जो लिया उन्होंने, मुझे भी लगता है शायद दूसरा चेज करेंगे।
5: चलिए सीधा केनिंगटन ओवल के मैदान पे चलते हैं लंदन, जहां पर टॉस हो रहा है और दोनों कप्तान ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यू और वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज बिल्कुल तैयार हैं।
9: Finals here at the Oval, and we have two of the most skillful and entertaining teams in this ICC Women's T20 World Cup. It's the West Indies up against Australia. I've got the captains next to me. GS Lakshmi is match.

0: Referee overseeing the coin toss. Sophie Molyneux has the coin. Hayley Matthews will call.
1: Tails.
2: Tails is the call. It's heads.
0: Fall on the way of Australia. So, first of all, congratulations on your 50th T20 International. You've won the coin toss. What are you going to do and why?
3: We're going to have a bowl. Looks like a good pitch to come out here and hopefully put a bit of pressure on early.
0: Did you sort of toss and turn a little bit on the bowling? It's about 7 to 8 mils out there. Is that what sort of attracted you to it?
3: Yeah, I think so. It does look a little bit furrier than yesterday. It's just grown overnight. But yeah, I think so. And just be able to get out here and have a run around first.
0: Big win against India. Any changes to the team at all?
3: No, I've got the same team.
0: Same blueprint then? You come into a big game like that, last of the round games, do you sort of go, right, same approach, or do you say clean sheet up against the West Indies?
3: I feel like West Indies are, you know, an incredible team, and we have to bring our best, and a part of that is being able to play our style of play no matter who we are coming up against. Yep.
0: You know this one quite well. Captains and players at the Melbourne Renegades, does that make it easier?
3: Probably not. We were actually just talking about the Renegades before, but, you know, she's always good to play against.
0: There we go. We'll find out in a second. Here we go. Thank you. All the best today.
3: Thanks, Jonesy.
0: Hayley, come on in. Batting first. You happy with that?
4: Yeah, I think it's a pretty good wicket here at the Oval. Not going to change too much. We probably would have had a ball first, but at the same time, we feel like we certainly got nothing to lose and can go out there and play a really fearless brand of cricket.
0: It's been a roller coaster ride for you guys. You had the first couple of wins and then a little bit shaky at the end. What do you bring to this team to say, okay, these are the things that we really need to, you know, knuckle down on, double down on today?
4: Yeah, I think we need to keep believing, one, but at the same time, we just need some of our big players to step up. Myself included, I feel like that's probably what we've missed this tournament, but it still brings out a lot of positives, the fact that we have gotten to this stage without a lot of our big players really making big performances.
0: Looks like a kind of ground, too, that you need a big total on.
4: Yeah, 100%. Definitely a higher par score here, and probably, if not the best, one of the best wickets in England. So we're definitely going to have to get the score up in this first innings. Yep.
0: Big West Indian support here today as well, so you'll have them on your side. All the best today.
4: Thank you.
0: Australia have won the toss today, and they'll be bowling first.
5: So the news from Oval coming right there. Sophie Molyneux, the captain of Australian team, winning the toss and choosing to bowl first, as predicted also by prediction king Ravinder Singh ji. Ravi, aapke paas aati hu. आंकड़े में दिखा रहे थे कि चेस फ्रेंडली विकेट है, और आपको लगता है हाई प्रेशर गेम के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ये सही निर्णय लिया है आज बॉलिंग करने के लिए?
6: देखिए, मेरे हिसाब से तो फील्डिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जो पिछला मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खेलते हुए, उन्होंने बहुत बड़ा चेस किया उन्होंने, और अच्छा, बहुत बढ़िया मैच, और वही मुझे लगता है मोमेंटम बना के चलना चाहते हैं। देखिए, ये 20 ओवर्स का जो मैच होता है ना, ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। अब अगर इसमें वेस्टइंडीज पर प्रेशर रहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए कितना टारगेट चाहिए, कितना टारगेट सेट करें, और ऑस्ट्रेलिया को पता है ऑस्ट्रेलिया 6 बार का चैंपियन है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको कम से कम 180-190 रन का टारगेट सेट करना पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है। और यही प्रेशर में होता क्या है कि जब आप ज्यादा प्रेशर तेज खेलने के चक्कर में आप विकेट्स गवाते हैं, तो ये मेन गेम यही है। अगर वो वेस्टइंडीज जीतते, मुझे लगता है शायद वो भी फील्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि पहले कितना टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट सेट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो यही मुझे लगता है प्रेशर गेम है, तो जो भी होगा पहले चेस करना चाहेगा, देखते हैं कि पहले उसमें वो कितना रन बना सकते हैं।
7: जी, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है, और अगर अंतिम 11 की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं है, वही टीम है जो इंडिया के खिलाफ खेली थी। बेथ मूनी विकेटकीपर, जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, एलिसी पेरी, जिन्होंने 5 मुकाबले में अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक 183 रन बनाए हैं, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेरहम, अनबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यू कप्तान ने 5 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन। आशा, कैसे देखती हैं ऑस्ट्रेलियन साइड को?
8: ऑस्ट्रेलियन साइड अगर हम देखें तो बहुत बैलेंस टीम है, चाहे उसमें बैटिंग की साइड देख लीजिए, चाहे आप बॉलिंग देख लीजिए, चाहे स्पिनर देख लीजिए, चाहे मीडियम पेसर देख लीजिए। पर अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो उसमें आप केवल एक दो प्लेयरों में ही टीम निर्भर करेगी। अगर जो कैप्टन है हैरी मैथ्यूज़, उसके ऊपर, डी डॉटिन के ऊपर, तो कुछ 2-3 प्लेयर हैं कि उनको आज करना ही पड़ेगा, और जो कैप्टन है उनको तो बहुत, मतलब पूरी आज उनमें ही पूरा दामोदर है, अगर वो कुछ टीम को अगर सेमीफाइनल तक पहुंचाना चाहती हैं तो।
5: राइट, वेलकम टू राकेश। सिंस आशा जस्ट नाउ मेंशन दैट वेस्ट इंडीज इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन 3 ऑफ देयर मेन प्लेयर्स, 1 कैप्टन हेली मैथ्यूज, 2nd वी हैव डियांड्रा डॉटन, एंड 3rd ऑफ कोर्स वी हैव स्टेफनी टेलर। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नॉट इवन बीन एबल टू परफॉर्म थ्रू आउट द सीजन प्रीटी वेल, बट दे आर स्टिल द बिग नेम्स। हाउ मच ऑफ द

0: load will be resting on their shoulders today to shine and prove something for the team, definitely.
1: It becomes tough when you are out there for a knockout game and you don't have runs behind you, number one. So, and they have only two individuals who've crossed 100. So, they have only two guys who have scored over 100 runs. One of them happens to cross 150 as well. Now, when you go in for a knockout game and out there you have to go and put the runs on the board, and form is not in your favor. So, this is a worrying factor for the West Indians. They have a reasonably good attack, but that doesn't mean that they can take the Australians lightly, because Australians in an ICC event, they are ruthless. They come very hard at you. Very difficult to beat them here. The only time you can beat them is probably in a league game when they have an off day. And history has shown that Australians don't take an off day when it comes to knockout games. And that's why they have such a fantastic record. Six times they have already had two hat-tricks of wins in the same tournament, I mean in the same event. So I still see that this is Australia's game all the way. And as it has already been said here, that one of the factors that probably influenced the Aussie skipper was the fact that the way they beat India, they chased down a pretty challenging score, and they did that. So it seems to be quite they've been influenced by that decision.
2: जी बिल्कुल. और यदि आप ही फर्स्ट बॉल 20 इस कार्यक्रम में सवाल करना चाहते हैं विशेषज्ञों से, तो आप हमें फोन कीजिए. 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है, नंबर है 2342108 5. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने पांचों मुकाबले जीते हैं, बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस. वहीं वेस्ट इंडीज ने आशा पहले तीन मुकाबले तो जीते थे न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के विरुद्ध, लेकिन अंतिम दो मुकाबले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ वो हारे हैं, तो दो लॉसेस के बाद यहाँ आ रहे हैं. कैसे हेली मैथ्यूज अपनी टीम को मोटिवेट करेंगी?
3: मुझे जहाँ तक लगता है, उनको अगर मैं वैसे बोलूँ तो अपनी उनको खोने के लिए उनको कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो साइड जो ऑस्ट्रेलिया टीम है 6 बार की चैम्पियन टीम है, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने एक बार इसको ले रखा है चैम्पियनशिप को, तो उनके लिए बस ये है कि ये अगर मैं वही मैंने जो पहले बोला है कि मैथ्यूज जो कैप्टन है उसके हाथ में बहुत कुछ है. अगर वो आज टीम को लेके चली गए, मतलब उन्होंने अच्छा खेला बैटिंग बॉलिंग दोनों में, तो थ्रू आउट वो आगे फाइनल में पहुंच जाएंगे.
0: Okay. Yes, Amit, I think we have a caller with us on the line. Namaskar, good evening. Kya naam hai aapka? Swagat hai aapka hamare karyakram mein. Bataye kya puchna chahte hai?
4: Namaskar.
1: Namaskar.
0: Hamare sare panelists aapko namaskar kar rahe hain. Bataye kya puchna chahte hain aaj aap call karne ke liye?
2: जी शुक्रिया. कितना स्कोर बन सकता है रविंदर जी यहाँ पर?
4: देखिए, स्कोर की आजकल कोई लिमिट नहीं है. जिस हिसाब से क्रिकेट का जिस हिसाब से उसका नया फॉर्मेट बना है, 20 ओवर में आपको पता कुछ भी. लेकिन ये जो अब वेस्ट इंडीज के लिए टारगेट है, वेस्ट इंडीज को कम से कम नहीं तो 180 रन तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनको कुछ प्रेशर में डालना है. तो 150-170 रन पे आपने देख अभी इंडिया के अगेंस्ट देखा उन्होंने कैसे खेला, तो 180 रन का टारगेट होगा. लेकिन देखिए, सेमीफाइनल ही होते हैं, आप पहले सारे मैच जीतते चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये प्रेशर गेम है, आपको पता एक गलती और आप टूर्नामेंट से बाहर.
2: राकेश जी, दोनों ही सेमीफाइनल केनिंगटन ओवल में होने हैं, और फिर फाइनल जो है 5 तारीख को लॉर्ड्स लंदन में.
4: एक सेकंड में आप एक ऐड कर रहा था कि ये दो लास्ट के जो दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया हारी है.
2: जी.
4: और ऑस्ट्रेलिया को अभी तक सिर्फ वेस्ट इंडीज ही है जिन्होंने फाइनल में हराया था, तो ये बात भी उनका कहीं ना कहीं माइंड में होगी, दोनों सेमीफाइनल्स में हारे.
2: लेकिन आज जो आपको पिच दिख रही है, यहाँ पर कितना एक स्कोर बन सकता है वेस्ट इंडीज का?
1: देखिए, मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलियन अटैक है, मैं इसको वेस्ट इंडीज़ की जो क्षमता है वो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अटैक के अगेंस्ट क्या क्षमता है. ऑन पेपर आप देखेंगे तो वो टीम रन बना सकती है, लेकिन आज का दिन ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस का अटैक कितना, अगर वो लोग निशाने पर हैं तो मैं ये 150-160 के ऊपर नहीं देखता हूँ. स्कोर होना चाहिए 180. अगर आप एक वेस्ट इंडियन फैन हैं तो आप 180 मिनिमम चाहेंगे. लेकिन विमेंस क्रिकेट इज़ अनप्रडिक्टेबल, इसलिए मैं IPL के यार्डस्टिक से या मेंस क्रिकेट के यार्डस्टिक से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ. विमेंस क्रिकेट आई हैव सीन लॉन्ग इनफ, इसमें कुछ भी हो सकता है, 100 के अंदर टीम ऑल आउट हो जाती है.
2: okay.
1: तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ. लेकिन हाँ, लेट्स बी फेयर, प्रैग्मैटिक होके अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 150-160.
0: राइट. और एक श्रोता हमारे साथ अमित है.
2: हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताइए. जी क्या पूछना चाहेंगे आज ऑस्ट्रेलिया कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही हैं?

0: फिर जीतेगा कौन? आपको वेस्ट इंडीज टीम अच्छी नहीं लगती? जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए।
1: जी काफी अच्छी बातचीत यहाँ पर हुई और देखने में ये भी सुनने में अच्छा लगा कि हमारे श्रोता को भी इतनी जानकारी थी आज की मैच और टूर्नामेंट के बारे में।
0: तो आशा आपको लगता है वुमेन्स क्रिकेट धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है अब?
2: हाँ मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब हम खेलते थे तो कुछ किसी को पता भी नहीं था कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है या एशिया कप हो रहा है, कुछ भी वर्ल्ड कप हो रहा है। बट अब जो भी कोई भी सीरीज हो रही है वो भी सब देख रहे हैं, इवन सबको नाम सबका पता है, वो बहुत अच्छा लगता है।
0: मैं बता दूं 2008 में एशिया कप भारत जीते थे और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच 97 रन आशा रावत।
2: थैंक यू
1: वाओ नॉट बैड। आपके पास आती हूँ रवि क्विकली, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग साइड है, लेकिन वेस्ट इंडीज की अगर बात करें और सीजन में देखें टूर्नामेंट के अंदर स्पिनर्स को काफी मदद मिली है इन सारे विकेट्स के ऊपर, और खासतौर से अगर आज बात करें तो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की बोलिंग की स्ट्रेंथ रही वो उनकी स्पिन है। 71.4 ओवर्स उन्होंने सिर्फ स्पिन के पड़वाए हैं इकलौती ऐसी टीम, और सबसे ज्यादा विकेट्स भी जो वेस्ट इंडीज ने ली है सीजन के अंदर वो स्पिनर्स की उन्होंने लिए 22 विकेट्स। क्या आपको लगता है आज वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ कमाल कर पाएंगे?
3: देखिए पॉजिटिव रहना चाहिए और खासकर 20 ओवर्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने अभी देखा आयरलैंड इंडिया को कैसे हरा रहा है, 20 ओवर्स में दो प्लेयर सही होते हैं, दो प्लेयर अगर 50-60 रन बना देते हैं तो मैच वो 150 रन तक टारगेट अपने आप पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एक डे की बात होती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, अच्छी फॉर्म में चल रही है, नो डाउट फेवरेट्स हैं, उनको हराना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मिराकल्स होते भी आए हैं।
0: जी थोड़ा बोलिंग बताइए ऑस्ट्रेलिया की, हमें सोफी मोलिनी तो पता है उन्होंने 8 विकेट चटकाई हैं, पर जैसे किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, निकोला कैरी, किस तरह की वैरायटी है इनके पास?
4: बहुत वैरायटी है। देखिए अगर आपको पेस चाहिए, स्विंग बोलिंग है आपके पास, स्पिन ऑप्शन है आपके पास। देखिए विमेंस क्रिकेट में आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, अगर जिस दिन एक बॉलर चल गया, बैटिंग में हम कहते हैं दो बॉलर आपको एक बहुत है,
0: पर अलाना किंग को अंतिम 11 में ना रखना, टाइलर मैग्रा,
4: दैट इज बिकॉज आपके पास एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, आप उसको छेड़ेंगे नहीं। जिस टीम ने इंडिया को हराया और आप सडनली आप किसी को विदाउट रीजन अगर आप किसी को ड्रॉप करते तो सोचिए मैं यहीं पे हम दोनों अभी कुछ और बात कर रहे होते कि क्या जरूरत थी। देखिए आप रिपेयर तब करते हैं जब डैमेज हुआ हो, जब डैमेज नहीं हुआ हो तो आप अपने घर को रिपेयर करने नहीं जाते। तो ये उनका घर अच्छा है, सेट है सब कुछ, तो आप उसमें क्यों चेंजेस लाएंगे? पॉपुलर डिमांड पे तो आप यू नो चेंजेस नहीं करते।
1: पॉइंट वेल मेड। आशा मैं आपके पास आती हूँ, आपसे पूछूंगी कि ऑस्ट्रेलिया आज ऑलरेडी हैवी फेवरेट्स के तौर पर उतर रही है फर्स्ट सेमीफाइनल के अंदर, अगर वेस्ट इंडीज उनको हराना चाहता है आज तो किस तरह की टैक्टिकल स्ट्रैटेजी आज वेस्ट इंडीज को अपनानी चाहिए, ना सिर्फ अपनी बैटिंग में बल्कि बाद में जब वो अपने स्कोर को डिफेंड करने के लिए उतरेंगे भी?
2: सबसे पहले तो उनको मतलब ऑब्वियसली उनको कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मतलब अगर सेमीफाइनल का प्रेशर लेंगे तो मे बी नहीं होगा, बट वो जैसे मैच खेलते आ रहे हैं, और मैं एक बात बता दूं वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम है जो जादू कर सकती है वो, जैसे अगर सब कह रहे हैं कि स्टैट देख लीजिए कुछ भी देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जा रहा है पल्ला, उनकी तरफ भारी है, बट अगर उन्होंने कुछ वो कर भी सकती हैं, वो अभी सब ऑस्ट्रेलिया कर रही है, मैच ऐसे पड़ाव में आ जाएगा कि लगेगा ये वेस्ट इंडीज की तरफ जा
1: रही है, हिटिंग की ओर हिंट कर रही है।
2: हाँ राइट, हाँ जी हाँ जी, वही कहना चाह रही हूँ कि वो मैं वही कह रही हूँ, मेन जो दो तीन प्लेयर हैं उनकी टीम में जो शेमन कैपेबल है, डी डॉटिन है और मेन जो कैप्टन है, तो इनमें बहुत दामोदार आज मतलब इनको करना पड़ेगा, अगर ये करेंगी तो आप देखिए मैच में कुछ भी हो सकता है।
0: तो अगर राकेश हम इस वेन्यू की बात करें, थोड़ा आकाशवाणी के श्रोताओं को बताइए कैनिंगटन ओवल के बारे में, और यहाँ जो दर्शक आ जाएंगे वहाँ पर मैच देखने, वो इंग्लैंड तो सेकंड सेमीफाइनल में है, आज किसको सपोर्ट कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं करेंगे?
5: ऑस्ट्रेलिया को नहीं। सीधी सी बात है, देखिए आप अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी होम टीम खेल रही है, होम टीम का फाइनल मुकाबला एक स्ट्रॉन्गर टीम से क्यों? Weaker of the two teams,
0: so they would support West Indies. तो advantage है फिर ये West Indies के पास।
5: West Indies के पास crowd support चाहे जो भी हो, उनको एक चीज करनी है, अगर आज वो really जीतना है, तो मेरे ख्याल से उनका जो mindset होगा, उनका mindset ये हो सकता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत बहुत अटैकिंग खेलना पड़ेगा, आप डिफेंसिव मोड पे नहीं जा सकते हैं, उन्होंने इंडिया का मैच देखा है।
0: Okay.
5: इंडिया का डिफेंसिव माइंडसेट ने उस दिन इंडिया को मैच हरवा दिया।
0: आपको लगता है ऋचा घोष को पहले खेलने के लिए चाहिए था इंडिया मैच?
5: अब वो तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है।

0: घोष ने जब वो ऊपर आके खेली है पहले दूसरे मैच में, अगर आपको याद है, शी चेंज द टेस्टिंग, आई मीन पाकिस्तान
1: अगेंस्ट पाकिस्तान
0: जो वो खेली है, कमाल खेली है, लेकिन उसके बाद हमने वो रूप उनका देखा नहीं। तो वो तो एक दिन की बात है कि वो होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ अगर हम वेस्टइंडीज की बात कर रहे हैं, उनको पहली बॉल से एक तो अटैक करना है, कैचेस पकड़ने, विमेंस क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो जो प्रैक्टिस में जितना पकड़ते हैं उतना वो फील्ड में नहीं पकड़ता,
2: उसका एक परसेंटेज इंडिया में खिलाफ कैचेस बहुत छोड़े हैं।
0: वही मैं कह रहा हूँ, मैं विमेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैचेस ड्रॉप्ड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जो पकड़ लिया, जैसे उस दिन पाकिस्तान की अगर आप फील्डिंग देखते हैं, कैचिंग सुपर्ब थी उनकी, कुछ नहीं छोड़ा उस दिन उन्होंने, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया। सो विमेंस क्रिकेट इज वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया करेगी, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री से हम अभी भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और जो प्रेजेंट 11 लोग जो खेल रहे हैं वो एक उस मेंटल स्पेस में हैं कि वो तैयार हैं, इंडिया को हरा के आ रहे हैं और एक उस टीम से खेल रहे हैं जो अपने पिछले दो मैच हारी हुई है।
1: राइट, एंड उस इंडिया को, जहां पर हम बता दें अपने श्रोताओं को भी कि उस मुकाबले के अंदर ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन बोलर्स आउट देयर, हु वर एबल टू एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट द ऑस्ट्रेलियंस टू नॉट वेरी फैमिलियर स्पेस ऑफ गोइंग ऑल आउट इन द पावर प्ले। इस हेड स्पेस की जब हम बात करते हैं, हमें बताया जा रहा हमारे साथ एक श्रोता जुड़ रहे हैं, मैं सवाल को भी आगे ले जाऊंगी, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते। नमस्कार, गुड इवनिंग हरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। हमारी पूरी आकाशवाणी की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया कि आप हमारे इतने लॉयल श्रोता हैं और आप हमारी उस बात के लिए सराहना कर रहे हैं, शुक्रिया। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। जी, आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया है। Well, the West Indian team needs to be mindful and careful of the Australian team. Ravi, आपके पास आती हूँ। राकेश उस समय एक पॉइंट रख रहे थे, which was a good point, कि West Indies को अगर आज जीतना है तो

0: डॉट बॉल्स की बात हो रही है, जिस तरह के एरा में हम T20 देखते हैं, वहां पे एक तरफ राकेश का पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट बॉल्स हिट करते हैं, वी हैव प्लेयर्स अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी फर्स्ट बॉल्स हिटिंग की स्ट्रैटेजी रखते हैं, मैं मेल क्रिकेट की बात कर रही हूँ, फीमेल में भी अगर बात करें तो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं। दूसरी तरफ, हाँ दूसरी तरफ रवि कहते हैं कि फर्स्ट बॉल की हिटिंग अटैक विकेट अटैक मोड फ्रॉम द फर्स्ट बॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हैं, आप किस तरह की रणनीति को कहती हैं ज्यादा सस्टेनेबल एंड ऑफ कोर्स ज्यादा सुलझी हुई रणनीति है कि आप इस तरह के अप्रोच से T20 को अप्रोच करें।
1: सबसे पहले तो सिचुएशन डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप चेज कर रहे हैं, क्या

बातचीत। आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र पर रिकॉर्ड की गई ये बातचीत वर्ष 1990 में विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसारित हुई। इसकी प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। वर्ष 1913 में जन्मी गंगूबाई हनगल जीवन भर संगीत की साधना करती रहीं। वैसी कठोर साधना, अथक परिश्रम और कड़े रियाज ने उन्हें गिने चुने शीर्षस्थ कलाकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। उनके अद्भुत कंठ से निकलकर स्वरों का जो आविष्कार होता था उसका कोई सानी नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है। वर्ष 2009 में वे असीम में विलीन हो गई, परंतु उनकी आवाज हम सुन सकते हैं, जैसे उनसे की गई ये बातचीत अभी हमने सुनी। इसी तरह आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ राग चंद्रकौंस। तीन ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, कब घर आओ पिया।

आप सुन रहे थे विविध भारती के खजाने से। आज की कलाकार थीं विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णामूर्ति और साथियों की आवाजों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब हूँ आपको आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे दें। अब से कुछ समय बाद 7:20 पर ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले मैच के सीधे प्रसारण की कमेंट्री हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपको सुनवाएंगे मैच समाप्ति तक। अब विवरण कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। कल सुबह 7:20 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपका पत्र होगा। सुबह 7:20 पर प्रस्तुति राजेश पाठक की होगी। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 8:30 पर लोक संगीत में स्नेहता भटोरे के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:00 से। और सुगम संगीत में अनुराधा पौडवाल की गाई रचनाएं सुनिएगा 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत में पंडित कमल कामले का वायलिन पर बजाया राग गुजरी तोड़ी हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी सुबह 10:00। और सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का प्रसारण होगा सुबह 10:05 से 11:00 तक। अब विवरण हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने का अनुप्रसारण होगा। साथ ही फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 12:00 से। संग्रहालय से यह कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा 12:30 पर। महिला कार्यक्रम होगा दिन में 1:00। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 1:30 पर। और सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 1:45 पर। फिल्म संगीत होगा दिन में 2:00। और चित्र प्रसिद्ध संगीत का आनंद लीजिएगा 2:30 पर। यह था विवरण मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी इंदौर से सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 युवाणी कार्यक्रम के साथ। आरंभिक चर्चा होगी, साथ ही आज के क्रम में होगा एक ही फिल्म से, जिसमें फिल्म होगी

फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। संध्या 5:45 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा संध्या 6:00। सुगम संगीत में अनुराधा पौडवाल की गई रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे 6:30 पर, और लोक संगीत में 6:45 पर स्नेहा भटोरे एवं साथियों के गए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। शुद्धो 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज की बात होगी जननी सुरक्षा योजना पर। साथ ही भेंट वार्ता में सुनवाएंगे भोला बकतरियाक से सफेद मूसली की खेती के विषय में जानकारी। सुर्खियों में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा रात 8:00 और 8:15 पर हुआ कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 9:15 पर। चर्चा का विषय है यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। 10:00 नाटक सुनिएगा पथरीले पल, निर्देशन एवं प्रस्तुति संजीव मालवी की होगी। शास्त्रीय संगीत में पंडित कमल कामले का वायलिन वादन हम आपको सुनवाएंगे, राग होगा गुजरी तोड़ी, समय रात्रि 10:30। ये था विवरण कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 352 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न, 63 विद्यार्थियों को मिले पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर सिधो, कान्हू, चंद भैरव और फुलोझानो सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और बलिदान का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 जुलाई को भारत आ रही है। ताकाइची 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को समावेशी समाज निर्माण का साधन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षित युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर भी बल दिया।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान

0: समापन पे या इस अभियान का एक चरण हो रहा है, अगला चरण भी हम चालू करेंगे।
1: इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं।
0: सिंहस्थ में जब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और 40 करोड़ लोगों के लिए हम अगर प्रबंधन कर रहे हैं और वो प्रबंधन भी मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, मास्टर प्लान भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय जो बनाया गया है उनका प्रबंधन भी वैसे करने वाले हैं। विश्व के लिए सबसे बड़ा मेला अगर कोई है, ये देश का और देश से बढ़कर विदेश से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है।
1: जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। जनरल सेठ इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और 28 साल बाद आर्म्ड कोर से सेना प्रमुख बने हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन में लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्रपुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस शोध संकलन में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, प्रशासनिक दक्षता और समाजोत्थान से जुड़े 19 अध्याय शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डीलित उपाधि से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बावड़िया कला से आशिमा मॉल तक प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी माह निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मंत्री ने पिपलानी खजूरी रोड में देरी पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। प्रदेश ने एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों के लिए GI टैग हासिल किया है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में GI टैग मिले हैं, जिसमें गुना का धनिया, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर का मटर और सिंघाड़ा, बुरहानपुर का केला और छतरपुर का पान शामिल है। इसके अलावा 7 और फसलों के लिए GI टैग का प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल में नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी 2 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यशाला में DPR तैयार करते समय प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि PM सूर्यघर योजना के तहत अब तक 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनके बैंक खातों में करीब 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जमा कराई गई है। श्री तोमर ने बताया कि 1 किलोवाट संयंत्र पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास गिरबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। CBI ने अदालत से जब्त लैपटॉप का पासवर्ड दिलाने और दोनों आरोपितों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं गिरबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशा विरोधी अभियान के तहत गोविंदपुरा क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलनी को टीम में शामिल किया गया है, जबकि प्रीमा राउत को बाहर रखा गया है। आपको समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर के मूसाखेड़े स्थित कबीर मंदिर में श्री सतगुरु कबीर साहब का 629वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम में चौका आरती और भजन संध्या हुई, जिसमें विधायक महेंद्र हडिया सहित बड़ी संख्या में कोलीकोरी समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन लालचंद सोमेश ने किया। खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह आज किशोर कुमार सभागार में आयोजित किया गया। वहीं शिवपुर कलेक्टर के मार्गदर्शन में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज ग्राम पंचायत मठेपुरा स्थित बावड़ी पर आयोजित हुआ। झाबुआ में ग्राम पंचायत जुलवानिया बड़ा जनपद थांदला में 14वें वित्त आयोग के 2 निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्रवाई की गई है। देवास में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला स्तरीय मास्टर वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर में जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने 83 आवेदकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। वहीं नीमच कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में बीते 4 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण की कमेंट्री सुनवाने के लिए आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो ले जाते हैं, जिससे हम वहां कार्यक्रम रिले कर रहे हैं।
2: In front, the square on the offside, where the ball gets the toe into the bat and goes up in the air. Very lucky to survive. There were three fielders. If that had come into the palms of any one of them, it would have been curtains for Matthews. She had a rush of blood, adrenaline rise there, and that made her play.

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था।

0: और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं के और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

की चाबी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है।
1: आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौंध रही है?
2: अरे बिजली बिजली कहाँ कौंधी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
1: तू इतना ही जान कर रुक जा,
2: नहीं तो
1: नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
2: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी।
1: बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, फिर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता।
2: हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
1: राजा? कौन राजा?
2: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
1: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
2: लड़का? कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
1: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
2: अपने राजा के। ओ मंजू हाउ ही लव्स मी।
1: कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
2: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बाढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
1: ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है?
2: अरे मंजू जी जी, उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
1: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
2: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
1: दीपक? कौन दीपक?
2: अब वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू, वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है। बस
1: सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
2: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
1: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हसोड़ सा था।
2: अब मैंने गोरा वोरा लंबा उम्बा हसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता।
1: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही?
2: नहीं, आंखें तो खुली।

0: थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ। हाँ, कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
1: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है, आता है तीज त्योहार पर।
0: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं, पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय।
1: कर दिया।
2: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी,
1: हाँ।
2: वो आपकी बहन है ना,
1: हाँ।
2: उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
2: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
2: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
2: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानती?
2: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई। चल, कुछ कहेगा भी?
2: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
2: कहूं क्या तू भाभी? भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे
1: हाँ?
2: शादी करना चाहता हूँ। लो, कह दिया। हाँ, कह दिया भाभी,
1: कह दिया। अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
2: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहेंगे, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील तजा ने कहां से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं की, छोड़ उसका ख्याल।
2: भाभी, ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी, वो तो देवी है देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतने कोमल गंभीर था, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
1: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
2: पर भाभी, ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
2: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है। एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी, आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, सुन, मुझे ख्याल आया।
2: क्या?
1: हा? मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन, उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुना ले।
2: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी, ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी, शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का बंगला है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख, मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
2: अच्छा,
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन, इधर आ। उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
2: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है।
2: तू छोड़ भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानूं,

0: शायद यही थे।
1: ये मेरी बहन शील है दीपक।
2: जी जानता हूँ। हाँ? जी, जी, जी मतलब ये जानता तो नहीं था पर भाभी अब जान गया।
1: मैं भी कॉफी को कहा।
2: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
2: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
2: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
2: ओ शील जी पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
2: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है पर ख्वाबों का क्या।
2: एक शेर कहा है सुना दूं?
1: जरूर।
2: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता। कभी मेरी तमन्ना भी सज कर

0: क्या होता।
1: वाह वाह,
2: पसंद आया?
1: क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
2: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
2: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते।
2: शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी, क्या?
2: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
2: शील जी प्लीज, शील जी प्लीज, आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ। शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों
2: क्यों क्यों, क्या राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं।
2: पता नहीं तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
2: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
2: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार, बहुत लॉयल है।
2: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तिहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
2: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो
2: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
2: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
2: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
2: कमरा खुला है लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अब वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
2: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
2: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए।
2: ओह माय गॉड, ये राजा इनका महबूब। सच में शील जी ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी आपने एक

0: की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
1: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी यह नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य।

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा।

0: परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृहमंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण

0: किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमरीका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged the students to become agents of social transformation, saying education should go beyond securing employment and help strengthen society, culture, traditions and economic progress. She said every educated youth should help bring forward those left behind and contribute towards

0: down President Trump's order ending birthright citizenship. And in the FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण सुनवाते हैं, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

है, हेनरी है, मैथ्यूज हैं, रमार्क हैं और इसके अलावा क्लैक्सटन। और जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल है, ऑफ साइड पर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश क्लैक्सटन की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी गेंद। और जब आप इतनी विड देंगी तो ये चार लगेगा, बैकवर्ड पॉइंट।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ।

0: विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कदरदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं

ढोल ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

0: प्यार वफा
1: सब कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिरा जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुन लूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

0: कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता हमों से करो जिंदगी में,
2: समझौता हमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कांग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को आप करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

0: होता।
1: आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संग।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलती हुई रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे भारत तिवारी का तबला वादन। अभी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समापन होती है हमारी ये सभा। कल प्रातःकालीन सभा में इसी मीटर पर 5:51 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।